0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा घर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर? From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
3: बैठ सकते हैं आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: सिनेमा घर तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
0: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind you,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
0: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
12: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
14: This is the show where we bring you all the

0: Welcome back. My name is Reed Kaur Sahani and you're watching EDTV. A stormy monsoon session is underway in Uttar Pradesh Assembly as the Samajwadi Party continue to protest inside and outside the house, demanding accountability on the Ram Temple donation theft issue. Amid this, the Samajwadi Party MLA Sachin Yadav was suspended for the rest of the monsoon session after he displayed a banner with an image of the Chief Minister Yogi Adityanath, calling Samajwadi Party's behaviour undemocratic. The Chief Minister once again reiterated that no saint has been involved or implicated by the SIT probe in the Ram Mandir donation theft case. He further accused the Samajwadi Party and the Congress of conspiracy to insult Sanatan Dharm and malign Uttar Pradesh's image. Meanwhile, Samajwadi Party, in fact, Chief Akhilesh Yadav questioned the Yogi government on the newly constituted SIT, asking if the first SIT formed by Chief Minister Yogi discovered the truth. And he also asked as to what the new SIT would accomplish. Listen into the reactions coming in.
1: आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मठ हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी शक्तिपीठ हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी हमारे धाम हैं, यहाँ पर जो संत हैं, महात्मा हैं, वो इसका संरक्षण करते हैं, उसका संचालन करते हैं। कहीं से इस तरह की कभी इस तरह की बात नहीं आई है। पर आज राम मंदिर जिससे करोड़ों देश राम भक्तों की आस्था जुड़ी, सनातन धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी है, वो सारे लोगों की आस्था आज शीढ़ हो गई, क्योंकि सरकार ने इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी आज तक 50 दिन पूरे हो गए, एसआईटी का कोई रिपोर्ट नहीं आई, इसके लिए कौन जवाब दे।
2: स्पीकर साहब की कुर्सी की अवमानना की है और समाजवादी पार्टी के इस कृत्य से तय हो गया।

0: a two-day strategy meeting ahead of its nationwide listening tour. The question is, who's listening to the students in Ranchi?
1: मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे।
2: अब यमन जी भी हैं, आप आइए जरूर, आप कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए, और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं, और उसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए झारखंड सरकार से पहचान।
3: जिस तरह से युवा जेपीएससी जेएसएससी लेकर रांची में आंदोलन कर रहा है, इस पर क्या?
4: यार बाबा का आशीर्वाद सबको लगने दो भाई, बोल बम बोलो भाई।
5: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do.
6: Double standards hai Congress party ka. Jharkhand mein pratyek din social media ke madhyam se hajaron lakho chhatra kis prakar se andolan mein hai, wo andolan kar rahe hain, yah hum dekh rahe hain. और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
7: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है तो उत्तर प्रदेश के सांसद लोग क्यों नहीं धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट के पास? बिहार के सांसद लोग क्यों नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट के में धरना? बेवजह यहां नाटक किया जा रहा है, झारखंड की छवि को खराब की जा रही है, युवाओं को इस तरह से दिखाया जा रहा है, गलत गलत वीडियो कि यहां ये हो रहा है, यहां हो रहा है, कुछ नहीं, यहां धरना है, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के जो भी मांग है हम बात करेंगे, और विकल्प के रास्ते हम लोग खुले रखे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हमें आगे आना चाहिए, और जो भी मांगे हैं, कल हमारे प्रभारी आ रहे हैं, के राजू सर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने जा रहे हैं कल। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कलिया चीर दूं युवाओं के लिए, क्या इससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ यूथ शिक्षित यूथ हैं, वो समझ रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने की जवाबदेही हमारी है।
0: Quick news coming in, and this is no relief coming about as far as the TMC MP Abhishek Banerjee is concerned, with the High Court there declining permission for Abhishek Banerjee to travel abroad. Now, the High Court has said that there are 16 cases under probe against the TMC MP, and which is why on those grounds they have refused that permission, and therefore TMC MP cannot be travelling abroad. We have Shreyashi, my colleague, joining us in order to get us details. Shreyashi, you know, it is Abhishek Banerjee wants to travel abroad for eye treatment. This is not for a holiday. This is on medical grounds, but that same, you know, has been rejected by the High Court, saying there are many cases against him and therefore he can't be allowed.
8: Well, that's right. And the High Court judge also gave Abhishek Banerjee the option to appear before a government hospital medical board to really understand what is the urgency and if he's required to travel abroad for this particular treatment. While the Calcutta High Court reiterated that the medical advancement in India has been great and that he can receive treatment anywhere within the country and for which he does not need to travel abroad, But Abhishek Banerjee's counsel told the High Court that due to continuity in the medical treatment that he has been receiving in the US, that he requires to travel there and get his eyes treated, which has been operated earlier.

0: who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
1: Mohan Bhagwat, इनसे बात करने के बजाय आप उनके माता पिताओं से बात किया तो अच्छी होगी, क्योंकि माता पिता भी उसको सुनाएंगे कि आपने कभी बच्चा संभाला नहीं है, तो हम आप कैसे हमको उपदेश देते हो। ये है दूसरा जो है वो, आप क्या रेजिमेंटलाइज करना चाह रहे हो समाज को? रेजिमेंटलाइज करना चाह रहे हो तो आपकी विचारधारा पहले बताइए।
2: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है।
3: The students of the country have reacted against this government. The students, the youth, they have stood like a rock against the injustice they had to meet from this government. And this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students. This government fired pellets on them. This government also used AK-47. So now the RSS chief meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
4: The center has issued a fresh summon to Meta's global public policy head, Joel Kaplan, with Instagram technical officials also asked to appear. Sources say the Parliamentary Committee on IT has given Meta founder Mark Zuckerberg 3 days to respond over the removal of Prime Minister Modi's video from Facebook. The committee has warned that Meta could lose its safe harbor protection if action is not taken against those responsible. The government also wants Meta to explain how its algorithm works. Separately, the NCPCR has issued a notice to Meta over alleged child sexual exploitative content on Instagram, directing all major social media platforms to remove such content within 3 days or face legal action.
5: हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है, और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो FIR करेंगे, पूरे देश भर में FIR की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होंगे।
4: Let me now tell you what the safe harbor protection is. The safe harbor protection is a legal safeguard available to online intermediaries like Meta, like Google, X and YouTube under Section 79 of India's Information Technology Act, the IT Act. It means that these platforms are generally not held legally responsible for content posted by their users, provided they comply with due diligence requirements and act as lawful directions from authorities, directives from authorities. If they fail to meet those obligations, they risk losing this legal protection. So what happens if Meta loses the safe harbor? If Meta were to lose the safe harbor protection, it could face direct legal liability for content hosted on its platforms. We're going to be slipping to short break. News and updates will continue on the other side. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: राजा मसाला।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
12: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
13: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
14: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
15: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
16: POK ke firing range mein khade hain.
17: Just few inches away is POK.
16: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain. Is it fire?
18: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
19: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
20: सो मेनी अटैक्स,
19: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
20: It's incredible.
19: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
20: Welcome to Left, Right and Center.
19: Hard facts.
20: War struck country.
19: Hard questions.
20: In the Ukraine.
19: 30 years of trust.
21: In the Kargil area.
20: North Ukraine. In France. In Italy.
21: At Srinagar.
20: I am Srinagar.
21: Vishnu Shom for NDTV.
19: Vishnu Shom. Only on NDTV.
22: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
23: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
24: हरियाणा।
23: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
24: डेढ़ महीने पे।
23: आपकी फैमिली है?
24: और
23: बच्चे हैं?
24: 3 साल।
23: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
24: बहुत।
23: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
24: श्रीनगर तक अलाउड।
23: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
22: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
25: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
26: Hello and welcome to Watching Prime 5 with Priya Sharma.
25: The show that sets the prime time agenda.
26: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
25: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
18: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
27: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
19: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
28: NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
19: When stories have impact.
29: Padmatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
19: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
28: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this.
30: Welcome back. This is Breaking Ground at 1 p.m. I'm Vedika Sood. A quick check on the headlines of this hour. Parliamentary Affairs Minister meets Rahul Gandhi amid parliament deadlock. Sources say Kiran Rijiju sought Congress's cooperation on delimitation bill, but Rahul Gandhi denied debate on any bill unless Parliament discusses the police crackdown and armed temple donation theft. In the Tamil Nadu Assembly session, the TVK targeted the DMK, claims corrupt leaders and officials fear Vijay. TVK demands the scrapping of NEET as well. The Bombay High Court has allowed Nitin Gadkari to sue social media giants over E20 AI deepfakes. Gadkari has sought the removal of deepfakes and has demanded 11 crore rupees for reputational damage. Political war of words over RSS's youth outreach. Congress, UPT, Sena leaders question the outreach, claiming the organization is trying to expand its ideological influence among Gen Z and Gen Alpha students. Parliamentary panel's big warning to Meta over Prime Minister Modi video row. Panel asks Zuckerberg to apologize or face action, including the possibility of losing safe harbor protection. And this one could impact Indians. Team Trump plans to make H-1B visa extensions costlier, raising concerns for Indian professionals working in America.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
11: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
12: Just few inches away is POK.
11: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
14: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
15: so many attacks,
14: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
15: It's incredible.
14: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
15: Welcome to Left, Right, and Center.
14: Hard facts.
15: War-struck country.
14: Hard questions.
15: In the Ukraine.
14: 30 years of trust.
16: In the Kargil area.
15: North Ukraine.
16: In France. In Italy.
15: At Srinagar.
16: France.
15: Vishnu Shom for NDTV.
14: Vishnu Shom. Only on NDTV.
17: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
18: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
19: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter. The stories that shape your life.
20: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
19: The show that sets the prime time agenda.
20: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
19: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5 only on NDTV 24/7.
14: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
21: NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
14: When stories have impact.
22: But the town so soon.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज रूम, weekdays at 4 p.m.
10: Our pure shahi paneer masala, delicious, healthy, every day.
11: POK के firing range में खड़े हैं।
12: Just few inches away is POK.
11: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
14: Really?
13: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
10: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
15: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
16: so many attacks,
10: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
16: It's incredible.
10: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
16: Welcome to Left, Right, and Center.
10: Hard facts.
16: War struck.
10: Hard questions.
16: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
16: In the Kargil area.
17: North Ukraine. In France. In Italy.
16: At Srinagar.
17: I am Srinagar.
16: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे

0: Under Chief Minister Vijay has doubled down on welfare politics, with one announcement grabbing the biggest headlines: a 560 crore allocation under every child born in a government hospital will receive a 1 gram gold ring. Now, the scheme is set to be rolled out in September and is part of a wider welfare-focused budget that also includes major spending on education, free laptops, cycles, school modernization, enhanced marriage assistance as well. The government says the measures are aimed at strengthening public health care, supporting families and investing in the state's future while reinforcing its people-centric governance model. Well, let's now talk about the political face-off and the political battle between Vijay and Udayanidhi Stalin only getting fiercer a day after his arrest over his remarks on actor Trisha. The leader of opposition has now been released on bail and remains openly defiant. After securing bail, Udayanidhi met with the DMK chief, his father, MK Stalin, with visuals showing the two together after his release. Udayanidhi has maintained that his remarks allegedly about Trisha were not demeaning, calling his arrest a political diversion and branding the TVK government a circus driven by fake news and reels. With the Tamil Nadu Assembly's budget session underway, the political showdown is set to intensify as the Trisha controversy and the Kaveri water issue are expected to trigger a stormy session.
1: கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. அது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கு. நான் எந்த நேரத்திலும் அது மாதிரி தவறான எண்ணத்தில் நான் பேசவே இல்லை. விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பேசினதுக்காக இந்த தரங்கட்ட அரசு கைது செஞ்சுருக்கிறாங்க. நான் மீண்டும் சொல்கிறேன், இந்த கைதுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன். இன்னும் 100 முறை பேசுவேன், மீண்டும் பேசுவேன். அதில் சில பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நான் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசிட்டேன், டபுள் மீனிங்கில் பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் நிச்சயமாக டபுள் மீனிங்லாம் பேசவே இல்லை. இந்த மாதிரி பொய் வழக்குகளுக்கெல்லாம் பயப்பட போகிறதில்ல. இது சட்ட ரீதியாக சந்திக்க நான் தயாராக
2: இருக்கின்றேன்.
1: ஒரு ஆட்சியாகவே நான் பார்க்கலங்க. இது வந்து ஒரு சர்க்கஸ் கூடாத மாதிரி நான் பார்க்குறேன். பயமுத்தனும் டைவர்ஷன் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது.
2: திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை
1: பார்த்தா அவங்க கைது செய்யணும். அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பார்த்தா எப்படியாவது அவங்கள சோஃபா அனுப்பிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு இந்த அரசு முயற்சிக்குது.
0: All right, let's shift focus now to Ranchi, where students have been protesting for over a week now. Hundreds of job aspirants remain on the streets, alleging serious irregularities in the recruitment exams and demanding justice. Student leader Devendra Nath Mahato continues his indefinite hunger strike. After an appeal from Sonam Wangchuk, Mahato has agreed to take water but says the fast will continue until the students' demands are met. Chief Minister Hemant Soren broke his silence yesterday and he says the government is examining the issue with utmost seriousness and will take appropriate decision after the investigation. Meanwhile, Congress leader Rahul Gandhi is preparing for the next edition of Chhatron Ki Goonj in Prayagraj, while the CJP begins a 2-day strategy meeting ahead of its nationwide listening tour. The question remains, who's listening to the Ranchi students?
3: We are currently at the protest site, and as you can see that Devendranath Mahato is still on the hunger strike. Few minutes back, Devendranath Mahato spoke to Sonam Wangchuk and appealed him to please come and join the protest in the state of Jharkhand. And he just only took the water, and the hunger strike is still going on. As you can see that Devendranath Mahato is still on the hunger strike and holding a constitution, holding a book and on his hand. So this is the current situation in Ranchi right now. And the Sonam Wangchuk also appealed to Devendra Mahato to broke his fast, but he just only took the water. But the hunger strike is still on. But the situation in Jharkhand, as you can see, the many of the students across the Jharkhand has been gathered here in Jaipal Singh Stadium, where the huge agitation of students against the Jharkhand government over the irregularities in the JPSC exams. Devendra ji, क्या बात हुई है सोनम वांगचुक से, आप थोड़ा बता दें।
4: चूँकि सोनम वांगचुक सर मेरा मोटिवेशनल पर्सन है, उसी का प्रेरणा से भूख हड़ताल पर हम थे, तो उनको जब पता चला कि हम अन्न के साथ जल का भी त्याग किए हैं तो उनको बहुत चिंता हुआ और वो वीडियो कॉल किए और मेरे इस आंदोलन को समर्थन दिए, हौसला बढ़ाए और सरकार से भी आग्रह किए कि आप स्टूडेंट्स के बातों को मानिए, और वो हमें रिक्वेस्ट किए कि आप एटलीस्ट जल में भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखें। शायद उनको डाउट था कि देवेंद्र महतो बाद में जल ग्रहण करे कि नहीं, तो वो रिक्वेस्ट किए कि आप वीडियो कॉल में ही आपको जल लेना होगा।
3: ये आपने पानी पिया है
4: जी, और उनके रिक्वेस्ट को हमने भी एक शर्त के साथ स्वीकार किया है।
3: क्या शर्त आपने रखा है?
4: जी हम कहा कि हम तभी जल ग्रहण करेंगे जब आप दिल्ली के जंतर मंतर में आप भूख हड़ताल करके पूरे इंडिया के स्टूडेंट को आपने न्याय दिलाया है और उस प्रोटेस्ट को आप सक्सेस कराया है, तो आप हमके कमिटमेंट करिए कि झारखंड के इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी आप सफल बनाने में सहयोग करेंगे।
3: आपका हंगर स्ट्राइक जो है वो अभी जारी रहेगा?
4: जारी रहेगा और वो हमारे शर्त माने और हम अपने शर्त के आधार पर आज से हम जल लेंगे लेकिन अन्न नहीं लेंगे।
5: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट इन सिवियर पेन, दे डोंट हैव वर्क, दे आर आस्किंग for fairness in exams, they're asking for an education system that works, and on the other side we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know, but that's what he chooses to do.
6: Double standards hai Congress party ka. Jharkhand mein pratyek din social media ke madhyam se हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
7: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है तो उत्तर प्रदेश के सांसद लोग क्यों नहीं धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट के पास? बिहार के सांसद लोग क्यों नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट के में धरना? बेवजह यहां नाटक किया जा रहा है, झारखंड की छवि को खराब की जा रही है, युवाओं को इस तरह से दिखाया जा रहा है गलत गलत वीडियो कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ धरना है, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के जो भी मांग है हम बात करेंगे और विकल्प के रास्ते हम लोग खुले रखे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हमें आगे आना चाहिए। और जो भी मांगे हैं, कल हमारे प्रभारी आ रहे हैं, के राजू सर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने जा रहे हैं कल। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं कलिया चीर दूँ युवाओं के लिए। क्या इससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ युद्ध शिक्षित यूथ हैं, वो समझ रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने की जवाबदेही हमारी है।
8: डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड।
9: चारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने बैठे हैं और भारी बारिश में, परसों रात तो हद हो गई कि बिजली काट दी गई, कोई त्रिपाल नहीं, कोई जोमेटो से पिज्जा बर्गर नहीं आ रहा है, वो छात्र वहीं पे अपना भात दाल और चोखा पका रहे हैं, वही खा रहे हैं। लेकिन कोई सरकार कितनी असहज, डिस्परेट, असंवेदनशील हो सकती है, ये झारखंड की सरकार से सीखना चाहिए। एक किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री निवास से 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं, अभी तक अर्धना सा भी कोई आदमी नहीं गया। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई जा रही है, क्या कारण है?
0: All right, some breaking news coming in from Jharkhand, and the Chief Minister Hemant Soren has again spoken out on the student protest. Remember, he had broken his silence yesterday.

0: आदमीय सत्संग चालक जी संवाद करते रहते हैं, और उसी संवाद की एक पहल है, ये कोई नई पहल नहीं है।
1: हर जो है लीडर का काम है, या कोई गेस्ट लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जैन जी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, संवाद रखें, कोई गलत बात तो नहीं है उसमें।
2: The Rashtriya Swayamsevak Sangh has been reaching out to the Zen Z and the Gen Alpha for the past 2-3 years. There are core issues of nation first, culture, discipline, making your contribution to civic duty as a ongoing process. Adarniya Mohanji Bhagwat, who is our Sarasang Chalak, is coming to Mumbai and will be addressing the issues of the youth, answering their questions and directly engage with them. So for all those who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
3: Mohan Bhagwat, inse baat karne ke bajaye, aap unke mata pitaon se baat kiya to achhi hogi. क्योंकि माता पिता भी उसको सुनाएंगे कि आपने कभी बच्चा संभाला नहीं है, तो हम आप कैसे हमको उपदेश देते हो। यह है दूसरा जो है वो आप क्या रेजिमेंटलाइज करना चाह रहे हो समाज को, और रेजिमेंटलाइज करना चाह रहे हो तो आपकी विचारधारा पहले बताइए।
4: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है।
2: द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हैव रिएक्टेड अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, द स्टूडेंट्स, द यूथ, they have stood like a rock against the injustice they had to meet from this government, and this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students, this government fired pellets on them, this government also used AK-47. So now the RSS chief meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
5: Right, so everybody wants to be friends with the Gen Z. With that, we'll slip into a short break. On the other side, a fresh political face-off in Tamil Nadu. Stay with us.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आकर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
10: Just few inches away is POK.
9: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
14: So many attacks.
13: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
14: It's incredible.
13: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
14: Welcome to Left, Right and Center.
13: Hard facts.
14: War struck country.
13: Hard questions.
14: In the Ukraine.
13: 30 years of trust.
14: In
12: the Kargil area.
15: North Ukraine.
16: In France, in Italy.
17: At Srinagar.
18: In Iskandar.
19: Vishnu Shom for NDTV.
20: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.
4: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
5: Just few inches away is POK.
4: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.
3: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
5: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
6: Really?
5: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
7: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
8: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
7: When stories have impact.
9: Padmajal Joshi, managing editor and prime time anchor.
7: Then news has influence. The buck stops here with Padmajal Joshi.
8: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
16: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
17: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
18: So many attacks.
7: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
18: It's incredible.
7: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
18: Welcome to Left, Right, and Center.
7: Hard facts.
18: War-struck country.
7: Hard questions.
18: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
19: In the Kargil area.
18: North Ukraine.
19: In France. In Italy.
18: At Srinagar.
19: I am Mr. Khan.
18: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on.
20: Good evening and welcome to this special edition of Nationwide at 6, which is coming to you at this moment from the Albert Ekka Chowk in Ranchi. Before I tell you what's happening and why I'm here, this is one of the greatest warriors that this country has seen, PVC Paramveer Chakra winner Lance Nayak Albert Ekka, who gave up his life defending the country in the 1971 India-Pakistan war in the Battle of Ganga Sagar. He is a legendary figure. across the country and holds a special significance where I'm standing in Ranchi in Jharkhand. And why I'm standing here today, I will just turn around. My colleague Ashwani will just show you. There is this Tiranga Yatra, a protest march under the flag of the country, which is being taken out. Remember, we are just about 9 days away from the Independence Day, and this tricolor has an important, even increased significance. And while I'm standing here soaking wet in this rain, it's not about, for the last 2 hours, these students, many of them from the 25th of July here in Ranchi, have been on a continuous protest. A protest against the alleged irregularities, paper leak of the Jharkhand Public Service Commission examination. Along with that, the JSSC and GCL and other examinations in the state. From 25th, they have been sitting at about 500 meters away at the stadium that is also of legendary Mr. Munda, who has been a politician, an Olympian in hockey. And from that stadium today, these students have decided to march to make their voices heard. They have three demands of the government. Number one, they want the CBI inquiry as far as this case is concerned. They also want the JPCC, the JSSC and the GCL examination to be cancelled. And along with that, they want the government to come and speak to them. These students, for there have been many those who have been on a hunger strike as well. I will get you those voices as well, ladies and gentlemen. But what I want you to see at this moment, it's been continuously raining here in Ranchi. And in this rain, these students, young people, those who have been demanding a better future, those who are, and remember, this is happening after the CJP protest in Jantar Mantar led to the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. Since then, all these students do believe that it is time for them to be heard. There are, of course, a lot of political parties, those who have extended their support. You would see some, in fact, coming here from political organizations, throwing flowers, sharing them with flowers. And this is a sense that you are getting that this student protest, which started with just an evening gathering of some disgruntled student, has now taken a complete, you know, movement sort of a shape here, where not just these students, organizations like ABVP, ISA, all of them have extended their support. From left to right, everybody has one demand, that the JPCC exam should be cancelled. I will go into the details of that, but let me tell you today, a day before the assembly session, which is going to begin tomorrow here in Ranchi, the Hemant Soren government has made their first move, asking students to come for talks at 4 o'clock today. This is the latest news coming in. The government made a move towards the students that they are willing to speak to them. Remember, the government has formed an SIT, a CID inquiry is on. 11 people have been arrested. The government says that they have already postponed the mains examination of JPCC, but students feel much more needs to be done. The CBI inquiry is the tricky part as far as Hemant Soren is concerned. What I will do at this moment, I'll try and get in a word from few of these students, those who have been protesting here. Itni barish mein aap yahan par aaye ho, kitne dino se aap yahan par saath de rahe ho, kya karte ho pehle ye batao mujhe.
6: Hum abhi padhte hain BCom first year mein hai aur hum 3 dino se yahan pe hain aur hum Ranchi mein reh ke padhai karte hain. Paper leak bahut zyada ho raha hai yahan pe.
20: Kahan se aaye ho?
6: Hum Latehar se aaye hain.
20: Latehar se Ranchi mein yahan padhai karne?
6: Yahan se 100 km dur hai.
20: तो अकेले रहते हो?
6: हाँ, यहाँ पे हम रूम लेके अकेले रहते हैं और उसमें बाद में पेपर लेके बहुत ज्यादा होता है. हर साल पेपर बिकता है, जैसा पेपर चाहिए वैसा दाम लगता है. डीएसपी के लिए 1 करोड़ दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा पेपर.
20: एक बात बताओ, आपके माँ बाप क्या करते हैं, क्या करते हैं आपके परिवार?
6: मेरा परिवार किसान है और खेती बाड़ी करते हैं.
20: उन्होंने आपको यहाँ रांची में पढ़ने के लिए भेजा है?
6: हाँ.
20: तो जब वो सुनते हैं इस तरह की, तुम सुनते हो, तो उनको लगता है कि उनकी मेहनत खराब हो रही है? वो बेचारे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि झारखंड में सबको लगता है सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का.
6: हाँ, वैसा लगता है. और यहाँ कोई साधन नहीं है, नहीं आईटी सेक्टर है, नहीं कुछ है, इसलिए हर बार पेपर लीक होता है. मेहनत करते हैं पेपर लीक होता है, मेहनत करते हैं पेपर लीक होता है हर बार.
20: ये बताइए, सरकार कह रही है कि देखिए हमने 11 लोगों को पकड़ भी लिया है, हम बात करने को भी तैयार हैं, आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पूरी?
6: सरकार कोशिश कर रही है लेकिन पूरी कोशिश नहीं कर रही, सीआईडी छोड़ के सीबीआई जांच करवाइए।
20: तो वो पूछते हैं सीबीआई जांच से क्या होगा, हम ईमानदारी से जांच तो करा रहे हैं।
6: तो कहाँ नहीं जांच हो रही ईमानदारी से, कोई भी चाहिए कहीं भी दुकान ठेला में, जहाँ क्या बोलते हैं चाय की टपरी में आपको चाहिए, वहाँ ही बोल दिया कि किस चीज़ का पेपर चाहिए, उस चीज़ का पेपर आपको मिल जाएगा, जितना पैसा दीजिए वैसा पेपर मिलेगा।
20: इतना बुरा हाल है।
6: हाँ,
20: तुमको लगता है कि पढ़ाई जो कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे आगे?
6: क्या बिजनेस फिर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर सरकारी जॉब नहीं हो पाएगा, पैसा रहेगा तभी सरकारी जॉब मिलेगा, तो नहीं मिलेगा।
20: You know, that's a sentiment that a lot of people have. भैया झंडे को ऊपर रखो, डंडा झंडे का, मतलब अपने हाथ में रखिए, झंडे को नीचे मत रखिए। आप कहाँ से आए हो?
0: जी मैं यहीं से हूँ, रांची से हूँ, और जेपीएससी के एग्जाम भी लिखा था आपका। रवि पीटर मेरा नाम है।
20: रवि, आप लॉयर हैं?
0: जी लॉयर भी हैं। सर ऐसा है कि 26 साल तक छात्र नौजवानों ने सरकार की ही बातें सुनी है, अब समय आ गया है कि छात्रों की बात सरकार सुने। जल जंगल
20: सरकार आज कह रही है हम बात करेंगे छात्रों से।
0: जी सर तो बात करेंगे, लेकिन ठोस उन्होंने अपनी बातों को जो कमिटी होनी चाहिए उसने नहीं भेजा है। छात्रों की मांग थी कि से जो शिक्षा मंत्री हैं, ऑथराइज पर्सन है, मंत्री हैं, उनको भेजा जाए, नहीं कि सरकार के प्रशासनिक सेवा से हम लोग का विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेटिंग गोटिंग से बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को भेज कर लगता कहीं भी सेटिंग गोटिंग हो सकती है।
20: सो लाइक आई सेड, इट इज जस्ट नॉट द स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग सपोर्ट अदरवाइज एज वेल। आई वॉन्ट टू टेक यू बैक लेडीज एंड जेंटलमैन टू दिस तिरंगा यात्रा विच इज टेकिंग प्लेस, इट इज गोइंग बैक to the stadium where this protest, which has been the home to this protest, and trust me, you more than I, my colleague is finding it very difficult to hold the camera in this rain and also show you these visuals. Bhaiya, kahan se aaye?
21: Hum Dhanbad se aaye sir.
20: Dhanbad se.
21: Dhanbad se.
20: Kya naam hai?
21: Mera naam Prem Sagar hai.
20: Prem Sagar hai. Chuta utar gaya hamara Prem. Abhi theek hai. Ab batao, Prem, kya karte ho?
21: मैं पढ़ाई करता हूँ, जेपीएससी की तैयारी करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू भी दिया था, इस बार भी मैं पीटी क्वालिफाई हूँ। हाँ। बट फिर भी प्रोटेस्ट में आया इसलिए क्योंकि इतना सारा इररेगुलरिटी यहाँ पे हो रहा है कि हाँ। मुझे
20: झंडा झंडा ये जो एक बार मैं दिखा दूँ जरा आपको, दिस इज अ बिग फ्लैग, इट्स कितना लंबा फ्लैग है, कितना बड़ा फ्लैग है, एक मिनट भैया,
21: 500 मीटर
20: फ्लैग। तो ये सब लोग 500 मीटर फ्लैग लेके जा रहे हैं। दोस्त एक मिनट इनसे बात करूँ, फिर आराम से आपसे बात करूँगा। तो अब मुझे ये बताओ, अपने घर से इतना दूर रहते हो, क्या करते हैं परिवार वाले आपके?
21: परिवार वाले बस अपना जो भी प्राइवेट जॉब है, अपने घर में दुकान है, राशन की दुकान है, बस उसी किसी तरह से गुजारा चल रहा है।
20: कितने लोग हैं घर में?
21: घर में तो भैया भाभी है, पापा मम्मी है, वैसे भैया तो अलग रहते हैं लेकिन पापा मम्मी के साथ मैं रह रहा हूँ। फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है और वो भी उसका भी कारण जेपीएससी है कि अभी तक शादी नहीं हो पा रहा,
20: अभी तक शादी नहीं हो पा रहा है क्योंकि नौकरी नहीं है,
21: नहीं है क्योंकि बेरोजगार को बेटी नहीं देना चाहता। उसके बाद ये भी रहता है कि जेपीएससी निकलेगा तो शायद कुछ हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो लगा रहता कि शायद हो सकता है इस बार कुछ हो जाएगा,
20: बन जाओगे बड़े
21: कुछ हो जाएगी। कम से कम सपना जो है माँ बाप का है, अपना सपना है और झारखंड के लिए कुछ करने का जो सपना है उसको पूरा कर सके। बट यहाँ पे इतना सारा सेटिंग है,
20: कह रही है कि आपसे बात कर लेंगे हम,
21: सरकार बात करना चाहती है, ठीक है मैं मान रहा हूँ, लेकिन सरकार का टैगलाइन है सरकार आपके द्वार, उस टैगलाइन की अभी कहाँ गया सरकार के पास,
22: और मात्र पांच आदमी को जाने देना वहाँ चाहती है। और हम लोग का एक ही मांग था कि ठीक है पांच लोग जाएंगे लेकिन मीडिया को भी रखा जाए और मीडिया लाइव चलाएगी, तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये तो गलत बात है। तो फिर आप मतलब पांच लोगों के कारण में कुछ करना चाहते हैं?
20: नहीं तो अब ये बताइए, जैसे अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, तो वहां पर भी जब सरकार ने बात करने के लिए बुलाया था तो दो लोग सरकार से बात करने गए थे और उसके बाद जब बातचीत हो गई तो उन्होंने आके मीडिया को बताया कि क्या बातचीत हुई है।
22: वहां का एक मतलब लीडर थे लेकिन यहां कोई लीडर नहीं है। हाँ। यहां सभी छात्रों ने मिलकर गठबंधन
20: आराम से बोलेंगे।
23: मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सीजीपी में जो आयोजन था वो एक ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर।
20: एक मिनट, हाँ
24: सर, प्रॉपर लीडर है, पांच लीडर है हमारे, पांच लीडर है, वो लीड कर रहे हैं, वो लीडर हमारे हैं।
23: कमिटी बनी हुई है
24: सर।
23: और स्टूडेंट को भरोसा कैसे होगा? हाँ। बंद कमरों की बातचीत में अगर आप ले लेते हैं तो हमारे स्टूडेंट को भरोसा नहीं होगा। हाँ। और जो कमिटी में जब बैठक हुआ था तो हमेशा यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आएगा। हाँ। हम ओपनली यहाँ स्टेज में बात करेंगे। हाँ। बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम क्या बोल के आए वो मीडिया में वो क्या प्रेस कर।
20: सीआईडी की जो जांच चल रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 11 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया, हम और जांच कर रहे हैं, अगर उसमें जो भी और दोषी सामने आएगा उसको भी अरेस्ट करेंगे, तो उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या?
23: बिल्कुल नहीं। इसका रीजन क्या है सर? शराब घोटाला हुआ, विनय चौबे जी पर सीबीआई के सीआईडी सॉरी सीआईडी की जांच हुई, पुनः वो आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लिए। पूजा सिंघल जी का इतना बड़ा जमीन का घोटाला हुआ, सीआईडी की जांच हुई, 6 महीने बाद पुनः ऑफिस ज्वाइन कर लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ सर, क्रमिक विभाग के अंदर आता है जेपीएससी, सीआईडी आता है गृह विभाग के अंतर्गत, दोनों मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास है। तो क्या हेमंत सोरेन की जांच हेमंत सोरेन करेंगे या हेमंत सोरेन की जांच थर्ड पार्टी को करनी चाहिए, आप बताइए। दोनों विभाग के मंत्री तो आप हेमंत सोरेन खुद हैं, और कैसे आपकी रिपोर्ट सही मान
1: लो। एजुकेशन मिनिस्टर भी वही है और उनकी जांच उन्हीं का डिपार्टमेंट कैसे करेगा, ये आपका एक बहुत बहुत शुक्रिया। यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट वॉइसेस, यू विल सी वॉइसेस, as I said, even in the CJP protest, they were sir, आपने अपनी बात कह दी, अब मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। A lot of times at the CJP protest in Jantar Mantar, and I will tell you the difference as well, the crowd may not be as much, but all of these people are students, many of them, those who are themselves giving the examination, those who have themselves for many years been trying to, in fact, give the examination of the JPCC, many have gone through mains and failed, they believe that they should get a fair chance. And for that fair chance to take place, this is the time, as for them, where accountability needs to be fixed and the system needs to be overhauled. And that is why, for them, it doesn't matter how many people are coming in. The BJP leaders came to the stage today. They told them that this is only for netic support, for moral support. Like you saw at the Jantar Mantar protest as well, there was ISA, there was SFI. Similarly, there are here ABVP, ISA, SFI, all other organizations as well, the Students' Union. But they are galvanizing behind a genuine demand of these students. And that is why at least the difference that you see is the government is not trying to, in fact, portray this or saying that, you know, all of these are political.

0: और आपको लगता है कि सरकार सेंसिटिव है, सुन रही है? सरकार ने आज बोला कि बात भी करने को तैयार है।
1: नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार जब तक नहीं सुनेगी, हम लोग सब साथ हैं स्टूडेंट के, जितना हो सकता है।
0: आपको लगता है कि अगर जितना लंबा ये नहीं सुनेंगे, उतना और बढ़ेगा, और लोग साथ में आएंगे आप जैसे इनके साथ?
1: यस सर, बिल्कुल। जितना लंबा होगा उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और उतना ज्यादा सरकार को सुनना पड़ेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। यू वुड सी द फूड दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स कमिंग डाउन। आई मीन, इफ आई कैन टेल यू अबाउट द रेन, इट्स कमिंग डाउन हार्ड ऑन दिस वेरी स्टेज लेटर। आई मीन, आई विल गो एंड स्पीक टू मिस्टर माथो एज वेल, बट दिस इज वेयर हिज side of the protest is, the demand is same, but of course they are a political outfit, they are here along with some students, and on the other hand I will take you to that place as well where the students are also sitting. Now this is where half of the protest is. They used to be together, but when the students felt that there is a lot of political interference, that's the time when they decided dost ek minute main nikal jaun. So you know, you have to be careful when you are moving around because of a lot of people, YouTubers, doing their work here, some police as well. Now, I want to show you something, ladies and gentlemen, just to give you an understanding of the resolve of the young people. It is not food, it is not money, it is not even political ideology. The young are fired and fueled by youth. And the example for that is, it's in fact started to rain very, very hard. Right now, it's really, really coming down. And all those students, those who had done their Tiranga Yatra, are under that tent. So this entire stadium, which has been a Krantikari sort of a stadium for many, many years, is seeing a protest where on one hand is Mr. Mahato. Of course, he's his own political outfit fought an election. He's demanding for the same demands as the students have been. Bahut bahut shukriya, thank you so much. Kya naam hai aapka?
2: Nityam Jha.
0: You know, I was just walking and this gentleman just put his umbrella over my head. Nityam, kahan se aaye ho?
2: Aap Jharkhand aaye hain bhaiya. Aapka dhanyawad karna to hamara farz hai.
0: Thank you Nityam, aap hamara kaam hai ye dost. Par aap ye batao, aap kahan se aaye ho?
2: Main Devghar se aaya hoon. Ranchi mein hi rehte hain abhi hum log. Ha. Ye dekh rahe hain kitna zordar barish ho raha hai aur हजारों की संख्या में छात्र संघर्ष कर रहे हैं।
0: अश्विनी, हाँ। ये जो
2: लेकिन हेमंत सोरेन जी,
0: हाँ।
2: होश नहीं आ रहा है उनको भैया।
0: हेमंत सोरेन कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं।
2: आना चाहिए ना,
0: हाँ।
2: आना चाहिए
0: क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर वही है।
2: बिल्कुल, और मुख्यमंत्री भी है, प्रधान भी है हमारे,
0: हाँ।
2: राज्य के,
0: हाँ।
2: उनको तो ये बारिश डेली रोज हो रहा है बारिश, उनको तो देखना चाहिए बच्चों के साथ आके। देख रहे हैं भैया, छात्रों का संघर्ष देखिए।
0: सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इट्स रियली, एज आई सेड, कमिंग डाउन हार्ड एट दिस मोमेंट, बट दी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ देम एब्सोल्युटली ड्रेंच्ड, हैव कम हियर बिकॉज दे फील दैट दिस इज अ मोमेंट वेयर दे कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू लिसन टू देम। व्हाट आई विल ट्राई एंड डू, I will just go in the room and I will, okay, let's just do one thing. Ashwini, just come here. There is this continuous protest which is going on, and let me just get in here. This is a continuous, protest. Let me help my camera person. Let me... That's my camera person Ashwini, and now what we'll try and do, this is the protest of the students. The students have been here for a long time. Kab se ho yahan pe?
2: Abhi to 11-12 din ho gaye.
0: 11-12 din ho gaye.
2: Ha, ho gaya.
0: 25 se aage the.
2: Ha.
0: Naam kya hai?
2: Manmani Pramanik.
0: Kahan se aaye?
2: Sarekala Kharsuwa.
0: लगातार ये ढपली बजा के लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं।
2: क्या करें, सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रहे, सोच रहे इससे कम से कम आवाज तो दब गया, अब इसी से आवाज
0: गला गया, ढपली से आवाज चली जाए,
2: सोच रहे ढपली का आवाज तो सरकार तक पहुंचे। हमारे मांग है कि जेपीएससी रद्द हो जाए और हम सीबीआई का जांच चाहते हैं। सीआईडी का जांच पे हमें भरोसा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखे हैं सीजीएल में क्या हुआ। सीआईडी आया, जितना साक्ष्य को मिटा दिया, लिपापोती करके बंडे बस्ते में डाल दिया, हमें भरोसा नहीं है।
0: नारा क्या लग रहा है?
3: जेपीएससी रद्द करो, सीजीएल रद्द करो, जेपीएससी रद्द करो, सीजीएल रद्द करो।
4: जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।
2: हमारी सरकार को
0: राष्ट्रगान हो रहा है. The national anthem is going to be played in just a short while from now. That is what they are asking. They have just come back and I have come back with them. आप volunteer हैं madam?
4: Yes sir.
0: कहाँ से आई हैं आप?
4: मैं बोकारो से आई हूँ. मैं प्रवक्ता हूँ. हम लोग पांच जन मिलकर लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को.
0: आप प्रवक्ता भी हैं sir?
4: हाँ जी जी.
0: इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है उसके बाद भी हौसले कम नहीं हो रहे हैं लोगों के?
4: हौसले तब तक कम नहीं होंगे सर जब तक सरकार झुकेगी नहीं, क्योंकि हम लोग सरकार को झुकाने का इरादा ऐसा हम लोग.
0: The national anthem is being played. So what we'll do, we'll just play out some reactions for you in the meantime.
5: कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है. और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे.
0: एनीवेयर एल्स व्हेन यू हियर द नेशनल एंथम, ट्रस्ट मी, इट वोंट हैव द सेम इफेक्ट दैट इट जस्ट हैड हियर. यंग पीपल सिंगिंग द नेशनल एंथम, एंडिंग इट विद भारत माता की जय, द रेजोनेंस, ट्रस्ट मी, इज लाउडर देन द थंडर दैट इज हैपनिंग आउटसाइड एट दिस मोमेंट. आप मुझे बता रहे थे कितने लोग अभी आपके जो यहाँ पर हैं, जो अभी अनशन पर बैठे हुए?
4: अभी हमारे चार साथी अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें कि दो महिला हैं और दो पुरुष हैं.
0: अभी वो उनके क्या हालात हैं, कैसी हाल में हैं वो?
4: अभी तो वो लोग ठीक हैं, बट पैर हाथ खींच रहा है, नस वस खींच रहा है, क्योंकि लड़कियाँ हैं और दो दिन से कंटिन्यू विदाउट पानी का वो लोग अभी अनशन पे हैं, तो थोड़ा सा परिस्थिति खराब हुआ. बट
0: आप मुझे लेके चल सकते हैं?
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेके चलूंगी आप.
0: अच्छा, तो व्हाट वी ट्राई एंड डू, वी विल मेक आवर वे टुवर्ड्स द मेन स्टेज वेयर दीस प्रोटेस्टर्स, दोज हु हैव बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक आर. दिस इज द स्टेज एंड दिस इज वेयर ऑल दोज स्टूडेंट्स, दोज हु हैव बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक हैव बीन प्रोटेस्टिंग. जस्ट टेक माय शूज ऑफ, टोटली वेट. Let me just try and can I just show you, I'll try and see if Ashwini can come in. Ashwini's here. I just want to show you, this is the stage, the protest. This is where everything is being, in fact, more or less being controlled from. Shibu Soren, father of Hemant Soren, or you know, a legendary figure as far as politics of Jharkhand is concerned, and you would all see Bhagat Singh's picture there. You will see Birsa Munda. You will see Baba Saheb Ambedkar. You would also see B.R. Ambedkar. And there is Mahatma Gandhi as well. And that's where all these people say that they are drawing their strength. These are the students. Aap mein se kaun kaun abhi hunger strike par hai? Aap hain, aap hain. Aap charo log hunger strike par hain. This is the demand. Yehi mudda hai, yehi demand hai.
6: जो जेएसएससी और जेपीएससी में जितने भी एग्जाम में धांधलियां हुई है ना, सभी एग्जाम में सीबीआई और ईडी की जांच करने की मांग चल रही है.
0: आपको लग रहा है कि 25
6: छोटा मुद्दा है, इससे बड़ी बड़ी मुद्दा है वहाँ पे है. इतना अंदर तक धांधलियां हुई है ना कि कोई नहीं बता सकता है.
0: कब से आप बैठी हैं भूख हड़ताल?
6: हम भूख हड़ताल कल से बैठे हुए हैं, इससे पहले 12 दिन तक यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं. लड़की होकर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, वो हमको मजबूर किया गया है यहाँ आंदोलन पे बैठने के लिए.
0: ठीक है तबीयत आपकी?
7: अभी ठीक है, ठीक ठाक हूँ, लेकिन हाँ लग रही है. कल से बैठी हुई हूँ
0: भूख हड़ताल पे.
7: जी जी, कल हम लोगों ने क्या, हमारा जो 11वां दिन था प्रोटेस्ट आमरण अनशन, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया है, जो कि हमारे जानते होंगे यहाँ के शिबू सोरेन जो इस राज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, तो उनकी कल यहाँ पे पुण्यतिथि थी. हम लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की और हमें एक उम्मीद थी कि आज के दिन उनके जो बेटा हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट निकल करके आएगा, बट कुछ भी नहीं निकला. देन हम लोग
0: कि हम बात करने को तैयार हैं,
7: जी देखिए बात करने को तैयार है तो हम लोग चाहते हैं कि बात करें, हम लोग तो उन्हें बुला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से। हम लोग आज कितने दिनों से गुहार कर रहे हैं यहाँ पे, आज हमारा 12वां दिन है, बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आइए, यहाँ के बच्चे यहाँ पे तितर बितर हो रखे हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश में यहीं पे डटे हुए हैं।

0: आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि देखिए राजनीति होगी बीजेपी वाले, क्योंकि आज यहाँ पर आए थे तो उनको लगता है कि उसका फायदा उठा लेंगे बीजेपी।
1: देखिए करप्शन इतना अंदर से हुआ है, सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि वो लोग कहीं ना कहीं हमें विपक्ष का बोल के या तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जोड़ करके हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। ये जो रिफॉर्म हम लोगों ने आज खड़ा किया है इतने मेहनत से, ये 26 सालों बाद खड़ा हुआ है, बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ खड़ा हुआ है। सर पहले भी पेपर लीक के मामले आते थे लेकिन इतना बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ था, कभी नेशनल न्यूज़ नहीं बना था हमारा झारखंड, लेकिन इस बार हर जगह देखो झारखंड का न्यूज़ चल रहा है।
0: आप क्या करते हो, आप क्या करते हो?
1: सर मैं जेपीएससी का प्रिपरेशन करती हूँ।
0: प्रिपरेशन कर रहे हो? इससे पहले एग्जाम दिया
1: सर? 14th जेपीएससी दी फिलहाल में ही, देन 14th जेपीएससी में इतनी गड़बड़ियाँ हुई यहाँ पे, सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है। 14th जेपीएससी में एक बच्चा मैं बताती हूँ 37 क्वेश्चन ओएमआर सीट में कलर करके आता है, 15 उसके सही होते हैं, 17 उसके रॉन्ग हो जाते हैं, इवन देन वो पास आउट है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बच्चा 48 कलर करके आता है वो भी पास आउट है।
0: मुझे अपना नाम बताओ पहले।
1: स्टूडेंट सर 142 करके आए लेकिन हम लोग पास नहीं है।
0: आपका नाम क्या है?
1: हबीबा।
0: हबीबा मुझे ये बताइए कि कितनी मेहनत लगती है और क्यों सबको लगता है कि जेपीएससी क्रॉस अगर पास कर लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। कितनी मेहनत लगती है, कितने साल आपको खपाने पड़े?
1: सर बहुत मेहनत लगती है। मैं बता दूं कि मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रही हूं, पहले मैं जेएससी के प्रिपरेशन कर रही थी, जेएससी में इतनी धांधलियाँ हुई, जेएससी ने हमें इतना धोखा दिया, फिर मैं जेपीएससी की ओर आगे बढ़ी। सर जेपीएससी के साथ मैं 7 सालों से लॉयल रही हूं लेकिन जेपीएससी कभी मेरे साथ लॉयल नहीं रहा है। यहाँ पे बार बार गड़बड़ियाँ हो रही है, बार बार धांधलियाँ हो रही है, हर बार मैं यही उम्मीद लेकर के सोचती हूँ कि शायद मेरे में ही कुछ कमी रह गई होगी, मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया होगा।
0: आपके घर वाले क्या करते हैं?
1: फिर मैं नेक्स्ट टाइम करती हूँ।
0: घर वाले
1: छोटे मोटे किसान है, किसान फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे सर जितने भी बच्चे आपको दिखेंगे ना सब मिडिल क्लास फैमिली से दिखेंगे और सबका एक ही चीज़ है कि हमें बस अवसर दो। सर वो लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अवसर मांग रहे हैं। नौकरी
0: फेयर चांस?
1: यस सर, नौकरी तो वो लोग अपने काबिलियत के दम पे लेंगे, एग्जाम्स पास करेंगे तब न लेंगे, वो अवसर भी हमसे छीन लिया जा रहा है।
0: जब इतने साल प्रिपरेशन करते हैं और आपका नहीं होता है या पेपर लीक हो जाता है तो रद्द हो जाता है, तो घर वालों को फोन करके कैसे बताते हो कि इस बार भी नहीं हुआ या इस बार नहीं हो पाएगा?
1: जी सर बहुत ही निराशा के साथ हमें कहना पड़ता है कि इस बार नहीं हुआ। जब भी हम लोग एग्जाम लिखने जाते हैं ना सर, जब भी हम लोग सेंटर में जाते हैं, घर वाले जब भी छुट्टी होता है एक पेपर लिखने के बाद, तब वो लोग कॉल करके पूछते हैं कैसा गया, हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा गया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जैसे ही सर एग्ज़ाम लिख करके वापस आते हैं, ऑटो में बैठते हैं कि पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और जब घर वालों को ये सारी चीज़ें बतानी होती है उन्हें बहुत उम्मीद होती है सर। जब हम लोग एग्ज़ाम लिखने जाते हैं ना वो उम्मीद में होते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस उम्मीद में वो लोग बैठे रहते हैं। और सर हम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं, महिलाओं के लिए एक लिमिटेड वक्त होता है, उनकी शादी करा दी जाती है, एक तो उनके लिए बस डिग्री करा देते हैं कि इंटर पढ़ो, मैट्रिक पढ़ो या ग्रेजुएशन करो। अगर उन सबसे बच के लड़कियां बाहर निकलती है, कोई फैमिली अगर ज़्यादा सपोर्टिव हुई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगती है, और जब वो लोग लगती है सर उन्हें भी लिमिटेड वक्त दिया जाता है कि इतने तुम्हारे पास इतना ही वक्त है। लेकिन इवन देन सर ये सरकार एक एग्ज़ाम को लगाने में 5 साल लगा देती है। मैं बताती हूँ अभी जो LDC कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग का एग्ज़ाम है, 2022 में फॉर्म आया, फॉर्म फिलअप किया गया, नहीं हुआ एग्ज़ाम। 2023 में फिर से फॉर्म फिलअप किया, 2024 में फिर से फॉर्म फिलअप किया, 2025 में बोला अगस्त में एग्ज़ाम लूँगा, नहीं लिया, 2026 में बोला जून में लूँगा एग्ज़ाम, नहीं लिया। कितने हो गए सर? पूरे 5 साल यहाँ पे हो जा रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम में बच्चे 5 सालों से लगे पड़े हैं, इवन देन अभी भी ये नोटिस आ रहा है कि इस एग्ज़ाम पे अभी रोक लगाई जा रही है।
0: यू नो मैनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग व्हाई इज़ इट दैट आई एम जस्ट टॉकिंग टू कंटिन्यूसली टू हर। You got to understand where they come from. You got to understand the sacrifices and the struggle that their families make for them to have a shot of any kind, you know, for a better life. While we are speaking about this, and I will get you a lot of voices of these students because this is very, very important to hear. There is a breaking news coming in. The Chief Minister has met the governor at this moment. This is the latest that we are getting at this moment on the broadcast. The Chief Minister has just gone and met the Governor. This, remember, is ahead of the Assembly session which is going to begin tomorrow. My colleague Raman is with me at this moment. Raman, why has the Chief Minister gone ahead and met the Governor? What was on the agenda?
2: Well, see, Ankit, it's a very important meeting of Chief Minister with the Governor of the state, and this is a meeting which just randomly before the monsoon session, which starts from tomorrow. And right now, I am standing where the India block meeting is going on. Hemant Soren, the Chief Minister, is heading the meeting of

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आकर मसाला।
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क,
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज रूम, weekdays at 4 PM.
13: Our pure shahi paneer masala, delicious, healthy, every day.
14: POK ke firing range mein khade hain.
15: Just few inches away is POK.
14: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain. Is it fire?
13: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
16: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
10: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: Welcome back, and we have some big breaking news coming in for you. Joel Kaplan, the Chief Global Affairs Officer at Meta, has now apologized. He goes on to say, I apologize to the Minister on behalf of Meta for the error restricting Prime Minister Modi's post. Remember, all these apologies are by the Meta CEO Mark Zuckerberg, and now even Meta's Chief Global Officer apologizing. I'll go across Deeksha from on this. Deeksha, slew of apologies. Earlier, we of course heard Mark Zuckerberg apologizing, and now the Meta Chief Global Affairs Officer, this time apologizing on the removal of Prime Minister Modi's video for a brief period of 4 to 5 hours.
3: The official statement from Meta, Raisha, is that Joel Kaplan, who's the global policy chief for the company, has said that he has personally conveyed an apology to the minister regarding the Prime Minister's video, which was temporarily restricted in India. This is now Meta's official statement on record after the two meetings that were held, one in the afternoon with the IT secretary, S. Krishnan, and one in the afternoon with Union Minister Ashwini Vaishnav. The government has also said that an apology has been forthcoming from Mark Zuckerberg as well. However, Meta has not confirmed that yet.
2: So, right, Deeksha,
3: bringing you the latest.
2: Right, Deeksha, slew of apologies ahead of the round 2.0 meeting tomorrow. We'll track that very closely with you. All right, we have another breaking news coming in. BJP has now countered Rahul Gandhi. BJP's counter on Rahul Gandhi after Rahul Gandhi's briefing with the students. Take a listen.
4: मगर सदन चल कहां रही है? 5 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है. 11 बजे सदन शुरू होता है, हुड़दंग इस प्रकार मचाई जाती है राहुल गांधी जी और उनके सांसदों द्वारा कि 2 मिनट के अंदर हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है, फिर हाउस बैठती है, फिर आप स्पीकर के डेस्क तक को थपथपाते हो, आप तख्तियां लेकर आते हैं, तख्तियां टीवी में दिख जाए उसके लिए पुरजोर तरीके से उछलते हैं. वैसे में किस प्रकार से आप आशा कर रहे हैं जहां सदन नहीं चल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि माननीय गृहमंत्री नहीं आ रहे? जिस विभाग की चर्चा रहती है उस विभाग के मंत्री अवश्य आते हैं. माननीय गृहमंत्री के विभाग की चर्चा होगी, वो जरूर रहेंगे, वो हैं सदन में ही हैं. मगर आप किसी भी विषय पे चर्चा नहीं होने दे रहे, किसी भी विषय पे आप सदन को चलने नहीं दे रहे. देश ये सब कुछ देख रहा है क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आधार पर आज नरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के नरेटिव सेट करने की ये जो प्रयास है राहुल जी, यह राजनीति में उचित नहीं है. और मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति के तरीकों पर है. बच्चों से, और मैंने सुना आज मुस्कान ने भी कहा कि मैं मुस्कान शर्मा हूं. मुस्कान, आप अगर मुस्कान शर्मा भी हो तो हमारी देश की बिटिया हो, और मुस्कान खान भी हो तो हमारी ही देश की बिटिया हो. शर्मा हो या खान हो, ये हिंदुस्तान की देश की बेटी हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से ये देश बढ़ता है. इसलिए ये जो डिविजिव एजेंडा सेट करके राहुल गांधी जी ने चलाने की कोशिश की है, यह बहुत गलत है. यह देश का हृदय इतना बड़ा है कि इस देश ने देखा है कि आप साधु के वेश में आकर पार्लियामेंट के आगे बैठते हैं, साधु को घसीटा जाता है, साधु जी त्रिपुंड लगाए हुए

0: हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी पिटाई की जाती है, मगर इस देश का हृदय इतना बड़ा है कि वह इस गरल को भी श्रावण के मास में पी जाता है, मगर उस पर उफ तक नहीं कहता है। और आप इस देश में विभाजन के बीज बो रहे हो बच्चों के माध्यम से। बच्चे, कभी यह मत सोचना कि धर्म के आधार पर इस देश के बच्चों को विभाजित करने का प्रयास कोई कर रहा है। निडर होकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं और सारे बच्चे इस देश के हैं। इतना ही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: All right, so clearly there, BJP Sambit Patra saying that Rahul Gandhi and the opposition is perhaps not letting the parliament function. We also had that meeting of Prime Minister Modi with the Rajya Sabha MPs, where he also asserted, and he rather told them that the parliament needs to function. So at this point of BJP, again slamming the opposition over no functioning taking place in parliament. On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back, lots more lined up.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
6: मसाला। याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
7: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
8: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज रूम, weekdays at 4 p.m.
11: Our pure shahi paneer masala, delicious, healthy, everyday.
12: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
13: कुछ इससे भी अनोखा।
12: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।
14: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
15: Just few inches away. Okay.
14: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
13: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
17: Really?
16: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
11: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
18: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
11: When stories have impact.
19: Padmatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
11: Then news has influence. The buck stops here with Padmatar Joshi.
18: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
20: I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
21: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
22: Welcome back. We have some breaking news coming in for you at this point of time. This is regarding the FCRA bill, the center is now set to bring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, which is the FCRA bill,

0: Sir, I should go. I'm going for my people. It is not the matter of government.
1: Madam, next question, please.
0: Comment.
2: Another news, Dhanush is making headlines weeks after he expressed willingness to expand social welfare measures. Recently, after learning about the condition of the school's buildings, Dhanush voluntarily came forward and provided major assistance in constructing this building that you see on your screens right now. He has also said that he will renovate the other buildings and even construct a new one in the vacant spaces. The school management has now named the new building Dhanush Block. They also invited all the friends who studied with him and gave him a surprise. Dhanush paid floral tributes to the statue of revolutionary leader Dr. MGR, then watched the children dance on stage with delight. After giving advice to the children and speaking cheerfully from the stage, he also took pictures with the school students and teachers. In addition, he sat and chatted with all his school friends and also had a meal with them. In other news, after a glorious run at the Commonwealth Games, NDTV caught up with the Indian boxing contingent. Here's that exclusive conversation with our boxing heroes.
3: For a very long time, we have been saying that Mary Kom is the five-time world champion, and now we have five stars in Indian women's boxing, five gold medalists from the Commonwealth Games, and two boys who have won gold medals as well. There are total 10 medalists, and many, many congratulations. Preeti, sabse pehle aapke saath shuru karenge. Baklava khaye aap?
4: Yes, definitely khaya maine. Bout finish hone ke baad main next day baklava khaya, aur even main lekar bhi aayi baklava.
3: 54 kilogram category mein aap box karte hai. Weight management is a very, very big thing. Tell us, itne din tak kaise aap manage kar paate hai?
4: It's definitely weight management ek bahut challenging rehta hai during competition. क्योंकि उस टाइम पे हमें अपने आप को वेट के अंडर में रखना पड़ता है, जो हमारा वेट कैटेगरी रहता है, और उसके लिए थोड़ा डाइट पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है. बट आई थिंक वो भी एक प्रोसेस है. आज ये मेडल्स जो हमें मिले हैं, तो वो भी एक प्रोसेस का ही पार्ट है, जिस वजह से हम मेडल जीत पाते हैं.
3: इट्स शाइनिंग ऑन यू. मेनी कांग्रेचुलेशंस. आपसे पूछेंगे, राजस्थान से आप आते हैं, बट सबसे पहले जब आप ट्रेन कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि आपको कॉन्स्टेंटली कोई लड़के फाउल कर रहे थे बिकॉज दे डिडंट वॉन्ट यू टू विन अगेंस्ट देम. टेल अस, वो इंजरी से उभर कर कैसे आप कॉमनवेल्थ गेम्स में आए और गोल्ड जीते?
5: मैंने 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, एंड अपने अकेडमी से या फिर राजस्थान में बॉक्सिंग में फर्स्ट फीमेल थी जो इंटरनेशनल खेलने जा रही थी, और काफ़ी अच्छे नॉर्मल इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स में मेरे मेडल्स थे. तो कुछ थे थोड़े पजेसिव बॉयज़ थे, तो विदाउट हेडगार्ड, वो मेरी मिस्टेक थी कि विदाउट हेडगार्ड आई वाज फाइटिंग विद देम, और कुछ फाउल पंच लगने की वजह से मुझे क्लॉटिंग हुआ ब्रेन में, जिसकी वजह से एक महीने तक थोड़ा मेमोरी लॉस और हॉस्पिटलाइज थी मैं. बट उसके बाद भी डॉक्टर ने तो ये बोला कि बॉक्सिंग इज़ डिफिकल्ट फॉर हर, बट स्टिल फादर ने बोला कि अगर ये बोलेगी तो हम ज़रूर करने देंगे, तो आई चूज़ द बॉक्सिंग एंड.
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7. Motivated.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
12: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
14: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
15: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
16: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
15: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
17: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
19: Really?
18: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
20: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
21: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
20: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
13: When stories have impact.
22: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
13: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
20: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
23: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
24: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Anthony.
23: The show that sets the prime time agenda.
24: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
23: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
25: Launch control, 0 to 100.
26: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
27: This car makes no sense, yet it makes every sense.
28: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
29: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते हैं आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस।
3: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on every story that India is talking about, the buck stops here. Is the demand for justice by students in Jharkhand a bewajah ka natak? Today it was pouring in Ranchi. It came down in buckets. There was no place to even stand. The ground was muddy, the air was humid and unbearable. And in the middle of it all, hundreds of students sang a full-throated national anthem. Thousands of them chanted Bharat Mata Ki Jai. They carried out an Azadi march with the tricolour in hand. They refused to be silenced as a bewajah ka natak. It's day 12 of the dharna by Jharkhand's Generation Z, by their Gen Z. It's day 2 when Gen Z in Jharkhand is sitting on hunger strike. And their demand is JPSC exam results be cancelled. A CBI probe must be started and the chief minister must speak to them. That's it. That's all they want. They just want to be heard. But where were those that these students, this Gen Z of Jharkhand, was reaching out to? One state minister was calling the allegation around the issue a bewajah ka natak. In Delhi, the Congress and JMM, who are in government in Jharkhand, carried out a protest march for students' rights. But that march sought justice only for the students who were at Jantar Mantar, not in Jharkhand. Those who were at Jantar Mantar on the 20th of July. The Youth Congress also agitated, but they were in Chandigarh, not in Ranchi. And as for the Cockroach Janta Party, they did another deep brainstorming. They put their heads together and decided that they will go to Jharkhand. But eventually, sometime in the unforeseeable future.
4: पुलिस में जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
7: उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार को मानना चाहिए तुरंत। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के अधीनस्थ एक जांच टीम बिठाई जाए।
3: सो विच जेन ज़ी मैटर्स, हु डिजर्व्स टू बी हर्ड, हु डिजर्व्स टू बी कॉल्ड बेवजह का नाटक। Today, the Jharkhand Chief Minister did open a door for negotiations with the protesters. A sub-divisional officer and an additional district magistrate reached the protest venue with the government's proposal and urged all the students there to gather at the main stage for discussions. But at what point will this your Gen Z versus my Gen Z selective memory finally end? Will students across the board be heard? Will their issues be addressed, or only those who are politically convenient finally be considered relevant?
8: जो सांसद जीतकर गए हैं वहां पार्लियामेंट में, और भी तो भाजपा के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है तो उत्तर प्रदेश के सांसद लोग क्यों नहीं धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट के पास? बिहार के सांसद लोग क्यों नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट के में धरना? बेवजह यहां नाटक किया जा रहा है, झारखंड की छवि को खराब की जा रही है, युवाओं को इस तरह से दिखाया जा रहा है, गलत गलत वीडियो कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। कुछ नहीं, यहाँ धरना है, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के जो भी मांग है हम वो बात करेंगे और विकल्प के रास्ते हम लोग खुले रखे हैं।
3: स्टूडेंट्स,
9: डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए, इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चली, एक सोशल मूवमेंट चली।
2: द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस, द पर्सन हु इज हैड द पेलेट गन फायर इन टू दिस यंग लेडी, द पर्सन हुज हैड द पेलेट गन फायर इन टू दैट यंग मैन आई ब्रॉट हियर, द पर्सन हु हैज टर्न द पुलिस फोर्स अगेंस्ट दिस यंग लेडी हुज आस्किंग फॉर हिज फॉर देयर प्रोटेक्शन इज मिस्टर अमित शाह, इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He does not have

0: the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened.
1: मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं. झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए. राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृहमंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे.
2: All right, joining us today on the show, we have Hrishikesh Singh, who is a spokesperson of the Congress in Jharkhand. Mrityunjay Sharma represents the BJP today from the Aam Aadmi Party. We have Chirag Sethi. But I want to go across to the people who really matter today. Chandi Tiwari, Vivek Pandit, Pooja Kumari, Umme Hami, Ranjit Paswan, Raj Kashyap, all of them are sitting there inside the stadium and they are in the rain. You can see them under an umbrella there in Ranchi. And why this is important also, because remember, this is a cross-section. You can see the tricolor there in the background. If there is a Ranjit Paswan here, there is also an Umme Hami. There is also a Pooja Kumari. There is also a Chandi Tiwari. And this is what matters, because there are many shades of Gen Z. Not one person, not one community, not one gender, not one voice, not one language can claim to be representative of who speaks for Gen Z today. And which is why I will come to you first. Chandi, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सरकार से बातचीत का एक उम्मीद की आपको किरण दिखी है. दो दो अधिकारी वहां पर आए हैं, क्या कम से कम एक वो रास्ता आप खुला है, एक ये दरवाजा खुला है?
3: सरकार से आज बात किया है, तैयार हो रहा है बात करने का. सरकार हमारा जो डिमांड है,
2: कितना डिमांड होता है, क्योंकि बार बार आप ये मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. विवेक, सीबीआई पे ही आप क्योंकि क्यों सीबीआई ही क्यों?
3: हम लोग चाहते हैं कि अभी जो मेरा हम लोग का पहले मांग है कि सारे इल्जामों को जो है हम लोग बता चुके हैं पहले ही, रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए. क्योंकि सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा, यहाँ जो सीआईडी जांच है, उस इतना बड़ा अधिकारी को नहीं पकड़ा जा सकता सीआईडी के द्वारा, जो चाहे किसी भी टीम को, क्योंकि उसका भी ये स्टेट नहीं आता है, जवाब रहता है किसी न किसी प्रकार. हम चाहते हैं कि सीबीआई जो स्वतंत्र रूप से हो, कि जो हम स्टूडेंट है, हमको भी विश्वास इस सिस्टम पर हो और हम उम्मीद से तैयारी कर सकें.
2: क्योंकि पूजा, बार बार एक चीज यहाँ पर स्टैंड आउट कर रही है कि मैंने कई सारे लोगों को देखा वहां पर बोलते हुए, और आज हम दिन भर ये सब नेताबाजी, ये सब जो पॉलिटिशियंस थे वो बोल रहे थे. कोई कह रहा था हम अपना सपोर्ट दे रहे हैं, कोई कह रहा हम खाना भिजवा रहे हैं, और बार बार जो वहां से रांची से आवाजें आ रही थी, वो कह रही थी हमें नहीं चाहिए बॉस, हमें कॉकरोच नहीं चाहिए, हमें कॉकरोच जनता पार्टी नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए, आप रखिए अपना अपने पास, हमें मॉरल सपोर्ट दे दीजिए, हमारे मदद कर दीजिए, बट हमारा मन साझा मत कीजिए. क्यों पूजा, अगर आपको आवाज आ रही है?
4: यस मैम, क्योंकि हम लोग छात्रा ही हम लोग लीड करना चाहते हैं, और किसी को हम लोग, हाँ अगर अगर आप लोग का समर्थन देना है तो बैठ कर दीजिए, आइए कुछ हम लोग को समर्थन दीजिए, हम लोग उतना काफी है, हौसला बढ़ाइए काफी है, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं चाहिए मैम, हम लोग छात्रा काफी है, हम लोग को छात्रा ही लीड करेंगे मैम,
2: छात्र ही लीड करने चाहिए. और शाम को मैंने देखा वहां पर बारिश भी बहुत पड़ रही थी, मुश्किल तो बहुत हुई होगी.
4: अभी भी बारिश हो रही है मैम, अभी भी बारिश हो रही है, हम लोग बारिश में ही है अभी छाता लेकर.
2: और सब बारिश के बावजूद आप वहां पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे?
4: बिल्कुल मैम.
2: और अभी भी अपने साथ एक तिरंगा लेकर के आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? रंजीत, आपके हाथ में है तिरंगा?
5: जी मैडम. नहीं नहीं, मैं विवेक.
2: बताइए विवेक, क्यों जरूरी है आपके हाथ में तिरंगा होना? और ये इसलिए भी जरूरी है, और मैं चाहूंगी कि सब लोग देखें इस वक्त जो टीवी देख रहे हैं, एक और पोस्टर का जिक्र हुआ था, क्योंकि लगातार जो जो रांची में पोस्टर्स मैं देख रही हूं, एक वहां पर पोस्टर लगा था कि कोई देश विरोधी नारे नहीं लगेंगे, कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई रीलबाजी नहीं होगी, यहाँ पर कोई गाली गलौच नहीं होगी. क्यों, ये क्यों जरूरी था आपके लिए?
6: ये छात्र आंदोलन है और हमारे माता पिता जो है इस चैनल को देखते हैं, सभी गार्जियन हमारी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, तो एक गलत मैसेज.

0: ना जाए कि छात्र अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आए और किसी तरह का बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, वो उचित नहीं है। इतना बड़ा
1: मैम, हम लोग मांगे अपने मांग पूरी करने आए, ना कि हम लोग अब भद्दा भाषा के प्रयोग करने आए। हम लोग मांगे शांति पूर्वक से भी मांग सकते हैं, इसलिए हम लोग शांति पूर्वक से आंदोलन कर रहे हैं। मैम,
2: हम लोग का प्रोटेस्ट बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से होगा, कोई भी असामाजिक तत्व ना शामिल होंगे और ना ही कोई अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल जो हमारे लिए जो इस राज्य को चला रहे हैं, हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है और हमेशा से रहेगा। तो बस एक संवैधानिक तौर तरीके से जो भी संविधान ने हमें हक दिया है, जिस चीज की इजाजत दी है, हम बस उसी की राह पर चल करके सरकार से अपनी मांगों की मांग रख रहे हैं।
3: संवैधानिक तरीके से सारा प्रोटेस्ट होगा। आप बताइए, आपके हाथ में अभी तिरंगा क्यों है विवेक?
4: मैम, हम इंडिया के भारत मेरा देश है और ये फ्लैग हमारी सम्मान है, प्राउड है, गर्व है। मैम, जब नेशनल टीवी पे आ रहे हैं और हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि हम लोग देश का हैं, संविधान से देश से चलने वाले छात्र हैं। और आपने अभी कहा कि कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, बहुत सामान्य व्यवहार और अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैम, एक्चुअली हम लोग झारखंड से आते हैं, हम लोग यहाँ सभ्यता कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों का संस्कार बिल्कुल भी ऐसी कोई भी इजाजत नहीं देती है कि मैं किसी बड़े लोगों से या छोटे लोगों से बदतमीजियां करूँ, किसी को अभद्र भाषा बोलूँ, किसी भी गाली गलौज, किसी भी तरह की चीजें हम लोग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम लोग जानते हैं और नहीं करते, ऐसा नहीं है, हम लोग करते ही नहीं है। तो सरकार से बस मांगे हम लोगों को इसलिए क्योंकि जो हम लोग छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि इतना सालों से मेहनत करते हैं तो हम लोग को बस एक ही अवसर मिलता है, एक सरकारी नौकरी। अगर उसमें भी गड़बड़ियां होगी मैम, तो फिर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, फिर बेरोजगार रह जाएंगे। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हम लोगों से और सपने जुड़े होते हैं, तो हम लोग किसी के सामने, किसके सामने मांगे? बस एक ही होती है, सरकार। और सरकार हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है, उनके लिए बहुत सम्मान है। और जिस तरह का अभी आपने सुना होगा कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा आके बातचीत हुई, एक कमिटी का बोला गया कि आप लोग कुछ मेंबर आइए और राज्य सरकार से वार्ता कीजिए।
2: जी, डेलीगेशन टीम, डेलीगेशन टीम को बुलाया गया है ताकि सरकार से वार्ता हो सके। जो हमारी मांगे हैं हम उनके पास रखेंगे और फिर दोनों के बीच वार्ता होगी, सरकार और डेलीगेशन टीम के बीच।
3: और ये बच्चे, ऋषिकेश जी, आपने सारे बच्चों की आवाज सुनी है, ये बहुत सम्मानित तरीके से तिरंगे के साथ खड़े होके बस इतनी सी मांग कर रहे हैं, एक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर कर दीजिए ताकि फेयर एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चल जाए कि 12 साल से यहाँ क्या चल रहा था।
5: बिल्कुल बिल्कुल पद्मजा जी, झारखंड सरकार खास करके जो अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके मुद्दों के लेकर के गंभीर है और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने भी आवेदन किया है कि आप लोग आइए, बात करिए, दरवाजा खुला हुआ है। और अभी मंत्रिमंडल का एक समूह गठन कर दिया गया है छात्रों से बात करने के लिए। जहां तक सीबीआई की बात है पद्मजा जी, तो झारखंड में जेपीएससी का पहला एग्जाम 2003 में हुआ था जब भाजपा की सरकार थी और जेपीएससी 2 का एग्जाम हुआ था 2005 में, उस समय भी भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री भाजपा के थे और दोनों एग्जाम में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुई।
3: और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करा के उनको जेल में डलवाइए ना, आपके लिए तो और भी सुनहरा मौका है। मैं कौन सा कह रही हूँ कि बीजेपी को छोड़िए, आप कराइए ना सीबीआई का प्रोब इन बच्चों की बात सुन के।
5: मेरी बात हो जाने दीजिए, दोनों जेपीएससी का जांच सीबीआई कर रही है, नतीजा 2026 आ गया 0। व्यापम घोटाले की जांच 2015 से सीबीआई कर रही है, नतीजा 0। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 की सीबीआई जांच कर रही है एग्जाम की, नतीजा 0। 2024 नीट का सीबीआई जांच कर रहा है। आपको जानकारी होगा कि नीट का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया सीबीआई के द्वारा सबूत न पेश करने पर बाइज्जत बरी हो गया, नतीजा 0। 2026 यूजीसी नेट का सीबीआई जांच कर रही है, नतीजा 0। और राज्य सरकार की जो सीआईडी जांच कर रही है पद्मजा जी, व्यापक पैमाने पर जांच कर रही है,
6: 14 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दे चुका है, जेपीएससी की डिप्टी
3: एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है ना सर, उनको इन एक्शंस पे भरोसा नहीं हो रहा है, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि एक आदमी जिसका नाम है अभय तिवारी और मनोज तिवारी पिछले 13 सालों में 12 एग्जाम पास कर जाता है, उसके घर के सारे लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं, वो लगातार एक ऐसी एजेंसी जिसको उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया गया था उससे एग्जाम झारखंड में कैसे करवा लिया? ऋषिकेश जी ये सवाल अगर आज छात्र पूछ रहे हैं, उनको भरोसा अगर नहीं हो पा रहा है, बोलिए पूजा। हाँ
1: झारखंड में भी किया गया था 2021 में, वही कंपनी को दोबारा लाया गया है।
3: यूपी में ब्लैकलिस्टेड, झारखंड में ब्लैकलिस्टेड, फिर उस पे ब्लैकलिस्ट हटा करके उन्हीं को ठेका दिया गया है कि आप ये एग्जाम कराइए, ओएमआर शीट्स आप कराइए, कैसे भरोसा होगा ऋषिकेश जी?
6: पद्मजा जी, टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड हुई 2025 में, उसके बाद भी एग्जाम हुआ, उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, उस मैनेजर के गिरोह के जितने लोग थे गिरफ्तार हो चुके, और झारखंड की जो सीआईडी जांच चल रही है, झारखंड सरकार देखिए इसको बहुत व्यापक पैमाने पर जांच कर रही है, और छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जांच चल रही है कोई भी आरोपी और जो उसमें शामिल होंगे एक भी लोग नहीं बचेंगे। सीबीआई की जहां तक बात है, मैंने बताया कि उनका रिकॉर्ड क्या है, बता दें 5 केस बता दें जो परीक्षा नियमितता का केस सीबीआई सोल्व कर दी हो, लेकिन सीबीआई के जगह छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार का जो बॉडी है सीआईडी उस पर विश्वास करिए, एक भी लोग नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज खुद कहा कि सरकार के दरवाजे छात्र के लिए खुले हुए हैं, छात्रों के हर मुद्दों के साथ सरकार साथ में है, लगातार कार्रवाई हो रही है, एग्जामिनेशन डिप्टी कंट्रोलर गिरफ्तार हो गई, वहां 10 साल से ज्यादा जो जमे थे जेपीएससी में सारे लोग को बदल दिया गया, खियांते जी जो चेयरमैन थे इस्तीफा दे चुके हैं, और 14 लोग गिरफ्तार, 5 जिलों में छापामारी चल रही है।
3: रंजीत बताइए, 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आज भी गिरफ्तारियां की है सीआईडी ने,
6: दूसरा जेपीएससी का रिजल्ट सीबीआई क्या थी,
3: तो क्या परेशानी है? लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, भरोसा रखिए सरकार पर। रंजीत
7: यस मैडम, भरोसा तो है लेकिन लंबे समय तो से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन छात्रों का ऐसा कहना है ना मैम, इसमें सीआईडी का जो बॉडी है ना जो राज्य सरकार के अंदर अगर आती है तो हम लोग पर छात्रों का कुछ उम्मीद कम है। ठीक है मैम, तो हम लोग को यही चाहते हैं कि हम लोग का डिमांड यही रहेगा कि एक बार सिर्फ सीबीआई से जाँच करवा दीजिए।
3: ऋषिकेश जी,
7: जी मैम,
6: पद्मजा जी मैंने तो कहा कि सीबीआई का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि पहला जेपीएससी दूसरा जेपीएससी का 15 साल हो गया, लेकिन उस आज तक ने उसका कोई सोल्व नहीं कर पाया सीबीआई, आज तक वो केस पेंडिंग है, तो सीबीआई की जगह सीआईडी जांच कर रही है। छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं तो खुद छात्र राजनीति से आया हूं, एक भी दोषी नहीं बचेंगे, व्यापक पैमाने पर जांच होगी, पूरा झाड़ दिया जाएगा, जितने आरोपी हैं गिरफ्तार करके कानून के तहत कार्रवाई होगी, और 2023 में झारखंड सरकार पद्मजा जी परीक्षा के जो भी अनियमितता करने वाले लोगों के लिए एक बिल लाई थी,
3: ये बच्चा कुछ बोल रहा है,
6: 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना है।
4: कि सर ने आपने कहा कि जांच हुई थी 2003 में, हो रही थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा कि सर अगर कोई अपराध मतलब किया हुआ है पहले, ठीक है, तो उसपे कार्रवाई हुई नहीं हुई क्या हुई पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि अभी अगर कोई अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6: कोई भी केस वो सोल्व नहीं कर पाया, परीक्षा नियमितता को लेके पेपर लीक को लेकर के कोई भी केस सीबीआई सोल्व नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि नीट यूजी का 2024
4: का सीबीआई को बंद कर देना चाहिए,
6: मुखिया को सबूत के अभाव में बेल होने दिया, अभी अभी 2024 नीट जो लीक हुआ था, तो सीबीआई का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। आप अपने राज्य के अधिकारी, अपने राज्य की एजेंसी, अपने राज्य के सरकार पर विश्वास करिए साथियों, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और आज कांग्रेस का डेलीगेशन, पद्मजा जी कांग्रेस के प्रभारी के राज,
3: सुन लीजिए ऋषिकेश जी, बच्चे बोल रहे हैं, उम्मे बोल रही है, उम्मे बोलिए,
0: सुन लीजिए, आप दिल में हाथ रख के बोल दीजिएगा कि जेएसएससी सीजीएल में जो कुछ हुआ है आपको भी पता है सर, अब बोलिए कितना न्याय हुआ हम लोग से जेएसएससी सीजीएल में, आप इस पर जवाब दीजिए सर, हम चाहते हैं आप इस पर बात कीजिए।
2: 2024 में जो सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी सीआईडी जांच कर रही थी सर, लेकिन कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकला, इसलिए हम सीआईडी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस टाइम फिर ज्वाइनिंग तो हो गया ना सीजीएल वालों का।
6: मैं तो चाहता हूं कि मुझे सीबीआई के क्रेडिबिलिटी का एक केस बता दीजिए।
1: भरोसा सरकार से भरोसा के लिए तो हम लोग एक बात बताइए, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है भरोसा की बात करते क्यों लाया गया है, सर किस लिए भरोसा होगा? जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको क्यों लाया गया है, कैसे हम लोग भरोसा कर ले? जो की टीडीएल कंपनी ने कम से कम जितना भी एग्जाम लिया सब में धांधली हुआ है, सभी में धांधली हुआ, तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले सर की सीआईडी? सीआईडी तो राज्य के अंदर भी आता है, तो और टीडीएल कंपनी के लाने वाले तो हमारे राज्य माननीय मुख्यमंत्री ही है, तो कैसे हम लोग भरोसा कर ले बताइए?
3: सुनिए सुनिए ऋषिकेश जी, सुनिए इनकी बात, सुनिए बोलिए चंडी,
0: एक मिनट सुन लीजिए सर। एक टीडीपीएल कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है और अभय तिवारी जो सेकंड टॉपर है जेएसएससी सीजीएल का, आप सर समझते हैं कि एक इतना बड़ा संस्था और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम को करा रहा है? सर आपको मालूम नहीं सर, इस पर आप जवाब दीजिए सर।
6: पद्मजा जी, जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार का उसमें क्या इंटरफेरेंस है मैं साथियों से पूछना चाहता हूं। उसमें सरकार
0: के ही अंडर में आते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार के अंतर्गत आता है।
6: कितने अधिकारी चाहिए? जेपीएससी सारा निर्णय स्वयं लेता है, वो एग्जाम खुद कराता है, कंपनी डिसाइड खुद करता है, जेपीएससी में सरकार का क्या रोल है साथियों? आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे
0: सर, आप उन अधिकारियों को क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं जो इस कंपनी को हायर किया? आप समझिए सर, आप क्यों नहीं इसको जेल भेज रहे हैं जो इस कंपनी को हायर किया है? आप ये दिख ही नहीं रहा है, सीआईडी जांच कर ही नहीं रहा है। अगर सीआईडी जांच करता तो उन अधिकारी जेल में होता सर।
6: कंपनी का मैनेजर कहाँ है?
0: सिर्फ अभय तिवारी नहीं है, अभय तिवारी से बड़ा सर
6: ज्यादा लोग तो गिरफ्तार है अभी।
1: कॉलेज छोटी मछली पकड़े गए सर, बड़ी मछली
0: अभय तिवारी पकड़े गए हैं, और मछली पकड़ना बड़े बड़े अधिकारी
1: सर अभी,
6: मगर मछ को भी नहीं छोड़ा जाएगा।
3: देखिए मृत्युंजय जी,
8: सरकार को बस इतना बोल रहे हैं,
3: ऋषिकेश जी, ऋषिकेश जी बात बहुत सीधी सी, देखिए आप चाहे जितनी टेक्निकलिटी बता दें, यहाँ पर छह छात्र आपके सामने हैं, छह छात्र बता रहे हैं कि कैसे उनको एक रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस के लिए उनकी एक छोटी सी मांग है। देखिए यहाँ पे तो वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि फलां का इस्तीफा हो, धमाके का इस्तीफा हो, ये बच्चे सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम संविधान के मुताबिक शांति पूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट रखेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, और सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि इतने सालों से ये धांधली चल रही है, आप सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए सर, फिर आपको जिसको जेल में भेजना है, आप बीजेपी सरकार के लोगों को जेल में भेजिए, आप कांग्रेस सरकार के लोगों को जेल में भेजिए, आप जेएमएम सरकार के लोगों को जेल में भेजिए, पर कम से कम इनकी एक छोटी सी मांग को सुन तो लीजिए। मृत्युंजय शर्मा, मृत्युंजय शर्मा आप यहां पर आए हैं, आप कह रहे हैं कि भाई आप खड़े हैं झारखंड के बच्चों के साथ, कांग्रेस कह रही है कि आप अपने राज्यों में तो देखते नहीं है क्या हो रहा है, जंतर मंतर में जब वहां पर पैलेट गन चलती है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अब आप यहां पर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए आ गए।
9: पद्मजा जी, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई टू थिंग्स फर्स्ट हियर, कि ये जो छह बच्चे यहाँ पे हैं ये बार बार सीआईडी इन्वेस्टिगेशन का क्यों विरोध कर रहे हैं और सीबीआई की क्यों अनुशंसा कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। झारखंड का सबसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम पिछले कुछ सालों में हुआ होगा वो जेएसएससी द्वारा कंडक्टेड सीजीएल है। 2023 में उसका नोटिफिकेशन आता है, तीन बार उसका जो फर्स्ट एग्जाम है रीशेड्यूल होता है, अक्टूबर 23, दिसंबर 23 और जनवरी 24 में कंडक्ट होता है। जनवरी 24 में एग्जाम लीक हो जाता है, एग्जाम लीक होता है उसको कैंसिल किया जाता है, उसके बाद फिर से वो एग्जाम रीशेड्यूल किया जाता है, 9 महीने लग जाते हैं उस एग्जाम को रीशेड्यूल कराने, और सितंबर 24 में एग्जाम होता है। सितंबर 24 में जब वो एग्जाम होता है फिर से वो पेपर लीक होता है, छात्र अपने मोबाइल फोन पे वो लीक पेपर्स दिखाते हैं, वो सबूत देते हैं, और सरकार कहती है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स थे जो एलिज करते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ केस फाइल कर देती है, सरकार इनफैक्ट सीआईडी को केस देती है, सीआईडी को मोबाइल फोन सौंपे जाते हैं तो सीआईडी कहती है कि मोबाइल फोन स्टैंपर्ड है, वो हैदराबाद लैब में भेजे जाते हैं मोबाइल फोन, लैब इन हैदराबाद से दे हैव नॉट बीन टैंपर्ड विद। सीआईडी गिरफ्तार करती है लोगों को नेपाल से, जिनको प्रश्न पत्र रखवाने के लिए नेपाल ले गया, सीआईडी गिरफ्तार करती है लोगों को बिहार से, झारखंड के हर स्टेट से, और फिर भी कहती रहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ, छात्र रटते रहते हैं, एविडेंसेस देते रहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, और फाइनली सरकार उनकी ना सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है जस्ट टू प्रूव कि वो पेपर लीक नहीं हुआ है, और फिर सीजीएल का रिजल्ट आ जाता है। दिस इज 2024। आज जब ये पूरा मामला चल रहा है और अभय तिवारी हुए इमर्ज द किंग पिन ऑफ द इंटायर जेपीएससी स्कैम, क्या आपको पता है वही अभय तिवारी उसी सीजीएल एग्जाम में सेकंड रैंक लेके आया? सोचिए, डू यू स्टिल वांट अस टू बिलीव दैट वाज अ फेयर एग्जाम?
3: एंड यू स्टिल वांट अस
9: टू बिलीव कि वही सीआईडी जिसने उसको क्लीन चिट दी उस सीजीएल एग्जाम को, वो जेपीएससी एग्जाम को का जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सही से कर ली? आई गिव यू अ सेकंड एग्जांपल व्हाई दीस पीपल डोंट ट्रस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। एक सेकंड एजेंसी एसीबी, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, लेकिन आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड हियर, झारखंड में बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई, एसीबी इज द स्टेट एजेंसी, जिस दिन उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, सोचिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया, उसी दिन शाम को उनको गिरफ्तार भी कर लिया, गिरफ्तार किया, पूछताछ की और 3 महीने तक चार्जशीट दाखिल नहीं की, एंड ही वॉज देन ऑटोमेटिकली रिलीज ऑन बेल। और उस शराब घोटाले में मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा नाम आता है।
3: ओके मिस्टर शर्मा, गवर्नमेंट एजेंसी टू द स्टूडेंट्स इशू प्लीज, दिस इज नॉट अबाउट योर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, लेट्स स्टिक टू द स्टूडेंट्स इशू एंड एज फार एज द सीआईडी इंक्वायरी इज कंसर्न, आंसर ऋषिकेश सिंह, द सिंपल एग्जांपल बीइंग गिवन ऑफ व्हाई देयर इज जीरो कॉन्फिडेंस दैट दिस विल यील्ड एनीथिंग।
6: पद्मजा जी, मैं तो पहले बीजेपी के प्रवक्ता का एक गलती को सुधारना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 2022-23 में जेएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, जबकि सच्चाई है कि 15-16 में उसका पहली बार नोटिफिकेशन आया था, भाजपा सरकार में, डबल इंजन की सरकार थी, 4 साल सरकार इनकी थी, एग्जाम नहीं करा पाए। जब जेएससी सीजीएल का हम लोग एग्जाम कराए, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ, उसमें भी जो आरोपी थे उन पर केस चला, ट्रायल चला। और दूसरी चीज ये जो बोल रहे हैं कि सीबीआई का जांच हो, तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि जेपीएससी 1 और 2 का सीबीआई जांच आज भी चल रहा है, 15 साल से ज्यादा हो गया, रिजल्ट क्या निकला, कौन से लोग जेल गए, कौन से लोग बर्खास्त किए गए, इसका जवाब वो देते हैं सिर्फ कि सीबीआई का क्रेडिबिलिटी क्या है झारखंड का जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 के एग्जाम में।
3: मृत्युंजय शर्मा,
6: चल रहा है कि नहीं चल रहा है आज
9: 2020 पद्मजा जी? पद्मजा जी, आई थिंक यू हैव क्लैरिफाइड दिस इनफ, वी आर सेइंग एनीबॉडी हु इज कल्पेबल, आप सीबीआई की जांच कराई ना, उन लोगों को भी कराई, मान लीजिए हम लोग नहीं करा पाए, आप जांच कराए उन सारे लोगों को, 26 साल से लेकर आज तक जिसने भी जो भी इन्वॉल्व है आप सभी को जेल भेजिए। एंड दूसरा, आप बोलते हैं कि जेपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार का उसमें क्या लेना देना, सरकार का सबसे ज्यादा लेना देना है, आप कहते हैं उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन 3 मेंबर्स का क्या जिसको सरकार ने अपॉइंट किया? पद्मजा जी, डू यू नो द मेंबर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ जेपीएससी? एक अजीता भट्टाचार्य, हु इज अजीता भट्टाचार्य, व्हाट इज हर क्वालिफिकेशन, सी इज द वाइफ ऑफ जेएमएम स्पोक्सपर्सन, दैट्स इट। दूसरा, जमाल अहमद 2008 में प्राइमरी टीचर थे और उसे डायरेक्टली लेक्चरर बन जाते हैं, आज तक उनकी जो लेक्चरर बनने की कहानी है वो सीबीआई के जांच के घेरे में, यू मेक हिम द मेंबर ऑफ जेपीएससी। इन तीनों का इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने अब तक, इन तीनों को क्यों नहीं जेल भेजा आपने अब तक, एंड देन यू से जेपीएससी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी? पद्मजा जी, दिस इज नॉट वन एग्जाम, सबसे पहले दिस इज नॉट वन एग्जाम, दिस इज नॉट वन लीक, दिस इज एन एंटायर पैटर्न, एग्जाम आफ्टर एग्जाम। एंड लेट मी थ्रो जस्ट वन चैलेंज टू माई एजुकेटेड फ्रेंड ऑफ कांग्रेस, 600 से आपकी सरकार है ना, 6 वर्षों में आप उस एक एग्जाम का नाम मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक, जिसका नोटिफिकेशन जब आया ड्यू डेट पे एग्जाम हो गया, बिना रिशेड्यूल हुए, बिना कोई उसमें रेगुलरिटी हुए, बिना पेपर लीक हुए, ड्यू डेट पे रिजल्ट आ गया और लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एक एग्जाम अगर ये 6 सालों में मुझे बता देंगे, आई विल कम टू हिज साइड।
3: विवेक, क्या आपको लगता है जब आप कहते हैं, जब कांग्रेस के या जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि सीबीआई की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसके ऊपर हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन कराने का, आपको लगता है कोई भी किसी भी तरीके का ब्रेक थ्रू होगा इसमें फिर? विवेक बोलिए,
9: उसको किसने सॉल्व किया?
3: विवेक
7: रिपीट कर सकते हैं मैम?
3: मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो साफ साफ कह रहे हैं कि सीबीआई पे हमें कोई भरोसा नहीं है, तो फिर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करवा के क्या फायदा है?
7: बिल्कुल ऐसा नहीं है मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है आपको, तो हम लोगों को, छात्रों को भरोसा है, और छात्र अगर डिमांड कर रहे हैं क्योंकि सरकार से डिमांड कर रहे हैं और आपने कोई गलती नहीं की है, तो छात्रों के खुशी के लिए आप तो सरकार है, उतना तो कर ही सकते हैं, आप कर दीजिए, क्या दिक्कत है?
3: और आप तो पूरे देश में निकाल रहे हैं ना ऋषिकेश जी, आप तो पूरे देश में छात्रों के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे यह अलग बात है कि रांची में आप नहीं निकाल रहे हैं, आप चंडीगढ़ में जा रहे हैं, आप दिल्ली में जा रहे हैं, आप मुंबई में जा रहे हैं, आप जाकर के रांची में एक बार यात्रा निकाल लीजिए और उनकी बात मान लीजिए। आप ही थे ना जो जंतर मंतर गए थे और कहा था कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए, और रेजिग्नेशन हुआ क्योंकि छात्रों ने कहा कि भाई रेजिग्नेशन होना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे एक छोटी सी मांग है कि आपके मुख्यमंत्री आए, बात करें और सीबीआई इन्वेस्टिगेट। आप तो इतना भी करने को तैयार नहीं है, आपका तो इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा।
6: पद्मजा जी,
7: बिल्कुल बिल्कुल,
6: कांग्रेस पार्टी जब से आंदोलन चल रही है छात्रों के साथ है। राहुल गांधी जी ने खुद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाकड़ जी को, यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया जो एमएलए है राजस्थान के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको, रांची के जिला अध्यक्ष कुमार राजा जी को ड्यूटी लगा रखी है कि आप छात्रों के साथ जाके खड़ा रहिए, उनके एक एक मांगों को ध्यान से देखिए और सरकार से बात करवाइए। और आज कांग्रेस का डेलीगेशन पद्मजा जी सारी मांगों को लेकर के, जो छात्र का मांग है सारी मांगों को लेकर के सीएम से मिले हैं। इसके बाद सीएम ने अनाउंस किया है कि अभी 4 मंत्रियों का एक समूह बनेगा जो छात्रों से बात करेगी। मैं बोलिएगा तो मंत्री का नाम भी बता सकता हूं, मेरे पास अभी व्हाट्सएप में आ गया है। वो चार मंत्री छात्रों के ग्रुप से बात करेगी, छात्र अपना बात रखेंगे और जो जो जिनविन डिमांड है छात्र का, एक एक छात्र का डिमांड को पूरा किया जाएगा।
3: कांग्रेस छात्रों को भरोसा दिया जाएगा। मैंने तो दो तीन दिन पहले ही बात की थी चंडी से, उस वक्त तो कोई नहीं खड़ा था, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था। क्या पहले दिन से आपसे बातचीत हो रही थी चंडी?
0: नहीं मैम, कोई इस तरह बातचीत नहीं। अभी सरकार ने कुछ पहल किया है तो देखते हैं क्या है सरकार की तरफ से पहल। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जब तक सारा एग्जाम रद्द ना

0: की अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा।
1: वो सारे एग्जाम जो पीटीपीएल कंपनी कंडक्ट करवाए गए हैं या फिर अभय तिवारी जिस एग्जाम से संलिप्त पाए गए हैं जिससे उनका कनेक्शन रहा है, तो वो सारे एग्जाम कैंसिल होने चाहिए। मैम
2: सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए और फेयर एग्जाम होने चाहिए। हम लोग क्या मांग है सर, हम लोग सीबीआई जांच ईडी लागू, बस हम लोग छात्रों के खुशी के लिए कर दीजिए और क्या चीज है।
3: सिंपल सिंपल सी डिमांड है और बार बार बस यही कहा जा रहा है। इरफान अंसारी साहब भी जो हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ कही है। एंड आई एम कमिंग टू यू चिराग सेठी एज वेल इन जस्ट अ सेकंड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। इरफान साहब, आप अपने आज सुबह आपने कहा कि क्या ये ज़बरदस्ती की बात है, ये आपका कहना था। अगर कोई वहाँ पर धरने पर बैठा है, अगर कोई कह रहा है कि सरकार हमारी बातें सुने, तो उसमें ज़बरदस्ती की बात क्या है?
4: नहीं देखिए मैडम, दो तीन बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। युवा धरना दे रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं, वो हमारे बच्चे हैं और हमारी सरकार सेंसिटिव सरकार है। आज ही कई डेवलपमेंट हुआ है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे प्रभारी के राजू सर ने आज एक आपात बैठक बुलाकर युवाओं से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कमेटी का गठन कराया गया है, जिसमें चार मंत्री भी हैं। तो जो बच्चे वहां पर हैं उनसे हमारी टीम वार्ता करेगी, उनकी जो भी मांगे हैं वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये धरना में मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग जा रहे हैं, वाई दे विल गो, हु अलाउ हिम। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं भाजपा जो है इनकी नीति और नियत में खोट है, युवाओं का आंदोलन को
3: जो धरना है वो तो बच्चों का धरना है ना, उसको आप भाजपा का धरना क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड,
4: आज मैम
3: ये तो युवाओं का धरना है। पहले दिन से हम जब बात कर रहे हैं
4: भाजपा
3: तो मंच तो युवा संभाले हुए हैं, उसमें भाजपा का क्या लेना देना?
4: मेरी बात सुन लीजिए, कई भाजपा के लीडर आज वहां गए और उसका रहे युवाओं।
3: एक सेकंड, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, चंडी कुछ बोल रहे हैं आपसे।
0: सर हम बोलते हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग अधिकारी भविष्य बनाने आए हैं। ये झारखंड में सिर्फ कोयला नहीं जलता है, ये झारखंड में स्टूडेंट के भविष्य को भी जलाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हम ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सर, हमारा एज जा रहा है, हमारा माता पिता परेशान है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं सर। माता
3: भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां धरना, भाजपा ओवरटेक कर रहा है? नहीं, पहले दिन से ही यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो सीबीआई की डिमांड उठ रही है, जो सरकार से बात करने की डिमांड उठ रही है, वो तो आम बच्चे उठा रहे हैं। अगर वहां पे लोग आ जा रहे हैं, भाई आप भी जंतर मंतर पर आ जा रहे थे ना, आपके नेता भी जा रहे थे, सपा के नेता भी जा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी जो डिमांड थी वो नाजायज हो जाती है। इरफान साहब, जब आप उसको बेवजह का नाटक बोलते हैं, तब तो फिर आप उसको एक राजनीतिक प्रिज्म से देख रहे हैं।
4: मैम आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये दिल्ली का धरना है नहीं, दिल्ली में नीट का जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ, ये लाखों लाख बच्चे प्रभावित हुए, भाजपा ने उन पर गोलियां चलाई, बच्चों को मारा, आपने देखा होगा वो दृश्य, मैं बता नहीं सकता। ठीक, अगर आप कंपेयर करें झारखंड की जेपीएससी की, तो मैम यहाँ पर 300 सीट है, मात्र 300 प्लस सीट है, इसको लेकर छात्र धरना पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ। टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ियां पाई गई, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने हमारे, आज जेपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया गया है, कई लोग हिरासत में, जांच चल रही है और निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। आज बैठक में हमने अपनी बात को रखा, सीएम साहब भी थे, हमारे प्रभारी के राजू सर भी थे, हमने कहा कि हमारे बच्चे हैं वो लोग, आज बरसात में देखिए वो लोग भींग रहे हैं, उनकी जो भी मांग है हम लोगों को जानना चाहिए, सुनना
2: भी
4: चाहिए।
2: हम लोग बरसात में भींग रहे हैं सर, अभी भी खड़े हैं, हम ये कहना चाहते हैं सर, छाता लेके ये देखिए हम लोग छाता पे हैं,
0: आप क्यों नहीं आ रहे सर,
2: आप एक बार आपको तो बात करते हैं स्टूडेंट से,
0: रांची में कितना दूर है सर, आप जाते हैं आ जाइए हमारे पास,
2: सर हम लोग को तकलीफ है तो सुनने की कोशिश कीजिए,
4: मैम एक बार बेटा बेटा मेरी बात
2: सुनिए, हम लोग को तकलीफ है सुनिए,
0: हम लोग का समस्या सुनिए सर प्लीज सर,
4: हम लोग आपके साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, हमारी बेटियां हैं हम उनके साथ हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, के राजू सर आपके साथ हैं, आपके एक एक बात मानेंगे, एक एक बात सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, किसी के बहकाव में मत आइए आप लोग। कल रात में कुछ बच्चों का तबीयत खराब हुआ था एज ए हेल्थ मिनिस्टर
2: सर, हम लोग अपने हक के लिए खड़े हैं, हम लोग किसी के बहकावे नहीं है।
0: आप अपना दिल में हाथ रखिए।

0: सरकार के पक्ष में, तो एक बात सुन लीजिए मेरे बात, हमारे सरकार राहुल जी के मार्गदर्शन पर और चलने वाली सरकार है। हम लोग यहाँ कोई भी इलीगल काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा खुद मैं हूँ, राहुल जी ने हमें स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी हमारे युवा हैं, तो आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ आप लोग बच्चे को कि आप लोग की जो बात है,
1: ये पीड़ा तो 12 दिन से आपने सुनी भी नहीं है इरफान साहब, 12 दिन से तो आप इस पीड़ा को सुन भी नहीं रहे थे। कब आए आपके नेता? आज आपने दो अधिकारियों को भेजा है इरफान अंसारी साहब, आज 12 दिन के बाद जाकर के, जब 2 दिन से भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो आज जाके आपने 2 अधिकारियों को भेजा है। आप पूरे देश में बच्चों की पीड़ा की बात कर रहे हैं, आप पिछले 2 हफ्ते से मार्च निकाल रहे हैं, यहां तो आपको मार्च भी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो आपसे महज 1 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं, वो स्टेडियम आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
0: नहीं मैम देखिए, वो हमारे बच्चे हैं, आपने सही प्रश्न कहा है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो, आपका प्रश्न बिल्कुल मैडम,
1: देखिए जेंजी की बात हो रही है तो इन सब लोगों को देखिए, क्या ये जेंजी नहीं है? बिल्कुल, जो जंतर मंतर पे बैठे थे वो हमारे देश के जेंजी थे, बट जो रांची में बैठते हैं ना, जो शायद इंस्टाग्राम पे नहीं होते, जिनकी रील वायरल नहीं होती, जिनको 1 मिलियन व्यू नहीं मिलते, वो भी हमारे देश के जेंजी है इरफान साहब, वो भी नौकरी चाहते हैं, वो भी हमारे देश के ही नागरिक है, वो भी हमारे देश का ही भविष्य है, भले से ही उनको 1 मिलियन व्यूज नहीं मिल रहे होंगे।
0: मैम झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट, आप देखिएगा यहाँ रोजगार की चिंता नहीं है, सभी विभाग में बम्पर हम लोग बहाली कर रहे हैं, रोजगार हम लोग दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आ रही है।
2: मामला आया सर, आप क्यों नहीं निकाल रहे?
0: कोई मामला नहीं है,
2: 3.5 लाख वैकेंसी खाली है, कितना स्टूडेंट को अभी दर्द हो रहा है,
3: टीचर का एग्जाम होता है।
0: आपको जो प्रश्न
1: एक ही करके, नहीं नहीं नहीं, ये आज सुनिए इरफान साहब, बताइए उमे बताइए
0: झारखंड,
1: उमे हामी बताइए, उमे आपको कुछ कह रही है इरफान अंसारी साहब, बोलिए उमे।
3: जी मैम, जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, हमारे यहाँ इस प्रोटेस्ट में एक ऐसी भी स्टूडेंट है जिसका 300 में 299 मार्क्स था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो 299 लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन किसका हो रहा है? कौन है जो इतना पढ़ रहा है?
1: बिल्कुल सही। सो लेट मी टेल आवर व्यूअर्स हु मे नॉट बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, बिकॉज द डिटेल्स एस्केप यू, और लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड है कि अभी जो रिजल्ट्स आए, ये ही नहीं बताया गया कि कट ऑफ क्या है। भाई जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, किस मार्क्स के आधार पर उनको आपने सिलेक्ट किया? कैसे है कि एक लड़की 300 में से 299.14 है ना, 299.175 आउट ऑफ 300 एक लड़की को मिलता है और वो रिजेक्ट हो जाती है। इरफान अंसारी साहब, आप धड़ल्ले से जो बहाली कर रहे हैं, किसकी बहाली कर रहे हैं? 299.175 अपना हार्ड गला करके उसके माता पिता ने उसको रांची में भेजा है। वो लड़की यहाँ पर 5 साल रही होगी, प्रेपरेशन कर रही होगी, एग्जाम पे एग्जाम दे रही होगी, और 299.175 आउट ऑफ 300 आज उसके मुंह पे तमाचा है कि उसको तो बहाली नहीं मिली।
0: मैम देखिए, एक मिनट मैम, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं, मैं उनके बच्चे की बात मैंने सुना, ये जांच करने का काम मेरा नहीं है, सरकार का नहीं है, ना कि नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ना कि हेमंत सोरेन जी का नहीं है। अगर त्रुटियां कहीं पाई गई है तो हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है,
1: ना फिर सर,
0: चल रहा है,
1: आपका काम नहीं है,
0: हो रहा है।
1: सीआईडी पे किसी को भरोसा नहीं है, इसीलिए तो बच्चे कह रहे हैं सीबीआई की जांच कीजिए।
4: तो दिक्कत है सर कि बहुत देर से हो रही है,
0: आप सुन लीजिए मेरी बात, झारखंड पहला राज्य है जहाँ हमारी सरकार है, हमारी एजेंसी है, हमारी अपनी संस्था है, और हमने कार्रवाई किया। आप बताइए कि भाजपा उत्तर प्रदेश में भी आए दिन पेपर लीक हो रहा है, पेपर हेडमास्टर है पेपर लीक का उत्तर प्रदेश, कभी भी वहाँ की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आप मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले पेपर लीक हुआ, वहाँ की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया।
3: सर हम अपना स्टेट के देखिए ना सर, अपना स्टेट के देखिए, मैं बगल के स्टेट में क्यों देखूं, अपना स्टेट के बात कीजिए ना सर।
0: हाँ तो मैं तो
1: एक सेकंड सबकी बात सुनी जाएगी। विवेक बताइए, यहाँ पर इरफान अंसारी मंत्री है, कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, मोदी जी का काम नहीं है, हेमंत सोरेन जी का काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, सीआईडी का काम है
4: सर, तो
1: और सीआईडी कर रही है।
4: मंत्री जी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर आप

0: का काम ही नहीं है, तो आपके अंडर में जो भी चीज ही गलत होगी, भ्रष्टाचार होगा, अन्याय होगा, तो सर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, उस पर कार्रवाई कौन करेगा सर? अगर आपका काम ही नहीं है तो किस पे भरोसा करें सर?
1: तो हम लोग तो कार्रवाई कर दिए,
0: भरोसा करें आप?
1: जांच चल रहा है, अरेस्टिंग हुआ है
2: सर, अभी
1: इस बात को
3: जांच का बात विषय नहीं है सर, हम लोग का भरोसा नहीं है सर इस पर जांच।
1: अच्छा मेरी बात आप लोग सुनिए, आप लोग से हम लोग हमारी हमारी सरकार ने कमेटी बनाई है, हम लोग आपकी जो भी मांग है आप हम लोग को बताइए, आप लोग को जो भी मांग है आप बताइए, हम दावा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आपकी जो भी मांग है हम पूरा कराएंगे आपका।
4: एक सेकेंड रंजीत और राज आप दोनों बताइए, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि कमेटी बनी हुई है, कमेटी के सामने ज्ञापन दीजिए।
5: सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सर कि जो भी चीजें हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के तहत लीजिए सर, आप सिर्फ आश्वासन दे देते हैं सर। अभी मैं पूछना चाहता हूं सर, दरोगा का बहाली, आप तो बोले बंपर बहाली आ रही है सर, दरोगा का बहाली 2017 के बाद एक बार भी नहीं आया। मेरे पिताजी का ड्रीम था सर कि मेरे शोल्डर पे दो स्टार लगे, लेकिन मेरे पिताजी तो चले गए सर, लेकिन हमारा आज भी सपना अधूरा रह गया सर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, जवाबदेही कहाँ है सर?
1: बेटा एक मिनट बेटा, बिल्कुल आपकी मांग बिल्कुल जायज है, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार हमारी सरकार नहीं है। जब झारखंड बना, एक मिनट सुन लीजिए मैडम, जब झारखंड बना तो गलत हाथ में सरकार चलेगी, भाजपा के हाथ में चली गई, वहीं से जेपीएससी का घोटाला स्टार्ट हो गया मैम। अब जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में आज भी आए हैं धरना पर, उनके बहुत
0: सर, इसीलिए तो सर आपकी सरकार बनाई हमने,
1: एसटी बन गया, एक
0: घोटाला हुआ, इसीलिए हमने
1: लगातार मुख्यमंत्री जी जेपीएससी एग्जाम निकाल रहे हैं, कंटिन्यू निकाल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपको रोजगार।
4: अगर पिछले कुछ दिनों में, इफ इन द लास्ट थ्री डेज देयर इज एनीथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट एवरीवन वांट्स टू ओनली किक द कैन डाउन द रोड, आई वॉन्ट इट डजेंट इवन मैटर बिकॉज अल्टीमेटली द डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम द टॉप। एक एक करके मैं आप सबसे कहूंगी कि आप सीधे राहुल जी से, प्रधानमंत्री से, अरविंद केजरीवाल से क्या कहेंगे? विवेक आप शुरू में बताइए, क्या कहेंगे आप राहुल जी से?
1: मैम राहुल जी कहां से आ गए यहां पे, तो हम
4: अरे क्योंकि सब बड़े नेताओं से ही बात हो रही है ना भाई, अगर इस्तीफा लिया जाता है तो कोई धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ी ना कोई बात कर रहा था,
1: सरकार है।
4: बात तो प्रधानमंत्री से ही हो रही थी।
1: देखिए
4: भाई राहुल जी ही छात्रों की गूंज लेकर के पूरे देश में जा रहे हैं ना, छात्रों का मुद्दा उन्होंने उठाया है और उनको यहाँ छात्रों का भी मुद्दा उठाना चाहिए, क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल को भी उठाना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी उठाना चाहिए।
1: यहाँ हम लोग हैं मैम, एक लोग यहाँ, राहुल गांधी जी हैं, हम युवाओं के साथ हैं, क्या बात कर रहे हैं यार?
4: ठीक है आप युवाओं के साथ हैं,
1: देखिए सारे
4: इस युवा को मैं आखिरी 30 सेकंड देती हूँ। चंडी आप बताइए, आखिर में छात्रों की गूंज, अगर आपकी गूंज सुनाई देनी चाहिए, आप राहुल जी को क्या बोलेंगे? बोलिए चंडी।
6: मैम मैं यही बोलना चाहूंगा सर, आप आइए सर, देखिए हम लोग किस परिस्थिति में है, हमारे हक अधिकार के लिए सर लड़िए सर, आपसे विनती करते हैं सर आइए, हम भी इस झारखंड के मतलब दबे कुचले स्टूडेंट हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप आइए हम लोग को देखिए हमारा समस्या कि हम लोग भींग रहे हैं सर, और ये यही बोलना चाहूंगा कि
4: बस जाइए सांझी, बस इतना ही, बहुत बहुत छोटी सी मांग है, बहुत छोटी सी उम्मीद और आशा है इन बच्चों की, ये तो ये भी नहीं कह रहे कि हम सरकार गिराएंगे या इस्तीफा मांगेंगे, बस इतना सा कह रहे हैं वो 1 किलोमीटर का फासला तय कीजिए, स्टेडियम में जाइए, देखिए ये बच्चे कीचड़ में बैठे हैं, इनकी बात सुनिए, इनकी बात मानिए। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम बट आई प्रॉमिस वी राइट हियर विल कंटिन्यू टू गिव द प्लेटफॉर्म टू दोज हु रियली मैटर। ये मंच उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिनकी आवाज सबसे ज्यादा इस देश को सुननी चाहिए, जो कि है झारखंड के, रांची के और देश के बच्चे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।

0: हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है।
1: नहीं,
0: पूरा जो नाटक मंचित किया था आप लोगों ने,
1: अरे कहा देखिए कितना मतलब कमाल का नैरेटिव बन रहा है, मतलब चंदा चोरी हो गया उसके ऊपर बात नहीं होगी, मंचन के ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहले तो आप ये बताइए, आस्था के नाम पर जो लूट हुई है उसके ऊपर आपका क्या जवाब है?
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप घेर रहे थे तो उसमें किसी भगवाधारी को लाने की क्या जरूरत थी? क्या टिन्नू यादव भगवाधारी है? क्या अनिल मिश्रा भगवाधारी है? क्या जो बाकी के लोग पकड़े गए हैं उनमें से कितने भगवाधारी है बताइए?
1: नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जितने पकड़े गए ये तो छोटी मछली है, ये इतना पैसा नहीं खा सकते हैं। और ये चंदा चोरी विषय मेरा नहीं है क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन इतना जो सुपरफिशियली दिखाई देता है कि अगर ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं तो 20 करोड़ लोगों के दर्शन में भगवान के दरबार में कोई खाली हाथ तो जाता नहीं, 100 रुपये भी कोई ले गया होगा तो देख लीजिए कितना पैसा बैठेगा। तो ये जो इन्होंने करा है आस्था के नाम पर खिलवाड़, उससे आप ध्यान नहीं हटा सकते लोगों का, मतलब आपने शोर मचा दिया कि साधुओं का अपमान कर दिया, भाई रामलीला का भी तो मंचन होता है, ये मंचन अगर उन्होंने कर करके कर दिया, हालांकि मैं उसको मानता हूँ कि नॉन सीरियस बात थी, लेकिन एक मंचन तक ही रखिए ना।
0: नहीं नहीं, नॉन सीरियस नहीं, अपमानजनक बात थी कि आपने वहाँ पप्पू यादव जी, वो इंडिपेंडेंट भले से ही है बट बैठते तो वो कांग्रेस के मंच पे ही है, एक सांसद वहां बैठ रहा है भगवा पहन करके,
1: मतलब कमाल है, पप्पू यादव
0: को बदनाम करने की
1: नहीं नहीं, पप्पू यादव पे चर्चा हो रही है, चोरी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है आप बताइए? अरे
0: देखिए विषय चोरी तरीके से दर्शाने की कोशिश की, नहीं, नहीं, क्या आपको लगता है कि भगवाधारी, क्या आपको लगता है कि भगवाधारी चंदा चोरी कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ चोरी कौन कर रहा है? चोरी अब जिन लोगों ने नाम लिए, उस एक व्यक्ति का तो जो वहाँ ट्रेजरर था शायद उसका चल रहा था, उसने ईमेल किया SIT को कि इसके अंदर चंपत राय बंसल शामिल हैं और चंपत राय बंसल को सरकार क्लीन चिट दे रही है। तो ये सब चीज़ें सवाल बहुत बड़े पैदा करती हैं, चूँकि ये छोटे छोटे बच्चों खिलाड़ियों का खेल नहीं है, इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं।
0: सिंपली आपसे ये पूछूंगी इमरान जी, अब आपको लगता है इन हाइंडसाइट कि भगवा को इसमें घसीटना एक गलती थी? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पे सपा के भी सांसद मौजूद थे और खुद रामगोपाल यादव ने अब कहा है, रामगोपाल यादव
1: उसमें
0: कि ये गलत था,
1: इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, चोरी हुई है चोरी के ऊपर बात करिए, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो चोरी के ऊपर तो बात ही नहीं, चोरी पर बात करिए ना,
0: क्योंकि बात चोरी पे तो हुई ही नहीं है ना। आपने जो नुक्कड़ नाटक किस्म का किया था पार्लियामेंट के बाहर, उसमें एक बाबा का भेष धारण करके पप्पू यादव आदेश जी का पैर छू रहे हैं, एक आदमी जो भगवा पहन के किसी सांसद का किसी नेता का पैर छू रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं वो जो पूरा दान पात्र है उसको लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है, उसको चोरी कर रहा है, राहुल जी वहां पर मौजूद थे वो आकर के उसमें चंदा डालते हैं, ये दिखाने का क्या मतलब था?
1: चंदा तो रोज ही डल रहा है, चंदा तो वहाँ रोज ही डल रहा है,
0: चोरी कौन कर रहा है?
1: नहीं चोरी कौन के, चोरी इन्होंने की है जिन्होंने, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, ठीक है साहब, आप कह आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई, आपने उस पर ध्वज ध्वज लहराया और वहाँ चोरी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ट्रस्ट का ट्रस्ट को ट्रस्ट क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल करते
0: हैं? ट्रस्ट तो है पर ट्रस्ट के लोग भगवाधारी नहीं है,
1: नहीं, ट्रस्ट
0: फिर मेरा सवाल बस इतना है। अच्छा, देखिए आप पूरा
1: मैं अभी की बात आ फिर मैं अभी की बात
0: नेता को घेरिए प्रधानमंत्री को घेरिए आप भगवा क्यों ले आए बीच में?
1: फिर मैं आपकी फिर मंदिर के अंदर भगवाधारी क्यों नहीं है? फिर ये भी दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, ये वहां तो भगवाईदारी होनी चाहिए,
0: मंदिर के अंदर है पर चोरी में शामिल नहीं है ना वो,
1: फिर आप ट्रस्ट में नहीं है ना आप कह रही, तो ट्रस्ट ही सब कुछ जिम्मेदार है और उसके अंदर भगवाधारी नहीं है, वो काम तो उन भगवाधारियों का है वहाँ।
0: अच्छा, अगर ये विशेष सत्र बुलाया जाता है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, तो ये फिर से मुद्दा आप उठाएंगे वहाँ पर, विशेष सत्र की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पार्टी की?
1: देखिए अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो चंदा चोरी और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा छात्रों के ऊपर जुल्म का है, जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, हमारा मुद्दा वो है कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन किसी सूरत भी नहीं चलनी चाहिए थी, हमारा मुद्दा है कि छात्रों के ऊपर जो सीधे गोली चलाई गई वो नहीं होना चाहिए था, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग सदन को डिस्टर्ब करें, होम मिनिस्टर साहब को जिम्मेदारी लेनी होगी, प्राइम मिनिस्टर को इंस्टाग्राम पर आकर बोलने का शौक है लेकिन पार्लियामेंट जाकर के पार्लियामेंट में अंदर आकर बोलते नहीं है,
0: क्योंकि अगर आपको छात्रों से ही आप कह रहे हैं छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए, आप रांची क्यों नहीं जा रहे? अभी तो छात्र वहां पे अभी भी बैठे हुए हैं, आज के दिन वहां पर छात्र बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मन साझा कीजिए।
1: हाँ बिल्कुल सही है, मैं अभी इसके बारे में जानकारी मैंने आज मुझे लगा कि इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से हम कल तक इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो
0: डाइवर्ट क्या है, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं ये बच्चे, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं।
1: सुन लीजिए ना, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज और बच्चों के ऊपर गोली चलाना है। हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज गोली चलाना, उनको
0: पर इमरान जी बच्चे तो बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे बच्चे हैं, रांची के बच्चे बच्चे नहीं है।
1: तो बच्चों पर वहाँ लाठी चल गई क्या?
0: लाठी नहीं चली, पर वहाँ भूखे बैठे
1: नहीं, लाठी चल गई क्या?
0: अरे उनकी नौकरियाँ चुराई जा रही है,
1: वहाँ लाठी चल गई क्या? देखिए मैंने
0: लाठी चलने पर ही आप उनके साथ जाएंगे?
1: नहीं,
0: उनकी नौकरी चुरा ली जाएगी, आप उनके साथ नहीं जाएंगे?
1: मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे कोई जवाब बहस नहीं कर सकता, क्योंकि हम पार्लियामेंट में पिछले 10 दिन से इतने लगे हुए हैं कि मुझे जानकारी नहीं पूरी प्रॉपर। मैं आज मुझे इसकी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं कई जगह से मुझसे सवाल हुआ, तो मैंने भाई मैं कल ही बात पर कहूँगा, आज इसकी पूरा का पूरा डिटेल लेता हूँ क्या है।
0: पर ये अजीब सी बात नहीं है कि आप हमेशा छात्रों के मुद्दे पर बात करते रहते हैं? आप कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ हम खड़े हुए हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पर जहां से गूंज सच में उठाई दे रही है, उठाई जा रही है रांची में, उनकी गूंज आपको सुनाई नहीं दे रही है? दिल्ली में तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, प्रयागराज में कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ।
1: मैंने आपसे कहा ना कि हम पिछले 10 दिन से लगातार लगे हुए, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आज इसकी जानकारी जरूर लूंगा, और निश्चित रूप से कल को आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा। हम चुप रहने वाले लोगों में नहीं है,
0: क्योंकि वहां के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसीलिए आप उनको एकदम एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं।
1: नहीं,
0: आप,
1: हम इग्नोर
0: आप सिर्फ जो ऑपोजिशन, जो बीजेपी वाले शासित राज्य होते हैं वहीं पे आपको गड़बड़
1: दिखाई देती है। नहीं नहीं, हम तो छात्रों के ऊपर गोली चलाने के ऊपर है। आप छात्र एक बात बताइए, बच्चे के यहाँ गोली लग रही है शोल्डर के अंदर, पिस्टल की गोली, AK-47 से आप गोलियां चला रहे हो बिहार के अंदर, यहाँ पैलेट गन मार रहे हो, और पार्लियामेंट में आप बयान देते हो कि हमने गोली नहीं चलाई। मतलब ये कितना गलत बयानी का काम हो रहा है। तो इसमें होम मिनिस्टर साहब नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा?
0: और झारखंड में जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए?
1: किसी झारखंड में लाठी चले डंडा चले तो जिम्मेदारी सरकार की होगी,
0: झारखंड में नौकरी चोरी की भी तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना?
1: नौकरी चोरी का मुझे जानकारी देखिए, जब तक मैं विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो, मैं आज जानकारी ले लूंगा, कल आपको अगर होगा उसके अंदर 100% आपको बोलता
0: हूं। लगता नहीं है कि 12 दिन से कम किसी को सरकार में बातचीत करनी चाहिए थी? यहाँ पर जंतर मंतर में बातचीत हुई, पैनल बना, वहां पर बच्चों के लिए जो टेंट था वो भी हटा दिया गया, वहां पर
1: मुझे तो ये पता ही नहीं, जितना आप बता रही है ना मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती मैं 100% बोलता। अब मैं चुप रहने वालों में लोगों में नहीं हूं कि मैं चुप रहूंगा, मैं 100% बोलता, लेकिन मैं आज ले लूं कल आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा, 100% आपको दिखाई।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर
10: मसाला। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
11: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: da Saddam oscura. Rang rang rang rang rang rang gine rang rang gine re de kaise bhi ho tin rang bana rahe
1: boje paints rang bana rahe
2: meetha ya namkeen chahe jaise khao 100% suji se bani are pure vermicelli swadisht sehatmand har roz.
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।
6: हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं।
7: मुश्किल है और मैं किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन।
6: झारखंड है, झारखंड है सर, क्योंकि झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है तो झारखंड बोलिए।
8: And Raji Sonam reached out.
9: सोनम सर, आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है। देश का केंद्र बिंदु बना या प्रोटेस्ट, आप लोग भी पहल करिए और सोनू मांगचन सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए। हम पूरा आप लोग का चैनल के टीम से हम आग्रह करते हैं।
8: जंतर मंतर टू झारखंड, द पाक स्टॉप्स हियर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा आतुर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
6: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।

0: रैना तू सतरंगा जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड, जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक, लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।
4: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं।

0: रैना तू सतरंगा,
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा।
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
6: Just few inches away is POK.
5: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: In Istanbul.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: When students needed to be heard.
7: मैम आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता. हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए. हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं.
8: मुश्किल है बिहार में किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन.
7: झारखंड है, झारखंड है सर, क्योंकि झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है तो झारखंड बोलिए.
6: When Rajiv Sonam Wangchuk reached out.
9: सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है. देश का केंद्रबिंदु बना यह प्रोटेस्ट. आप लोग भी पहल करिए और सोनू मांगचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए. हम पूरा आप लोग का चैनल की टीम से हम आग्रह करते हैं.
6: जंतर मंतर टू झारखंड, द बक स्टॉप्स हियर.
10: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
11: This is the show where we bring you

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: Leadership Conference in Mumbai on August 6th, with discussions centered on national and global issues. But even before the event begins, politics has flared up. The UBT Sena, the VBA, and civil society groups have slammed the RSS outreach, questioning its intent and accusing it of pushing ideology instead of genuine dialogue with students. BJP, meanwhile, has defended the initiative, saying that engagement with young people has always been a part of the RSS tradition. While the Shiv Sena has maintained that the Sangha has been reaching out to Gen Z and Gen Alpha for years.
1: वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है. आयमन में पहले हम सभी लोग जाके आए. मुझे नहीं लगता इतना कोई महत्व देना चाहिए. और जेंजी को सुनने के लिए आज सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब जेंजी लाठी खा रहा था, जब जेंजी AK-47 का सामना कर रहा था, जब जेंजी टियर गैस का सामना कर रहा था, जब जेंजी इलेक्ट्रिक गन्स का सामना कर रहा था, तब ये आज जो सब प्रवचन दे रहे हैं इनको, वो कहाँ थे? मैं सिर्फ मोहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कार्यक्रम में आ रहे, लेकिन आज आप देख रहे हो पोस्टर्स लगे हुए, आई एम जेंजी, आई रिस्पेक्ट दिस, आई एम जेंजी, आई रिस्पेक्ट दैट. जब जेंजी सवाल पूछ रहा था तो जवाब देने के लिए आप कहाँ थे? आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे. पार्लियामेंट में आओ, बात करो.
2: आरएसएस का वैसा भी कुछ संबंध नहीं है, लेकिन अभी भाजपा नीचे गिर रहा है. डायरेक्ट राजा और वजीर को, बुद्धिबल के पट के ऊपर डायरेक्ट राजा और वजीर को जब चेक होते हैं तो आउटसाइड बचाने के लिए आते हैं. हमने बुद्धिबल का पट देखा है ना, राजा को और वजीर को जब भी, तो कोई भी प्यादी भी बचा सकता है, और होता भी है. बुद्धिबल में राजा का चेक दिया हुआ कैंसल होता है, वजीर को चेकमेट कैंसल होता है, बुद्धिबल के पट में होता है, तो इधर तो होगा ही.
3: मोहन भागवत जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं. ये कोई नई पहल नहीं है. यदि आप संघ की शाखा में जाओ तो शिशु की भी शाखा होती है, युवाओं की भी शाखा होती है, और बड़े बुजुर्गों की भी शाखा होती है. इसलिए सब तबके के साथ आदरणीय सरसंघ चालक जी संवाद करते रहते हैं, और उसी संवाद की एक पहल है. ये कोई नई पहल नहीं है.
4: हर जो है लीडर का काम है, या कोई ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जैन जी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, संवाद रखें, कोई गलत बात तो नहीं है उसमें.
5: The Rashtriya Swayamsevak Sangh has been reaching out to the Gen Z and the Gen Alpha for the past 2-3 years. There are core issues of nation first, culture, discipline, making your contribution to civic duty as a ongoing process. Adarniya Mohanji Bhagwat, who is our Sarasangh Chalak, is coming to Mumbai and will be addressing the issues of the youth, answering their questions and directly engage with them. So for all those who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
6: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है. अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है.
5: The students of the country have reacted against this government. The students, the youth, they have stood like a rock against the injustice they had to meet from this government. And this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students. This government fired pellets on them. This government also used AK-47. So now the RSS chief meeting them, meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
0: And well, the Tamil Nadu budget has triggered a fresh political face-off inside the assembly. Leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the budget as a zero budget, saying that there's no

0: when students needed to be heard.
1: मैम, आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता. हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए, हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं.
2: मुश्किल है बिहार में किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन.
3: झारखंड है, झारखंड है सर, क्योंकि झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है तो झारखंड बोलिए.
0: When Rajiv Sonam Wangchuk reached out.
4: Sonam sir, आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है. देश का केंद्रबिंदु बना है यह प्रोटेस्ट. आप लोग भी पहल करिए और सोनम वांगचुक सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए. हम पूरा आप लोग का चैनल की टीम से हम आग्रह करते हैं.
0: जंतर मंतर टू झारखंड, द बक स्टॉप्स हियर.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
9: Now watching NDTV 24/7. The hope is.
10: Good evening, you're watching India Matters, the headlines at 9 p.m. Meta's top officials have been questioned by the government. They've issued an apology, has Meta, over Prime Minister Modi's video brief removal from Facebook. Mark Zuckerberg issues an apology for child abuse ads. In a big admission, Meta says that money has been paid to boost certain types of content. A day after the arrest drama, the Tamil Nadu leader of opposition, Udayanidhi Stalin's big attack on the Vijay government, he says that the DMK schemes have been repackaged and relaunched by the TMK.

0: जेंजी लाठी खा रहा था, जब जेंजी AK-47 का सामना कर रहा था, जब जेंजी टियर गैस का सामना कर रहा था, जब जेंजी इलेक्ट्रिक गन्स का सामना कर रहा था, तब ये आज जो सब प्रवचन दे रहे हैं इनको, वो कहाँ थे? मैं सिर्फ मोहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कार्यक्रम में आ रहे, लेकिन आज आप देख रहे हो पोस्टर्स लगे हुए, आई एम जेंजी आई रिस्पेक्ट दिस, आई एम जेंजी आई रिस्पेक्ट दैट। जब जेंजी सवाल पूछ रहा था तो जवाब देने के लिए आप कहाँ थे? आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में आओ बात करो।
1: आरएसएस का वैसा भी कुछ संबंध नहीं है, लेकिन अभी भाजपा नीचे गिर रहा है, डायरेक्ट राजा और वजीर को बुद्धिबल के पट के ऊपर डायरेक्ट राजा और वजीर को जब चेक होते हैं तो आउटसाइड बचाने के लिए आते हैं। हमने बुद्धिबल का पट देखा है ना, राजा को और वजीर को जब भी, तो कोई भी प्यादी भी बचा सकता है, और होता भी है बुद्धिबल में। राजा का चेक दिया हुआ कैंसल होता है, वजीर को चेकमेट कैंसल होता है, बुद्धिबल के पट में होता है, तो इधर तो होगा ही।
2: मोहन भगवान जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं, ये कोई नई पहल नहीं है। यदि आप संघ की शाखा में जाओ तो शिशु की भी शाखा होती है, युवाओं की भी शाखा होती है, और बड़े बुजुर्गों की भी शाखा होती है। इसलिए सब तबके के साथ आदरणीय सरसंघ चालक जी संवाद करते रहते हैं, और उसी संवाद की एक पहल है, ये कोई नई पहल नहीं है।
3: हर जो है लीडर का काम है, या कोई ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जैन जी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, संवाद रखें, कोई गलत बात तो नहीं है उसमें।
4: The Rashtriya Swayamsevak Sangh has been reaching out to the Gen Z and the Gen Alpha for the past 2-3 years. There are core issues of nation first, culture, discipline, making your contribution to civic duty as a ongoing process. Adarniya Mohanji Bhagwat, who is our Sarasangh Chalak, is coming to Mumbai and will be addressing the issues of the youth, answering their questions and directly engage with them. So for all those who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
5: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है, अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है। तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है।
4: The students of the country have reacted against this government. The students, the youth, they have stood like a rock against the injustice they had to meet from this government. And this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students. This government fired pellets on them. This government also used AK-47. So now the RSS chief meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
6: And well, the Tamil Nadu budget has triggered a fresh political face-off inside the assembly. Leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the budget as a zero budget, saying that there's nothing new, and accusing the government of merely renaming schemes introduced by the DMK. Earlier, TVK also launched a sharp attack on the DMK over corruption, claiming only a Vijay-led government can ensure clean governance and uphold social justice. The party also renewed its demand to scrap NEET, calling for MBBS admissions to be based on class 12th marks, and that is of course in the wake of the repeated paper leak controversies in India. Meanwhile, the government doubled down on its youth and education push, unveiling big ticket allocations for bicycles, school modernizations, campus cleanliness, laptops and AI training for 5 lakh students by 2031. Take a listen to what Udayanidhi Stalin said.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आप सर, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind me,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Welcome, thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on every story that India is talking about, the buck stops here. Is the demand for justice by students in Jharkhand a bewajah ka natak? Today it was pouring in Ranchi. It came down in buckets. There was no place to even stand. The ground was muddy, the air was humid and unbearable. And in the middle of it all, hundreds of students sang a full-throated national anthem. Thousands of them chanted Bharat Mata Ki Jai. They carried out an Azadi march with the tricolour in hand. They refused to be silenced as a bewajah ka natak. It's day 12 of the dharna by Jharkhand's Generation Z, by their Gen Z. It's day 2. When Gen Z in Jharkhand is sitting on hunger strike. And their demand is fairly simple. That the JPSC exam results be cancelled. A CBI probe must be started and the chief minister must speak to them. That's it. That's all they want. They just want to be heard. But where were those that these students, this Gen Z of Jharkhand, was reaching out to? One state minister was calling the allegation around the issue a bewajah ka natak. In Delhi, the Congress and JMM, who are in government in Jharkhand, carried out a protest march for students' rights. But that march sought justice only for the students who were at Jantar Mantar, not in Jharkhand. Those who were at Jantar Mantar on the 20th of July. The Youth Congress also agitated, but they were in Chandigarh, not in Ranchi. And as for the Cockroach Janta Party, they did another deep brainstorming. They put their heads together and decided that they will go to Jharkhand. But eventually, sometime in the unforeseeable future.
11: इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
12: उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार को मानना चाहिए तुरंत। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के अधीनस्थ एक जांच टीम बिठाई जाए।
10: सो विच जेन ज़ी मैटर्स, हु डिजर्व्स टू बी हर्ड, हु डिजर्व्स टू बी कॉल्ड बेवजह का नाटक। Today, the Jharkhand Chief Minister did open a door for negotiations with the protesters. A sub-divisional officer and an additional district magistrate reached the protest venue with the government's proposal and urged all the students there to gather at the main stage for discussions. But at what point will this your Gen Z versus my Gen Z selective memory finally end? Will students across the board be heard? Will their issues be addressed, or only those who are politically convenient finally be considered relevant?
13: जो सांसद जीतकर गए हैं वहाँ पार्लियामेंट में, और भी तो भाजपा के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है तो उत्तर प्रदेश के सांसद लोग क्यों नहीं धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट के पास? बिहार के सांसद लोग क्यों नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट के में धरना? बेवजह यहाँ नाटक किया जा रहा है, झारखंड की छवि को खराब की जा रही है, युवाओं को इस तरह से दिखाया जा रहा है गलत गलत वीडियो कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। कुछ नहीं, यहाँ धरना है, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के जो भी मांग है हम बात करेंगे और विकल्प के रास्ते हम लोग खुले रखे हैं।
9: स्टूडेंट्स डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी।
14: द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस, द पर्सन हु इज हैड द पेलेट गन फायर इन टू दिस यंग लेडी, द पर्सन हुज हैड द पेलेट गन फायर इन टू दैट यंग मैन आई ब्रॉट हियर, द पर्सन who has turned the police force against this young lady who is asking for his for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened.
15: Magar Jharkhand ke bachche bhi bachche hi hain, wo bhi andolan kar rahe hain. Jharkhand ke kuch bachchon se bhi Rahul Gandhi ka interaction hona chahiye. उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृहमंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे?
10: All right, joining us today on the show, we have Rishikesh Singh, who is a spokesperson of the Congress in Jharkhand. Mrityunjay Sharma represents the BJP today from the Aam Aadmi Party. We have Chirag Sethi. But I want to go across to the people who really matter today. Chandi Tiwari, Vivek Pandit, Pooja Kumari, Umme Hami, Ranjit Paswan, Raj Kashyap, all of them are sitting there inside the stadium and they are in the rain. You can see them under an umbrella there in Ranchi. And why this is important also, because remember, this is a cross section. You can see the tricolor there in the background. If there is a Ranjit Paswan here, there is also an Umme Hami. There is also

0: एक उम्मीद की आपको किरण दिखी है, दो दो अधिकारी वहां पर आए हैं, क्या कम से कम एक वो रास्ता आप खुला है, एक ये दरवाजा खुला है?
1: देखिए मैम, सरकार से आज बात किया है, प्रयास हो रहा है बात करने का। सरकार हमारा जो डिमांड है वो देखते हैं कितना डिमांड क्या होता है, उसके बाद ही।
0: कितना डिमांड होता है, क्योंकि बार बार आप ये मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। विवेक, सीबीआई पे ही आप क्यों?
1: हमारा
0: क्योंकि क्यों सीबीआई ही क्यों?
1: हम लोग चाहते हैं कि अभी जो मेरा हम लोग का पहले मांगे कि सारे एग्जामों को जो है हम लोग बता चुके हैं पहले ही, रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा यहाँ जो सीआईडी जांच है उस इतना बड़ा अधिकारी को नहीं पकड़ा जा सकता सीआईडी के द्वारा, जो चाहे किसी भी टीम को, क्योंकि उसका भी ये स्टेट नहीं आता है, जवाब रहता है किसी न किसी प्रकार। हम चाहते हैं कि सीबीआई जो स्वतंत्र रूप से हो, कि जो हम स्टूडेंट है हमको भी विश्वास इस सिस्टम पर हो और हम उम्मीद से तैयारी कर सकें।
0: क्योंकि पूजा बार बार एक चीज यहाँ पर स्टैंड आउट कर रही है कि मैंने कई सारे लोगों को देखा वहाँ पर बोलते हुए, और आज हम दिन भर ये सब नेताबाजी, ये सब जो पॉलिटिशियंस थे वो बोल रहे थे, कोई कह रहा था हम अपना सपोर्ट दे रहे हैं, कोई कह रहा हम खाना भिजवा रहे हैं, और बार बार जो वहाँ से रांची से आवाज़ें आ रही थी वो कह रही थी हमें नहीं चाहिए बॉस, हमें कॉकरोच नहीं चाहिए, हमें कॉकरोच जनता पार्टी नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए, आप रखिए अपना अपने पास, हमें मॉरल सपोर्ट दे दीजिए, हमारे मदद कर दीजिए, बट हमारा मन साझा मत कीजिए। क्यों पूजा, अगर आपको आवाज आ रही है?
2: यस मैम, क्योंकि हम लोग मैम, हम लोग छात्र ही, हम लोग लीड करना चाहते हैं और किसी को हम लोग, हाँ अगर अगर आप लोग का समर्थन देना है तो बैठ कर दीजिए, आइए कुछ हम लोग को समर्थन दीजिए, हम लोग को उतना काफी है, हौसला बढ़ाइए काफी है, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं चाहिए मैम, हम लोग छात्र काफी है, हम लोग को छात्र ही लीड करेंगे मैम,
0: छात्र ही लीड करने चाहिए। और शाम को मैंने देखा वहां पर बारिश भी बहुत पड़ रही थी, मुश्किल तो बहुत हुई होगी।
2: अभी भी बारिश हो रही है मैम, अभी भी बारिश हो रही है, हम लोग बारिश में ही है अभी छाता लेकर,
0: और सब बारिश के बावजूद आप वहां पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे?
2: बिल्कुल मैम,
0: और अभी भी अपने साथ एक तिरंगा लेकर के आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? रंजीत, आपके हाथ में है तिरंगा?
3: जी मैडम। नहीं नहीं मैं विवेक।
0: बताइए विवेक, क्यों जरूरी है आपके हाथ में तिरंगा होना? और ये इसलिए भी जरूरी है, और मैं चाहूंगी कि सब लोग देखें इस वक्त जो टीवी देख रहे हैं, एक और पोस्टर का जिक्र हुआ था, क्योंकि लगातार जो जो रांची में पोस्टर्स मैं देख रही हूँ, एक वहां पर पोस्टर लगा था कि कोई देश विरोधी नारे नहीं लगेंगे, कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई रीलबाजी नहीं होगी, यहाँ पर कोई गाली गलौच नहीं होगी, क्यों ये क्यों जरूरी था आपके लिए?
4: ये छात्र आंदोलन है और हमारे माता पिता जो है इस चैनल को देखते हैं, सभी गार्जियन हमारी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, तो एक गलत मैसेज ना जाए कि छात्र अपने हक अधिकार के लिए लगने आए और किसी तरह का बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, तो वो उचित नहीं है इतना बड़ा।
2: मैम हम लोग मांगे अपने मांग पूरी करने आए ना, कि हम लोग अभद्र भाषा के प्रयोग करने आए, हम लोग मांगे शांति पूर्वक से भी मांग सकते हैं, इसलिए हम लोग शांति पूर्वक से आंदोलन कर रहे हैं मैम।
5: हम लोग का प्रोटेस्ट बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से होगा, कोई भी असामाजिक तत्व ना शामिल होंगे और ना ही कोई अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाएगा, बिल्कुल जो हमारे लिए जो इस राज्य को चला रहे हैं हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है और हमेशा से रहेगा, तो बस एक संवैधानिक तौर तरीके से जो भी संविधान ने हमें हक दिया है, जिस चीज की इजाजत दी है, हम बस उसी की राह पर चल करके सरकार से अपनी मांगों की मांग रख रहे हैं।
0: संवैधानिक तरीके से सारा प्रोटेस्ट होगा, आप बताइए आपके हाथ में अभी तिरंगा क्यों है? विवेक
3: मैम, हम इंडिया के भारत मेरा देश है और ये फ्लैग हमारी सम्मान है, प्राउड है, गर्व है। मैम जब नेशनल टीवी पे आ रहे हैं और हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि हम लोग देश का है, संविधान से देश से चलने वाले छात्र हैं, और आपने अभी कहा कि कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, बहुत सामान्य व्यवहार और अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैम एक्चुअली हम लोग झारखंड से आते हैं, हम लोग यहाँ सभ्यता कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों का संस्कार बिल्कुल भी ऐसी कोई भी इजाजत नहीं देती है कि मैं किसी बड़े लोगों से या छोटे लोगों से बदतमीजियां करूं, किसी को अभद्र भाषा बोलूं, किसी भी गाली गलौज, किसी भी तरह की चीजें हम लोग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम लोग जानते हैं और नहीं।

0: करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग करते ही नहीं है। तो सरकार से बस मांगे हम लोगों को इसलिए है क्योंकि जो हम लोग छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि इतना सालों से मेहनत करते हैं तो हम लोग को बस एक ही अवसर मिलता है, एक सरकारी नौकरी। अगर उसमें भी गड़बड़ियां होगी मैम, तो फिर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, फिर बेरोजगार रह जाएंगे। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं हम लोगों से और सपने जुड़े होते हैं, तो हम लोग किसी के सामने, किसके सामने मांगे, बस एक ही होती है सरकार। और सरकार हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है, उनके लिए बहुत सम्मान है। और जिस तरह का अभी आपने सुना होगा कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा आके बातचीत हुई, एक कमिटी का बोला गया कि आप लोग कुछ मेंबर आइए और राज्य सरकार से वार्ता कीजिए।
1: जी, डेलीगेशन टीम को बुलाया गया है ताकि सरकार से वार्ता हो सके। जो हमारी मांगे हैं हम उनके पास रखेंगे और फिर दोनों के बीच वार्ता होगी, सरकार और डेलीगेशन टीम के बीच।
2: और ये बच्चे ऋषिकेश जी, आपने सारे बच्चों की आवाज़ सुनी है, ये बहुत सम्मानित तरीके से तिरंगे के साथ खड़े होके बस इतनी सी मांग कर रहे हैं, एक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर कर दीजिए ताकि फेयर एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चल जाए कि 12 साल से यहाँ क्या चल रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: पद्मजा जी, झारखंड सरकार खास करके जो अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके मुद्दों के लेकर के गंभीर है और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने भी आवेदन किया है कि आप लोग आइए बात करिए, दरवाजा खुला हुआ है। और अभी मंत्रिमंडल का एक समूह गठन कर दिया गया है छात्रों से बात करने के लिए। जहां तक सीबीआई की बात है पद्मजा जी, तो झारखंड में जेपीएससी का पहला एग्जाम 2003 में हुआ था जब भाजपा की सरकार थी, और जेपीएससी 2 का एग्जाम हुआ था 2005 में, उस समय भी भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री भाजपा के थे, और दोनों एग्जाम में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुई।
2: तो
3: और
2: आप
3: सीबीआई
2: सीबीआई
3: जांच
2: का
3: करनी है।
2: इन्वेस्टिगेशन करा के उनको जेल में डलवाइए ना, आपके लिए तो और भी सुनहरा मौका है। मैं कौन सा कह रही हूँ कि बीजेपी को छोड़िए, आप कराइए ना सीबीआई का प्रोब इन बच्चों की बात सुन के।
3: मेरी बात हो जाने दीजिए। दोनों जेपीएससी का जांच सीबीआई कर रही है, नतीजा 2026 आ गया जीरो। व्यापम घोटाले की जांच 2015 से सीबीआई कर रही है, नतीजा जीरो। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 की सीबीआई जांच कर रही है एग्जाम की, नतीजा जीरो। 2024 नीट का सीबीआई जांच कर रहा है, आपको जानकारी होगा कि नीट का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया सीबीआई के द्वारा सबूत न पेश करने पर बाइज्जत बरी हो गया, नतीजा जीरो। 2026 यूजीसी नेट का सीबीआई जांच कर रही है, नतीजा जीरो। और राज्य सरकार की जो सीआईडी जांच कर रही है पद्मजा जी, व्यापक पैमाने पर जांच कर रही है, 14 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दे चुका है, जेपीएससी की
2: पर
3: डिप्टी
2: उनको भरोसा
3: एग्जामिनेशन
2: नहीं हो
3: कंट्रोलर
2: रहा है ना
3: गिरफ्तार हो
2: सर,
3: चुकी हैं।
2: उनको इन एक्शंस पे भरोसा नहीं हो रहा है, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि एक आदमी
3: झारखंड
2: जिसका
3: के
2: नाम है
3: छात्रों को मैं कहना चाहता हूं,
2: अभय
3: झारखंड
2: तिवारी
3: के
2: और
3: छात्रों
2: मनोज तिवारी पिछले 13 सालों में 12 एग्जाम पास कर जाता है, उसके घर के सारे लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं, वो लगातार एक ऐसी एजेंसी जिसको उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया गया था उससे एग्जाम झारखंड में कैसे करवा लिया। ऋषिकेश जी ये सवाल अगर आज छात्र पूछ रहे हैं, उनको भरोसा अगर नहीं हो पा रहा है। बोलिए पूजा। हाँ
4: मैं अपनी
1: झारखंड में
4: पूरी
1: भी
4: बात
1: किया
4: कर
1: गया था
4: लूं,
1: 2021 में मैम, वही कंपनी को दोबारा लाया गया है
2: यूपी में
1: एग्जाम
2: ब्लैकलिस्टेड,
1: कंपनी
2: झारखंड में ब्लैकलिस्टेड, फिर उस पे ब्लैकलिस्ट हटा करके
3: का।
2: उन्हीं को ठेका दिया गया है कि आप ये एग्जाम कराइए, ओएमआर शीट्स आप कराइए, कैसे भरोसा होगा ऋषिकेश जी।
3: पद्मजा जी, टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड हुई 2025 में, उसके बाद भी एग्जाम हुआ, उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, उस मैनेजर के गिरोह के जितने लोग थे गिरफ्तार हो चुके। और झारखंड की जो सीआईडी जांच चल रही है, झारखंड सरकार देखिए इसको बहुत व्यापक पैमाने पर जांच कर रही है। और छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जांच चल रही है, कोई भी आरोपी और जो उसमें शामिल होंगे एक भी लोग नहीं बचेंगे। सीबीआई की जहां तक बात है, मैंने बताया कि उनका रिकॉर्ड क्या है, बता दें 5 ठो केस बता दें जो परीक्षा नियमितता का केस सीबीआई सोल्व कर दी हो। लेकिन सीबीआई के जगह छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार का जो बॉडी है सीआईडी, उस पर विश्वास करिए एक भी लोग नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज खुद कहा कि सरकार के के दरवाजे छात्र के लिए खुले हुए हैं, छात्रों के हर मुद्दों के साथ सरकार साथ में है, लगातार कार्रवाई हो रही है, एग्जामिनेशन डिप्टी कंट्रोलर गिरफ्तार हो गई, वहां 10 साल से ज्यादा जो जमे थे जेपीएससी में सारे लोग को बदल दिया गया, खियांते जी जो चेयरमैन थे इस्तीफा दे चुके हैं और 14 लोग गिरफ्तार, 5 जिलों में छापामारी चल रही है।
2: रंजीत बताइए, 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आज भी गिरफ्तारियां की है सीआईडी ने,
3: दूसरा जेपीएससी का रिजल्ट सीबीआई क्या थी,
2: तो क्या परेशानी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, भरोसा रखिए सरकार पर। रंजीत
5: यस मैडम, भरोसा तो है लेकिन लंबे समय तो से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन छात्रों का ऐसा कहना है ना मैम, इसमें सीआईडी का जो बॉडी है ना जो राज्य सरकार के अंदर अगर आती है तो हम लोग पर छात्रों का कुछ उम्मीद कम है, ठीक है मैम, तो हम लोग को यही चाहते हैं कि हम लोग का डिमांड यही रहेगा कि एक बार सिर्फ सीबीआई से जांच करवा दीजिए।
2: ऋषिकेश जी।
5: जी मैम।
3: पद्मजा जी, मैंने तो कहा कि सीबीआई का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि पहला जेपीएससी दूसरा जेपीएससी का 15 साल हो गया लेकिन उस आज तक ने उसका कोई सोल्व नहीं कर पाया सीबीआई, आज तक वो केस पेंडिंग है, तो सीबीआई की जगह सीआईडी जांच कर रही है। छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं तो खुद छात्र राजनीति से आया हूं, एक भी दोषी नहीं बचेंगे, व्यापक पैमाने पर जांच होगी, पूरा झाड़ दिया जाएगा, जितने आरोपी हैं गिरफ्तार करके कानून के तहत कार्रवाई होगी और 2023 में झारखंड सरकार पद्मजा जी परीक्षा के जो भी अनियमितता करने वाले लोगों के लिए एक बिल लाई थी,
2: ये बच्चा कुछ बोल रहा है,
3: 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना है।
0: कि सर ने आपने कहा कि जांच हुई थी 2003 में हो रही थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा कि सर अगर कोई अपराध मतलब किया हुआ है पहले, ठीक है, तो उसपे कार्रवाई हुई नहीं हुई क्या हुई पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि अभी अगर कोई अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3: कोई भी केस वो सोल्व नहीं कर पाया, परीक्षा नियमितता को लेके पेपर लीक को लेकर के कोई भी केस सीबीआई सोल्व नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि नीट यूजी का 2024
0: का क्या तो सीबीआई को बंद कर देना चाहिए,
3: मुखिया को सबूत के अभाव में बेल होने दिया, अभी अभी 2024 नीट जो लीक हुआ था, तो सीबीआई का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, आप अपने राज्य के अधिकारी, अपने राज्य की एजेंसी, अपने राज्य के सरकार पर विश्वास करिए साथियों, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और आज कांग्रेस का डेलीगेशन पद्मजा जी कांग्रेस के प्रभारी के राज,
2: सुन लीजिए ऋषिकेश जी, बच्चे बोल रहे हैं, उम्मे बोल रही है, उम्मे बोलिए,
6: सुन लीजिए, आप दिल में हाथ रख के बोल दीजिएगा कि जेएसएससी सीरियल में जो कुछ हुआ है आपको भी पता है सर, अब बोलिए कितना न्याय हुआ हम लोग से जेएसएससी सीरियल में, आप इस पर जवाब दीजिए सर, हम चाहते हैं आप इस पर बात कीजिए।
1: 24 में जो सीरियल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी सीआईडी जांच कर रही थी सर, लेकिन कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकला, इसलिए हम सीआईडी पे भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि उस टाइम फिर ज्वाइनिंग तो हो गया ना सीरियल वालों का।
3: मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सीबीआई के क्रेडिबिलिटी का एक केस बता दीजिए।
7: भरोसा का सरकार से भरोसा के लिए तो हम लोग एक बात बताइए, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है अब भरोसा की बात करते क्यों लाया गया है, बताइए सर किस लिए भरोसा होगा, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको क्यों लाया गया है, कैसे हम लोग भरोसा कर ले, जो की टीडीएल कंपनी ने कम से कम जितना भी एग्जाम लिया सब में धांधली हुआ है, सभी में धांधली हुआ तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले सर की सीआईडी तो राज्य के अंदर भी आता है, तो टीडीएल कंपनी के लाने वाले तो हमारे राज्य माननीय मुख्यमंत्री ही है, तो कैसे हम लोग भरोसा कर ले बताइए।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं,
6: बोलना चाहता हूँ
3: मैं आपको,
2: सुनिए सुनिए ऋषिकेश जी, सुनिए इनकी बात, सुनिए, बोलिए चंडी,
6: एक मिनट सुन लीजिए सर, एक टीडीपीएल कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है और अभय तिवारी जो सेकंड टॉपर है जेएसएससी सीजीएल का, आप सर समझते हैं कि एक इतना बड़ा संस्था और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम को करा रहा है, सर आपको मालूम नहीं सर, इस पर आप जवाब दीजिए सर।
3: पद्मजा जी, जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार का उसमें क्या इंटरफेरेंस है मैं साथियों से पूछना चाहता हूं, उसमें सरकार
6: के ही अंडर में आते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार के अंतर्गत आता है,
3: अधिकारी चाहिए, जेपीएससी सारा निर्णय स्वयं लेता है, वो एग्जाम खुद कराता है, कंपनी डिसाइड खुद करता है, जेपीएससी में सरकार का क्या रोल है साथियों, आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे
6: सर, आप उन अधिकारियों को क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं जो इस कंपनी को हायर किया, आप समझिए सर, आप क्यों नहीं इसको जेल भेज रहे हैं जो इस कंपनी को हायर किया है, आप ये दिख ही नहीं रहा है, सीआईडी जांच कर ही नहीं रहा है, अगर सीआईडी जांच करता तो उन अधिकारी जेल में होता सर,
3: कंपनी का मैनेजर कहाँ है,
6: सिर्फ अभय तिवारी नहीं है, अभय तिवारी सिर्फ बड़ा सर
3: बना, लोग जो गिरफ्तार है अभी
7: ओनली छोटी मछली पकड़े गए सर, बड़ी मछली
6: अभय तिवारी पकड़े गए हैं और मछली पकड़ना बड़े बड़े अधिकारी,
7: बड़ी मछली बाकी है सर अभी,
3: मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ा जाएगा।
2: देखिए मृत्युंजय जी,
0: सरकार को बस इतना बोल रहे हैं,
2: ऋषिकेश जी, बात बहुत सीधी सी है, देखिए आप चाहे जितनी टेक्निकलिटी बता दे, यहाँ पर छह छात्र आपके सामने हैं, छह छात्र बता रहे हैं कि कैसे उनको एक रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस के लिए उनकी एक छोटी सी मांग है। देखिए यहाँ पे तो वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि फलां का इस्तीफा हो, धमाके का इस्तीफा हो, ये बच्चे सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम संविधान के मुताबिक शांति पूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट रखेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, और सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि इतने सालों से ये धांधली चल रही है। आप सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए सर, फिर आपको जिसको जेल में भेजना है, आप बीजेपी सरकार के लोगों को जेल में भेजिए, आप कांग्रेस सरकार के लोगों को जेल में भेजिए, आप जेएमएम सरकार के लोगों को जेल में भेजिए, पर कम से कम इनकी एक छोटी सी मांग को सुन तो लीजिए। मृत्युंजय शर्मा, मृत्युंजय शर्मा आप यहाँ पर आए हैं, आप कह रहे हैं कि भाई आप खड़े हैं झारखंड के बच्चों के साथ, कांग्रेस कह रही है कि आप अपने राज्यों में तो देखते नहीं है क्या हो रहा है, जंतर मंतर में जब वहां पर पैलेट गन चलती है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अब आप यहां पर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए आ गए।
8: अग्निजा जी, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई टू थिंग्स फर्स्ट हियर, कि ये जो छह बच्चे यहाँ पे हैं ये बार बार सीआईडी इन्वेस्टिगेशन का क्यों विरोध कर रहे हैं और सीबीआई की क्यों अनुशंसा कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। झारखंड का सबसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम पिछले कुछ सालों में हुआ होगा वो जेएसएससी द्वारा कंडक्टेड सीजीएल है। 2023 में उसका नोटिफिकेशन आता है, तीन बार उसका जो फर्स्ट एग्जाम है रीशेड्यूल होता है, अक्टूबर 23, दिसंबर 23 और जनवरी 24 में कंडक्ट होता है। जनवरी 24 में एग्जाम लीक हो जाता है, एग्जाम लीक होता है उसको कैंसिल किया जाता है, उसके बाद फिर से वो एग्जाम रीशेड्यूल किया जाता है। 9 महीने लग जाते हैं उस एग्जाम को रीशेड्यूल कराने, और सितंबर 24 में एग्जाम होता है। सितंबर 24 में जब वो एग्जाम होता है फिर से वो पेपर लीक होता है, छात्र अपने मोबाइल फोन पे वो लीक पेपर्स दिखाते हैं, वो सबूत देते हैं, और सरकार कहती है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स थे जो एलिज करते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ केस फाइल कर देती है, सरकार इनफैक्ट सीआईडी को केस देती है, सीआईडी को मोबाइल फोन सौंपे जाते हैं तो सीआईडी कहती है कि मोबाइल फोन स्टैंपर्ड है, वो हैदराबाद लैब में भेजे जाते हैं मोबाइल फोन, द लैब्स इन हैदराबाद से दे हैव नॉट बीन टैंपर्ड विद। सीआईडी गिरफ्तार करती है लोगों को नेपाल से जिनको प्रश्न पत्र रखवाने के लिए नेपाल ले गया, सीआईडी गिरफ्तार करती है लोगों को बिहार से, झारखंड के हर स्टेट से, और फिर भी कहती रहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ। छात्र रटते रहते हैं, एविडेंसेस देते रहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, और फाइनली सरकार उनकी ना सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है जस्ट टू प्रूव कि वो पेपर लीक नहीं हुआ है, और फिर उस सीजीएल का रिजल्ट आ जाता है। दिस इज 2024। आज जब ये पूरा मामला चल रहा है और अभय तिवारी हुए इमर्ज्ड द किंग पिन ऑफ द एंटायर जेपीएससी स्कैम, क्या आपको पता है वही अभय तिवारी उसी सीजीएल एग्जाम में सेकंड रैंक लेके आया। सोचिए, डू यू स्टिल वांट अस टू बिलीव दैट वाज अ फेयर एग्जाम, एंड यू स्टिल वांट अस टू बिलीव कि वही सीआईडी जिसने उसको क्लीन चिट दी उस सीजीएल एग्जाम को, वो इस जेपीएससी एग्जाम को का जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सही से कर ली। आई गिव यू अ सेकंड एग्जांपल ऑन व्हाई दीस पीपल डोंट ट्रस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। एक सेकंड एजेंसी एसीबी, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है लेकिन आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड हियर, झारखंड में बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई, एसीबी इज द स्टेट एजेंसी, जिस दिन उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, सोचिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया, उसी दिन शाम को उनको गिरफ्तार भी कर लिया, गिरफ्तार किया, पूछताछ की, और 3 महीने तक चार्जशीट दाखिल नहीं की, एंड ही वाज देन ऑटोमेटिकली रिलीज ऑन बेल, और उस शराब घोटाले में मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा नाम आता है।
2: ओके मिस्टर शर्मा, गवर्नमेंट एजेंसी टू द स्टूडेंट्स इशू प्लीज, दिस इज नॉट अबाउट योर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, लेट्स स्टिक टू द स्टूडेंट्स इशू, एंड एज फार एज द सीआईडी इंक्वायरी इज कंसर्न, आंसर ऋषिकेश सिंह, द सिंपल एग्जांपल बीइंग गिवन ऑफ व्हाई देयर इज जीरो कॉन्फिडेंस दैट दिस विल यील्ड एनीथिंग।
3: पद्मजा जी, मैं तो पहले बीजेपी के प्रवक्ता का एक गलती को सुधारना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 2022-23 में जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, जबकि सच्चाई है कि 15-16 में उसका पहली बार नोटिफिकेशन आया था, भाजपा सरकार में, डबल इंजन की सरकार थी, 4 साल सरकार इनकी थी, एग्जाम नहीं करा पाए। जब जेएसएससी सीजीएल का हम लोग एग्जाम कराए, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ, उसमें भी जो आरोपी थे उन पर केस चला, ट्रायल चला। और दूसरी चीज ये जो बोल रहे हैं कि सीबीआई का जांच हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि जेपीएससी 1 और 2 का सीबीआई जांच आज भी चल रहा है, 15 साल से ज्यादा हो गया, रिजल्ट क्या निकला, कौन से लोग जेल गए, कौन से लोग बर्खास्त किए गए, इसका जवाब वो देते हैं सिर्फ कि सीबीआई का क्रेडिबिलिटी क्या है झारखंड का जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 के एग्जाम में।
2: मृत्युंजय शर्मा,
3: चल रहा है कि नहीं चल रहा है आज
8: 2023? पद्मजा जी, पद्मजा जी, आई थिंक यू हैव क्लैरिफाइड दिस इनफ। वी आर सेइंग एनीबॉडी हु इज कल्पेबल, आप सीबीआई की, आप सीबीआई की जांच कराई ना, उन लोगों को भी कराई, मान लीजिए हम लोग नहीं करा पाए, आप जांच कराए और उन सारे लोगों को 26 साल से लेकर आज तक जिसने भी जो भी इन्वॉल्व है आप सभी को जेल भेजिए। एंड दूसरा आप बोलते हैं कि जेपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार का उसमें क्या लेना देना, सरकार का सबसे ज्यादा लेना देना है। आप कहते हैं उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन 3 मेंबर्स का क्या जिसको सरकार ने अपॉइंट किया? पद्मजा जी, डू यू नो द मेंबर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ जेपीएससी? एक अजीता भट्टाचार्य, हु इज अजीता भट्टाचार्य, व्हाट इज हर क्वालिफिकेशन? शी इज द वाइफ ऑफ जेएमएम स्पोक्सपर्सन, दैट्स इट। दूसरा जमाल अहमद, 2008 में एक प्राइमरी टीचर

0: थे, और उसे डायरेक्टली लेक्चरर बन जाते हैं। आज तक उनकी जो लेक्चरर बनने की कहानी है वो सीबीआई के जांच के घेरे में। यू मेक हिम द मेंबर ऑफ
1: उसका
0: जेपीएससी।
1: रिजल्ट क्या
0: इन
1: हुआ?
0: तीनों का इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने अब तक? इन तीनों को क्यों नहीं जेल भेजा आपने अब तक? एंड देन यू से जेपीएससी इज एन ऑटोनोमस बॉडी।
1: विवेक,
0: पद्मजा जी, दिस इज नॉट वन एग्जाम। सबसे पहले, दिस इज नॉट वन एग्जाम, दिस इज नॉट वन लीक, दिस इज एन एंटायर पैटर्न, एग्जाम आफ्टर एग्जाम। एंड लेट मी थ्रो जस्ट वन चैलेंज टू माई एजुकेटेड फ्रेंड ऑफ कांग्रेस। 6 वर्षों से आपकी सरकार है ना, 6 वर्षों में आप उस एक एग्जाम का नाम मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक, जिसका नोटिफिकेशन जब आया ड्यू डेट पे एग्जाम हो गया, बिना रिशेड्यूल हुए, बिना कोई उसमें रेगुलरिटी हुए, बिना पेपर लीक हुए, ड्यू डेट पे रिजल्ट आ गया और लोगों ने ज्वाइन कर लिया। एक एग्जाम अगर ये 6 सालों में मुझे बता देंगे, आई विल कम टू हिज साइड।
1: विवेक, क्या आपको लगता है जब आप कहते हैं, जब कांग्रेस के या जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसके ऊपर हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन कराने का, आपको लगता है कोई भी किसी भी तरीके का ब्रेक थ्रू होगा इसमें फिर?
0: पद्मजा जी, हु सॉल्व द नीड?
1: विवेक विवेक विवेक बोलिए,
0: उसको किसने सॉल्व किया?
1: विवेक
2: रिपीट कर सकते हैं मैम?
1: मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो साफ साफ कह रहे हैं कि सीबीआई पे हमें कोई भरोसा नहीं है, तो फिर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करवा के क्या फायदा है?
2: बिल्कुल ऐसा नहीं है मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है आपको, तो हम लोगों को, छात्रों को भरोसा है, और छात्र अगर डिमांड कर रहे हैं क्योंकि सरकार से डिमांड कर रहे हैं और आपने कोई गलती नहीं की है, तो छात्रों के खुशी के लिए, आप तो सरकार है, इतना तो कर ही सकते हैं, आप कर दीजिए, क्या दिक्कत है?
1: और आप तो पूरे देश में निकाल रहे हैं ना ऋषिकेश जी, आप तो पूरे देश में छात्रों के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे यह अलग बात है कि रांची में आप नहीं निकाल रहे हैं, आप चंडीगढ़ में जा रहे हैं, आप दिल्ली में जा रहे हैं, आप मुंबई में जा रहे हैं, आप जाकर के रांची में एक बार यात्रा निकाल लीजिए और उनकी बात मान लीजिए। आप ही थे ना जो जंतर मंतर गए थे और कहा था कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए, और रेजिग्नेशन हुआ क्योंकि छात्रों ने कहा कि भाई रेजिग्नेशन होना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे एक छोटी सी मांग है कि आपके मुख्यमंत्री आए, बात करें और सीबीआई इन्वेस्टिगेट। आप तो इतना भी करने को तैयार नहीं है, आपका तो इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा।
3: पद्मजा जी,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कांग्रेस पार्टी जब से आंदोलन चल रही है छात्रों के साथ है। राहुल गांधी जी ने खुद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाकड़ जी को, यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया जो एमएलए है राजस्थान के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको, रांची के जिला अध्यक्ष कुमार राजा जी को ड्यूटी लगा रखी है कि आप छात्रों के साथ जाके खड़ा रहिए, उनके एक एक मांगों को ध्यान से देखिए और सरकार से बात करवाइए। और आज कांग्रेस का डेलीगेशन पद्मजा जी सारी मांगों को लेकर के, जो छात्र का मांग है सारी मांगों को लेकर के सीएम से मिले हैं। इसके बाद सीएम ने अनाउंस किया है कि अभी 4 मंत्रियों का एक समूह बनेगा जो छात्रों से बात करेगी। मैं बोलिएगा तो मंत्री का नाम भी बता सकता हूं, मेरे पास अभी व्हाट्सएप में आ गया है। वो 4 मंत्री छात्रों के ग्रुप से बात करेगी, छात्र अपना बात रखेंगे और जो जो जिनविन डिमांड है छात्र का, एक एक छात्र का डिमांड को पूरा किया जाएगा।
1: कांग्रेस छात्रों को भरोसा दिया जाएगा। मैंने तो 2-3 दिन पहले ही बात की थी चंडी से, उस वक्त तो कोई नहीं खड़ा था, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था। क्या पहले दिन से आपसे बातचीत हो रही थी चंडी?
4: नहीं मैम, कोई इस तरह बातचीत नहीं। अभी सरकार ने कुछ पहल किया है तो देखते हैं क्या है सरकार की तरफ से पहल। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जब तक सारा एग्जाम रद्द ना हो तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा।
5: वो सारे एग्जाम जो बीपीएल कंपनी कंडक्ट करवाए गए हैं या फिर अभय तिवारी जिस एग्जाम से संलिप्त पाए गए हैं, जिससे उनका कनेक्शन रहा है, तो वो सारे एग्जाम कैंसिल होने चाहिए मैम।
6: सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए और फिर एग्जाम होने चाहिए। हम लोग क्या मांग है सर? हम लोग सीबीआई जांच ईडी लागू, बस हम लोग छात्रों के खुशी के लिए कर दीजिए ना, और क्या चीज है?
1: सिंपल सिंपल सी डिमांड है और बार बार बस यही कहा जा रहा है। इरफान अंसारी साहब भी जो हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं वहां पे, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कही है। एंड आई एम कमिंग टू यू चिराग सेठी एज वेल इन जस्ट अ सेकंड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। इरफान साहब, आप अपने आज सुबह आपने कहा कि क्या ये जबरदस्ती की बात है, ये आपका कहना था। अगर कोई वहां पर धरने पर बैठा है, अगर कोई कह रहा है कि सरकार हमारी बातें सुने, तो उसमें जबरदस्ती की बात क्या है?
7: नहीं देखिए मैडम, 2-3 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। युवा धरना दे रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं, वो हमारे बच्चे हैं और हमारी सरकार सेंसिटिव सरकार है। आज ही कई डेवलपमेंट हुआ है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे प्रभारी के राजू सर ने आज एक आपात बैठक बुलाकर युवाओं से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कमेटी का गठन कराया गया है, जिसमें 4 मंत्री भी हैं। तो जो बच्चे वहां पर हैं उनसे हमारी टीम वार्ता करेगी, उनकी जो भी मांगे हैं वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये धरना में मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग जा रहे हैं, वाई दे विल गो, वो इलाव

0: और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं, भाजपा जो है इनकी नीति और नियत में खोट है, युवाओं का आंदोलन को
1: नहीं,
0: कुचलना
1: जो
0: चाहते
1: धरना
0: हैं।
1: है वो तो बच्चों का
0: लेकिन
1: धरना
0: हम
1: है
0: लोग
1: ना, उसको आप भाजपा का धरना क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड एक सेकंड,
0: आज मैम
1: ये तो युवाओं का धरना
0: आज
1: है। पहले दिन से हम जब बात कर रहे हैं
0: भाजपा
2: अगर
0: की
2: कोई
1: तो
2: ऐसी
1: मंच
2: चीज
1: तो
2: होगी,
1: युवा संभाले
0: कई
1: हुए हैं, उसमें
2: भाजपा के
1: भाजपा
2: लोगों
1: का
2: को
1: क्या
2: अवॉइड
1: लेना
2: करने
1: देना
2: का प्रयास कर रही है।
0: मेरी बात सुन लीजिए, कई भाजपा के लीडर आज वहां गए
2: हम लोग मैं
0: उसका रहे, युवाओं को
1: नहीं, एक
0: उसका रहे,
1: सेकंड एक
0: बैठा
1: सेकंड, एक
0: रहे।
1: बच्चा कुछ बोल रहा है, चंडी चंडी कुछ बोल रहे हैं आपसे।
2: सर सर हम बोलते हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग अधिकारी भविष्य बनाने आए हैं। ये झारखंड में सिर्फ कोयला नहीं जलता है, ये झारखंड में स्टूडेंट के भविष्य को भी जलाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सर, हमारा एज जा रहा है, हमारा माता पिता परेशान है,
3: कोई
2: नहीं कुछ कर पा रहे हैं सर। माता
1: भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां धरना, भाजपा ओवरटेक कर रहा है, नहीं, पहले दिन से ही यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो सीबीआई की डिमांड उठ रही है, जो सरकार से बात करने की डिमांड उठ रही है, वो तो आम बच्चे उठा रहे हैं। अगर वहां पे लोग आ जा रहे हैं, भाई आप भी जंतर मंतर पर आ जा रहे थे ना, आपके नेता भी जा रहे थे, सपा के नेता भी जा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी जो डिमांड थी वो नाजायज जाती है। इरफान साहब,
0: मैडम आपने
1: जब आप उसको बेवजह का नाटक बोलते हैं, तब तो फिर आप उसको
0: मैडम,
1: एक राजनीतिक प्रिज्म से देख रहे हैं।
0: मैम आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये दिल्ली का धरना है नहीं, दिल्ली में नीट का जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ, ये लाखों लाख बच्चे प्रभावित हुए, भाजपा ने उन पर गोलियां चलाई, बच्चों को मारा, आपने देखा होगा वो दृश्य, मैं बता नहीं सकता। ठीक, अगर आप कंपेयर करें झारखंड की जेपीएससी की, तो मैम यहाँ पर 300 सीट है, मात्र 300 प्लस सीट है, इसको लेकर छात्र धरना पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ। टू बी फ्रेंक मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ियां पाई गई, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आज जेपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया गया है, कई लोग हिरासत में है, जांच चल रही है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। आज बैठक में हमने अपनी बात को रखा, सीएम साहब भी थे, हमारे प्रभारी के राजू सर भी थे, हमने कहा कि हमारे बच्चे हैं वो लोग, आज बरसात में देखिए वो लोग भींग रहे हैं, उनकी जो भी मांग है हम लोग को जानना चाहिए, सुनना
4: अभी
0: चाहिए,
4: हम लोग बरसात में भींग रहे हैं सर, अभी भी खड़े हैं,
0: हम ये कहना चाहते हैं
4: सर, छाता लेके ये देखिए हम लोग छाता पे हैं,
2: आप क्यों नहीं आ रहे सर,
4: आप एक बार आज तो बात कर रहे हैं,
2: रांची में कितना दूर है सर, आप जाते हैं
0: हम लोग आपके साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, हमारी बेटियां हैं हम उनके साथ हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, के राजू सर आपके साथ हैं, आपके एक एक बात मानेंगे, एक एक बात सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, किसी के बहकाव में मत आइए आप लोग। कल रात में कुछ बच्चों का खराब हुआ था, एज ए हेल्थ मिनिस्टर
4: सर हम लोग अपने हक के लिए खड़े हैं, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं है। हम लोग
2: आप अपना दिल में हाथ रखिए सर और बोलिए कि आप अपना बेटा का इच्छा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं,
4: हम लोग आपके बच्चे नहीं है सर, हम लोग आपके बच्चे नहीं है,
2: बस इतना ही है फर्क है कि हम मजदूर और किसान के बच्चे, आप यही समझ,
0: अच्छा
2: यही गलती है।
0: एक बार मेरी बात सुनिए,
2: हम लोग तपस्या,
0: आप लोग की जो मांग है
2: हम लोग का कोई फर्क नहीं,
0: देखिए आप लोग का जो भी मांग है, देखिए बीजेपी किस तरह डायल्यूट कर रही है, आप जेपीएससी की मांग पे धरना पे हैं, अब वो लोग करे जेसीएससी,
2: हमारा मांग नहीं पता है सर, हम सभी मांगों पर आपको
0: ऐसा धरना नहीं होना चाहिए, वो लोग भी सरकार के पक्ष में, तो एक बात सुन लीजिए मेरे बात, हमारे सरकार राहुल जी के मार्गदर्शन पे और चलने वाली सरकार है, हम लोग यहाँ कोई भी इलीगल काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, युवा खुद मैं हूँ, राहुल जी ने हमें स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी हमारे युवा हैं, तो आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ आप लोग बच्चों को कि आप लोग की जो बात है,
1: और ये पीड़ा तो 12 दिन से आपने सुनी भी नहीं है इरफान साहब, 12 दिन से तो आप इस पीड़ा को सुन भी नहीं रहे थे, कब आए आपके नेता? आज आपने दो अधिकारियों को भेजा है इरफान अंसारी साहब, आज 12 दिन के बाद जाकर के, जब 2 दिन से भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो आज जाके आपने 2 अधिकारियों को भेजा है, आप पूरे देश में बच्चों की पीड़ा की बात कर रहे हैं, आप पिछले 2 हफ्ते से मार्च निकाल रहे हैं, यहां तो आपको मार्च भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपसे महज 1 किलोमीटर दूरी पे बैठे हुए हैं, वो स्टेडियम आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है,
0: नहीं मैम देखिए वो हमारे बच्चे हैं, आपने सही प्रश्न कहा है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुन लो। आपका प्रश्न बिल्कुल मैडम,
1: और जेन जी की बात हो रही है तो इन सब लोगों को देखिए, क्या ये जेन जी नहीं है? बिल्कुल, जो जंतर मंतर पे बैठे थे वो हमारे देश के जेन जी थे, बट जो रांची में बैठते हैं ना, जो शायद इंस्टाग्राम पे नहीं होते, जिनकी रील वायरल नहीं होती, जिनको 1 मिलियन व्यू नहीं मिलते, वो भी हमारे देश के जेन जी है इरफान साहब। वो भी नौकरी चाहते हैं, वो भी हमारे देश के ही नागरिक है, वो भी हमारा देश का ही भविष्य है, भले से ही उनको 1 मिलियन व्यूज नहीं मिल रहे होंगे।
0: मैम झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट, आप देखिएगा यहाँ रोजगार की चिंता नहीं है, सभी विभाग में बम्पर हम लोग बहाली कर रहे हैं, रोजगार हम लोग दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आ रही है।
2: मामला आया सर, आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं?
0: मामला नहीं है,
2: 3.5 लाख वैकेंसी खाली है, कितना स्टूडेंट को अभी दर्द हो रहा है,
4: टीचर एग्जाम होता है।
0: आपको जो प्रश्न
1: एक एक करके, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये आज सुनिए इरफान साहब, बताइए उमे बताइए
0: झारखंड
1: उमे हामी बताइए उमे आपको कुछ कह रही है इरफान अंसारी साहब, बोलिए उमे।
4: जी मैम जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, हमारे यहाँ इस प्रोटेस्ट में एक ऐसी भी स्टूडेंट है जिसका 300 में 299 मार्क्स था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो 299 लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन किसका हो रहा है, कौन है जो इतना पढ़ रहा है?
1: बिल्कुल सही। सो लेट मी टेल आवर व्यूअर्स हु मे नॉट बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, बिकॉज द डिटेल्स एस्केप यू, और लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड है कि अभी जो रिजल्ट्स आए, ये ही नहीं बताया गया कि कट ऑफ क्या है। भाई जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, किस मार्क्स के आधार पे उनको आपने सेलेक्ट किया? कैसे है कि एक लड़की 300 में से 299.14 है ना, 299.175 आउट ऑफ 300 एक लड़की को मिलता है और वो रिजेक्ट हो जाती है। इरफान अंसारी साहब, आप धड़ल्ले से जो बहाली कर रहे हैं, किसकी बहाली कर रहे हैं? 299.175 अपना हार्ड गला करके उसके माता पिता ने उसको रांची में भेजा है। वो लड़की यहाँ पर 5 साल रही होगी, प्रेपरेशन कर रही होगी, एग्जाम पे एग्जाम दे रही होगी, और 299.175 आउट ऑफ 300 आज उसके मुंह पे तमाचा है कि उसको बहाली नहीं मिली।
0: मैम देखिए, एक मिनट मैम, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं, मैं उनके बच्चे की बात मैंने सुना, ये जांच करने का काम मेरा नहीं है, सरकार का नहीं है, ना कि नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ना कि हेमंत सोरेन जी का नहीं है। अगर त्रुटियां कहीं पाई गई है तो हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है,
1: ना फिर सर
0: चल रहा है,
1: आपका काम नहीं है,
0: हो रहा है।
1: सीआईडी पे किसी को भरोसा नहीं है, इसीलिए तो बच्चे कह रहे हैं सीबीआई की जांच कीजिए।
3: तो दिक्कत है सर कि बहुत देर से हो रही है।
0: आप सुन लीजिए मेरी बात, झारखंड पहला राज्य है जहाँ हमारी सरकार है, हमारी एजेंसी है, हमारी अपनी संस्था है, और हमने कार्रवाई किया। आप बताइए कि भाजपा उत्तर प्रदेश में भी आए दिन पेपर लीक हो रहा है, पेपर हेडमास्टर है पेपर लीक का उत्तर प्रदेश, कभी भी वहां की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आप मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले पेपर लीक हुआ, वहां की सरकार ने कोई
4: कार्रवाई नहीं किया। ना सर अपना स्टेट का देखिए, मैं बगल के स्टेट का क्यों देखूं, अपना स्टेट की बात कीजिए ना सर।
0: हाँ तो मैं तो
1: एक सेकंड सबकी बात सुनी जाएगी। विवेक बताइए, यहाँ पर इरफान अंसारी मंत्री हैं, कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, मोदी जी का काम नहीं है, हेमंत सोरेन जी का काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, सीआईडी का काम है
3: सर, तो
1: और सीआईडी कर रही है।
3: मंत्री जी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर आपका काम ही नहीं है तो आपके अंडर में जो भी चीज गलत होगी, भ्रष्टाचार होगा, अन्याय होगा, तो सर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, उस पर कार्रवाई कौन करेगा सर? अगर आपका काम ही नहीं है तो किस पे भरोसा करें सर?
0: तो हम लोग तो कार्रवाई करते हैं,
3: आप
0: जांच चल रहा है, अरेस्टिंग हुआ है
4: सर, अभी
0: इस बात को
5: सर जांच का बात भी जरूरी है सर, हम लोग का भरोसा नहीं है सर इस पर जांच पर।
0: अच्छा मेरी बात आप लोग सुनिए, आप लोग से हम लोग हमारी सरकार ने कमेटी बनाई है, हम लोग आपकी जो भी मांग है आप हम लोग को बताइए, हम दावा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आपकी जो भी मांग है हम पूरा कराएंगे आपका।
1: एक सेकंड, रंजीत और राज आप दोनों बताइए, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि कमेटी बनी हुई है, कमेटी के सामने ज्ञापन दीजिए।
6: सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सर कि जो भी चीजें हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के तहत लीजिए सर, आप सिर्फ आश्वासन दे देते हैं सर। अभी मैं पूछना चाहता हूं सर, दरोगा का बहाली, आप तो बोले बंपर बहाली आ रही है सर, दरोगा का बहाली 2017 के बाद एक बार भी नहीं आया। मेरे पिताजी का ड्रीम था सर कि मेरे शोल्डर पे दो स्टार लगे, लेकिन मेरे पिताजी तो चले गए सर, लेकिन हमारा आज भी सपना अधूरा रह गया सर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? जवाबदेही कहाँ है सर?
0: बेटा एक मिनट बेटा, बिल्कुल आपकी मांग बिल्कुल जायज है, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार हमारी सरकार नहीं है। जब झारखंड बना, एक मिनट सुन लीजिए मैडम, जब झारखंड बना तो गलत हाथ में सरकार चली गई, भाजपा के हाथ में चली गई, वहीं से जेपीएससी का घोटाला स्टार्ट हो गया मैम। अब जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में आज भी आए हैं धरना पर, उनके बहुत
3: सर, इसीलिए तो सर आपकी सरकार बनाई हमने,
0: एसटी बन गया, एक
3: घोटाला हुआ, इसीलिए हमने
0: लगातार मुख्यमंत्री जी जेपीएससी एग्जाम निकाल रहे हैं, कंटिन्यू निकाल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपको रोजगार।
1: अगर पिछले कुछ दिनों में, इफ इन द लास्ट थ्री डेज देयर इज एनीथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट एवरीवन वांट्स टू ओनली किक द कैन डाउन द रोड। I want, it doesn't even matter because ultimately the decisions are taken from the top. एक एक करके मैं आप सबसे कहूंगी कि आप सीधे राहुल जी से, प्रधानमंत्री से, अरविंद केजरीवाल से क्या कहेंगे? विवेक आप शुरू में बताइए, क्या कहेंगे आप राहुल जी से?
0: मैम राहुल जी कहां से आ गए यहां पे? तो हम
1: अरे क्योंकि सब बड़े नेताओं से ही बात हो रही है ना भाई, अगर इस्तीफा लिया जाता है तो कोई धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ी ना कोई बात कर रहा था,
0: सरकार है।
1: बात तो प्रधानमंत्री से ही हो रही थी।
0: देखिए
1: भाई राहुल जी ही छात्रों की गूंज लेकर के पूरे देश में जा रहे हैं ना, छात्रों का मुद्दा उन्होंने उठाया है और उनको यहाँ छात्रों का भी मुद्दा उठाना चाहिए, क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल को भी उठाना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी उठाना चाहिए।
0: यहाँ हम लोग हैं मैम, एक लोग यहाँ राहुल गांधी जी हैं, हम युवाओं के साथ हैं। क्या बात कर रहे हैं
1: आप? युवाओं के साथ हैं?
0: देखिए सारे
1: इस युवा को मैं आखिरी 30 सेकंड देती हूँ। चंडी आप बताइए, आखिर में छात्रों की गूंज, अगर आपकी गूंज सुनाई देनी चाहिए, आप राहुल जी को क्या बोलेंगे? बोलिए चंडी।
2: मैम मैं यही बोलना चाहूंगा सर, आप आइए सर, देखिए हम लोग किस परिस्थिति में है, हमारे हक अधिकार के लिए सर लड़िए सर, आपसे विनती करते हैं सर आइए, हम भी इस झारखंड के मतलब दबे कुचले स्टूडेंट हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप आइए, हम लोग को देखिए हमारा समस्या कि हम लोग भींग रहे हैं सर, और ये यही बोलना चाहूंगा कि
1: बस जाइए सांझी, बस इतना ही, बहुत बहुत छोटी सी मांग है, बहुत छोटी सी उम्मीद और आशा है इन बच्चों की। ये तो ये भी नहीं कह रहे कि हम सरकार गिराएंगे या इस्तीफा मांगेंगे, बस इतना सा कह रहे हैं वो 1 किलोमीटर का फासला तय कीजिए, स्टेडियम में जाइए, देखिए ये बच्चे कीचड़ में बैठे हैं, इनकी बात सुनिए, इनकी बात मानिए। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम बट आई प्रॉमिस वी राइट हियर विल कंटिन्यू टू गिव द प्लेटफॉर्म टू दोज हु रियली मैटर। ये मंच उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिनकी आवाज सबसे ज्यादा इस देश को सुननी चाहिए, जो कि है झारखंड के, रांची के और देश के बच्चे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।

0: All right, so big buzz now, whether that special session is going to be called and what that special session holds. To discuss all of that and much more, joining us now is Congress MP Imran Masood. Imran sahab, bahut bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. Pehle ye bata dijiye ki ye pure satr mein bahut cheezon ko lekar hangama hua, lekin aisa lag raha hai ki Ram Mandir ka jo mudda hai, Congress ke gale ki phans ban sakta hai.
1: नहीं,
0: पूरा जो नाटक मंचित किया था आप लोगों ने,
1: अरे कहा देखिए कितना मतलब कमाल का नैरेटिव बन रहा है. मतलब चंदा चोरी हो गया उसके ऊपर बात नहीं होगी, मंचन के ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी. तो ये पहले तो आप ये बताइए, आस्था के नाम पर जो लूट हुई है उसके ऊपर आपका क्या जवाब है?
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप घेर रहे थे, तो उसमें किसी भगवाधारी को लाने की क्या जरूरत थी? क्या टिन्नू यादव भगवाधारी है? क्या अनिल मिश्रा भगवाधारी है? क्या जो बाकी के लोग पकड़े गए हैं उनमें से कितने भगवाधारी है बताइए?
1: नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जितने पकड़े गए ये तो छोटी मछली है, ये इतना पैसा नहीं खा सकते हैं. और ये चंदा चोरी विषय मेरा नहीं है क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन इतना जो सुपरफिशियली दिखाई देता है कि अगर ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं, तो 20 करोड़ लोगों के दर्शन में भगवान के दरबार में कोई खाली हाथ तो जाता नहीं. 100 रुपये भी कोई ले गया होगा तो देख लीजिए कितना पैसा बैठेगा. तो ये जो इन्होंने करा है

0: आस्था के नाम पर खिलवाड़, उससे आप ध्यान नहीं हटा सकते लोगों का। मतलब आपने शोर मचा दिया कि साधुओं का अपमान कर दिया, भाई रामलीला का भी तो मंचन होता है, ये मंचन अगर उन्होंने कर करके कर दिया, हालांकि मैं उसको मानता हूँ कि नॉन सीरियस बात थी, लेकिन एक मंचन तक ही रखिए ना।
1: नहीं नहीं, नॉन सीरियस नहीं, अपमानजनक बात थी कि आपने वहाँ पप्पू यादव जी, वो इंडिपेंडेंट भले से ही हैं बट बैठते तो वो कांग्रेस के मंच पे ही हैं, एक सांसद वहाँ बैठ रहा है भगवा पहन करके,
0: मतलब कमाल है पप्पू
1: यादव को बदनाम करने की।
0: नहीं नहीं, पप्पू यादव पे चर्चा हो रही है, चोरी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है आप बताइए? अरे
1: देखिए, विषय चोरी तरीके से दर्शाने की कोशिश की। नहीं, नहीं, क्या आपको लगता है कि भगवाधारी, क्या आपको लगता है कि भगवाधारी चंदा चोरी कर रहे हैं?
0: नहीं नहीं, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ चोरी कौन कर रहा है? चोरी अब जिन लोगों ने नाम लिए, उस एक व्यक्ति का तो जो वहाँ ट्रेजरर था शायद उसका चल रहा था कि उसने ईमेल किया एसआईटी को कि इसके अंदर चंपत राय बंसल शामिल हैं और चंपत राय बंसल को सरकार क्लीन चिट दे रही है। तो ये सब चीज़ें सवाल बहुत बड़े पैदा करती हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों खिलाड़ियों का खेल नहीं है, इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं।
1: सिंपली आपसे ये पूछूंगी इमरान जी, अब आपको लगता है इन हाइंडसाइट कि भगवा को इसमें घसीटना एक गलती थी? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पे सपा के भी सांसद मौजूद थे और खुद रामगोपाल यादव ने अब कहा है, रामगोपाल यादव
0: उसमें
1: कहा है कि ये गलत था,
0: इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। चोरी हुई है, चोरी के ऊपर बात करिए, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो चोरी के ऊपर तो बात ही नहीं, चोरी पर बात करिए ना।
1: क्योंकि बात चोरी पे तो हुई ही नहीं है ना। आपने जो नुक्कड़ नाटक किस्म का किया था पार्लियामेंट के बाहर, उसमें एक बाबा का भेष धारण करके पप्पू यादव अवधेश जी का पैर छू रहे हैं, एक आदमी जो भगवा पहन के किसी सांसद का, किसी नेता का पैर छू रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं वो जो पूरा दान पात्र है उसको लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है, उसको चोरी कर रहा है। राहुल जी वहां पर मौजूद थे, वो आकर के उसमें चंदा डालते हैं, ये दिखाने का क्या मतलब था?
0: चंदा तो रोज ही डल रहा है, चंदा तो वहाँ रोज ही डल रहा है।
1: चोरी कौन कर रहा है?
0: नहीं चोरी कौन, चोरी इन्होंने की है जिन्होंने, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, ठीक है साहब, आप कह, आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई, आपने उस पर ध्वज ध्वज लहराया, और वहाँ चोरी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ट्रस्ट का, ट्रस्ट को, ट्रस्ट क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल करते?
1: ट्रस्ट तो है पर ट्रस्ट के लोग भगवाधारी नहीं है ना।
0: नहीं, ट्रस्ट
1: फिर मेरा सवाल बस इतना है। अच्छा, देखिए आप पूरा
0: मैं बात आ जाए, मैं आपकी बात,
1: नेता को घेरिए, प्रधानमंत्री को, आप भगवा क्यों लेके आए बीच में?
0: फिर मैं आपकी, फिर मंदिर के अंदर भगवाधारी क्यों नहीं है? फिर ये भी दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, ये वहां तो भगवाईदारी होनी चाहिए।
1: मंदिर के अंदर है पर चोरी में शामिल नहीं है ना वो।
0: फिर आप ट्रस्ट में नहीं है ना, आप कह रही तो ट्रस्ट ही सब कुछ जिम्मेदार है और उसके अंदर भगवाधारी नहीं है, वो काम तो उन भगवाधारियों का है वहाँ।
1: अच्छा, अगर ये विशेष सत्र बुलाया जाता है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, तो ये फिर से मुद्दा आप उठाएंगे वहाँ पर? विशेष सत्र की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पार्टी की?
0: देखिए अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो चंदा चोरी और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा छात्रों के ऊपर जुल्म का है। जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, हमारा मुद्दा वो है कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन किसी सूरत भी नहीं चलनी चाहिए थी। हमारा मुद्दा है कि छात्रों के ऊपर जो सीधे गोली चलाई गई वो नहीं होना चाहिए था। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग सदन को डिस्टर्ब करें। होम मिनिस्टर साहब को जिम्मेदारी लेनी होगी, प्राइम मिनिस्टर को इंस्टाग्राम पर आकर बोलने का शौक है लेकिन पार्लियामेंट जाकर के, पार्लियामेंट में अंदर आकर बोलते नहीं है।
1: क्योंकि अगर आपको छात्रों से ही, आप कह रहे हैं छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए, आप रांची क्यों नहीं जा रहे? अभी तो छात्र वहां पे अभी भी बैठे हुए हैं, आज के दिन वहां पर छात्र बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मंच साझा कीजिए।
0: हाँ बिल्कुल सही है, मैं अभी इसके बारे में जानकारी, मैंने आज मुझे लगा कि इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से हम कल तक इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो
1: डाइवर्ट क्या है, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं ये बच्चे, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं।
0: सुन लीजिए ना, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज और बच्चों के ऊपर गोली चलाना है। हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज, गोली चलाना, उनको
1: पर इमरान जी, बच्चे तो बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे बच्चे हैं, रांची के बच्चे बच्चे नहीं।
0: तो बच्चों पर वहाँ लाठी चल गई क्या?
1: लाठी नहीं चली पर वहाँ भूखे बैठे हुए हैं।
0: लाठी चल गई क्या?
1: अरे उनकी नौकरियां चुराई जा रही हैं।
0: नहीं वहाँ लाठी चल गई क्या? देखिए मैंने
1: लाठी चलने पे ही आप उनके साथ जाएंगे?
0: नहीं मैं,
1: उनकी नौकरी चुरा ली जाएगी, आप उनके साथ नहीं जाएंगे?
0: मुझे अभी जानकारी नहीं है तो मैं इसलिए आपसे कोई जवाब बहस नहीं कर सकता, क्योंकि हम पार्लियामेंट में पिछले 10 दिन से इतने लगे हुए हैं कि मुझे जानकारी नहीं पूरी प्रॉपर। मैं आज मुझे इसकी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं कई जगह से मुझसे सवाल हुआ तो मैंने, भाई मैं कल ही बात पर करवाऊँगा, आज इसकी पूरा का पूरा डिटेल लेता हूँ क्या है।
1: पर ये अजीब सी बात नहीं है कि आप हमेशा छात्रों के मुद्दे पर बात करते रहते हैं, आप कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ हम खड़े हुए हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पर जहां से गूंज सच में उठाई दे रही है, उठाई जा रही है रांची में, उनकी गूंज आपको सुनाई नहीं, नहीं, नहीं दे रही है। दिल्ली में तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, प्रयागराज में कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ।
0: मैंने आपसे कहा ना कि हम पिछले 10 दिन से लगातार लगे हुए, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आज इसकी जानकारी जरूर लूंगा और निश्चित रूप से कल को आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा। हम चुप रहने वाले लोगों में नहीं है,
1: क्योंकि वहां के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसीलिए आप उनको एकदम एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं।
0: नहीं,
1: आप,
0: हम इग्नोर
1: आप सिर्फ जो ऑपोजिशन जो बीजेपी वाले शासित राज्य होते हैं वहीं पे आपको गड़बड़
0: दिखाई देती है। नहीं नहीं, हम तो छात्रों के ऊपर गोली चलाने के ऊपर है। आप छात्र एक बात बताइए, बच्चे के यहाँ गोली लग रही है शोल्डर के अंदर, पिस्टल की गोली, AK-47 से आप गोलियां चला रहे हो बिहार के अंदर, यहाँ पैलेट गन मार रहे हो और पार्लियामेंट में आप बयान देते हो कि हमने गोली नहीं चलाई। मतलब ये कितना गलत बयान ही का काम हो रहा है। तो इसमें होम मिनिस्टर साहब नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा?
1: और झारखंड में जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए?
0: किसी झारखंड में लाठी चले डंडा चले तो जिम्मेदारी सरकार की होगी।
1: झारखंड में नौकरी चोरी की भी तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना?
0: नौकरी चोरी का मुझे जानकारी देखिए, जब तक मैं विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो, मैं आज जानकारी ले लूंगा, कल आपको अगर होगा उसके अंदर 100% आपको बोलता
1: हूं। लगता नहीं है कि 12 दिन से कम किसी को सरकार में बातचीत करनी चाहिए थी? यहाँ पर जंतर मंतर में बातचीत हुई, पैनल बना, वहां पर बच्चों के लिए जो टेंट था वो भी हटा दिया गया, वहां पर
0: मुझे तो ये पता ही नहीं, जितना आप बता रही है ना मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती मैं 100% बोलता। अब मैं चुप रहने वालों में लोगों में नहीं हूं कि मैं चुप रहूंगा, मैं 100% बोलता, लेकिन मैं आज ले लूं कल आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा, 100% आपको दिखाई।
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
3: so many attacks,
2: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right, and Center.
2: Hard facts.
3: War-struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Mr.
6: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
0: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom.
2: When students needed to be heard.
7: मैम, आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का अगर संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता। हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए, हम आपके बच्चे नहीं हैं।
8: मुश्किल है बिहार में किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन।
7: झारखंड है, झारखंड है सर, क्योंकि झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है तो झारखंड बोलिए।
2: When Raji Sonam Wangchuk reached out,
9: सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है, देश का केंद्रबिंदु बना है यह प्रदेश। आप लोग भी पहल करिए और सोनू मांगचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए, हम पूरा आप लोग का चैनल के टीम से हम आग्रह करते हैं।
2: जंतर मंतर टू झारखंड, द पास स्टॉप्स हियर।

0: politics has flared up. The UBT Sena, the VBA, and civil society groups have slammed the RSS outreach, questioning its intent and accusing it of pushing ideology instead of genuine dialogue with students. BJP, meanwhile, has defended the initiative, saying that engagement with young people has always been a part of the RSS tradition. While the Shiv Sena has maintained that the Sangha has been reaching out to Gen Z and Gen Alpha for years.
1: वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है. आयमन में पहले हम सभी लोग जाके आए. मुझे नहीं लगता इतना कोई महत्व देना चाहिए. और जेंजी को सुनने के लिए आज सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब जेंजी लाठी खा रहा था, जब जेंजी AK-47 का सामना कर रहा था, जब जेंजी टीयर गैस का सामना कर रहा था, जब जेंजी इलेक्ट्रिक गन्स का सामना कर रहा था, तब ये आज जो सब प्रवचन दे रहे हैं इनको, वो कहाँ थे? मैं सिर्फ मोहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कार्यक्रम में आ रहे, लेकिन आज आप देख रहे हो पोस्टर्स लगे हुए, आई एम जेंजी, आई रिस्पेक्ट दिस, आई एम जेंजी, आई रिस्पेक्ट दैट. जब जेंजी सवाल पूछ रहा था तो जवाब देने के लिए आप कहाँ थे? आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे. पार्लियामेंट में आओ, बात करो.
2: आरएसएस का वैसा भी कुछ संबंध नहीं है, लेकिन अभी भाजपा नीचे गिर रहा है. डायरेक्ट राजा और वजीर को बुद्धिबल के पट के ऊपर डायरेक्ट राजा और वजीर को जब चेक होते हैं तो आउटसाइड बचाने के लिए आते हैं. हमने बुद्धिबल का पट देखा है ना, राजा को और वजीर को जब भी, तो कोई भी प्यादी भी बचा सकता है और होता भी है. बुद्धिबल में राजा का चेक दिया हुआ कैंसिल होता है, वजीर को चेकमेट कैंसिल होता है, बुद्धिबल के पट में होता है, तो इधर तो होगा ही.
3: मोहन भागवत जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं. ये कोई नई पहल नहीं है. यदि आप संघ की शाखा में जाओ तो शिशु की भी शाखा होती है, युवाओं की भी शाखा होती है और बड़े बुजुर्गों की भी शाखा होती है. इसलिए सब तबके के साथ आदरणीय सत्संग चालक जी संवाद करते रहते हैं और उसी संवाद की एक पहल है. ये कोई नई पहल नहीं है.
4: हर जो है लीडर का काम है, या कोई ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जैन जी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, संवाद रखें, कोई गलत बात तो नहीं है उसमें.
5: The Rashtriya Swayamsevak Sangh has been reaching out to the Gen Z and the Gen Alpha for the past 2-3 years. There are core issues of nation first, culture, discipline, making your contribution to civic duty as a ongoing process. Adarniya Mohanji Bhagwat, who is our Sarasangh Chalak, is coming to Mumbai and will be addressing the issues of the youth, answering their questions and directly engage with them. So for all those who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
6: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है. अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को आप समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है.
7: The students of the country have reacted against this government. The students, the youth, they have stood like a rock against the injustice they had to meet from this government. And this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students. This government fired pellets on them. This government also used AK-47. So now the RSS chief meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
0: And well, the Tamil Nadu budget has triggered a fresh political face-off inside the assembly. Leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the budget as a zero budget, saying that there's nothing new and accusing the government of merely renaming schemes introduced by the DMK. Earlier, TVK also launched a sharp attack on the DMK.

0: has always been a part of the RSS tradition. While the Shiv Sena has maintained that the Sangha has been reaching out to Gen Z and Gen Alpha for years.
1: वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है. आयमन में पहले हम सभी लोग जाके आए, मुझे नहीं लगता इतना कोई महत्व देना चाहिए. और जेंजी को सुनने के लिए आज सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब जेंजी लाठी खा रहा था, जब जेंजी AK-47 का सामना कर रहा था, जब जेंजी टीयर गैस का सामना कर रहा था, जब जेंजी इलेक्ट्रिक गन्स का सामना कर रहा था, तब ये आज जो सब प्रवचन दे रहे हैं इनको, वो कहाँ थे? मैं सिर्फ मोहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कार्यक्रम में आ रहे, लेकिन आज आप देख रहे हो पोस्टर्स लगे हुए, आई एम जेंजी आई रिस्पेक्ट दिस, आई एम जेंजी आई रिस्पेक्ट दैट. जब जेंजी सवाल पूछ रहा था तो जवाब देने के लिए आप कहाँ थे? आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में आओ बात करो.
2: आरएसएस का वैसा भी कुछ संबंध नहीं है, लेकिन अभी भाजपा नीचे गिर रहा है, डायरेक्ट राजा और वजीर को बुद्धिबल के पट के ऊपर डायरेक्ट राजा और वजीर को जब चेक होते हैं तो आउटसाइड बचाने के लिए आते हैं. हमने बुद्धिबल का पट देखा है ना, राजा को और वजीर को जब भी, तो कोई भी प्यादी भी बचा सकता है, और होता भी है बुद्धिबल में. राजा का चेक दिया हुआ कैंसिल होता है, वजीर को चेकमेट कैंसिल होता है, बुद्धिबल के पट में होता है, तो इधर तो होगा ही.
3: मोहन भागवत जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं. ये कोई नई पहल नहीं है. यदि आप संघ की शाखा में जाओ तो शिशु की भी शाखा होती है, युवाओं की भी शाखा होती है, और बड़े बुजुर्गों की भी शाखा होती है. इसलिए सब तबके के साथ आदरणीय सत्संग चालक जी संवाद करते रहते हैं, और उसी संवाद की एक पहल है. ये कोई नई पहल नहीं है.
4: हर जो है लीडर का काम है, या कोई ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जैन जी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, संवाद रखें, कोई गलत बात तो नहीं है उसमें.
5: The Rashtriya Swayamsevak Sangh has been reaching out to the Gen Z and the Gen Alpha for the past 2-3 years. There are core issues of nation first, culture, discipline, making your contribution to civic duty as a ongoing process. Adarniya Mohanji Bhagwat, who is our Sarasang Chalak, is coming to Mumbai and will be addressing the issues of the youth, answering their questions and directly engage with them. So for all those who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
6: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है. अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को आप समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है.
7: द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हैव रिएक्टेड अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट. द स्टूडेंट्स, द यूथ, दे हैव स्टूड लाइक अ रॉक against the injustice they had to meet from this government, and this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students, this government fired pellets on them, this government also used AK-47. So now the RSS chief meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
0: And well, the Tamil Nadu budget has triggered a fresh political face-off inside the assembly. Leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the budget as a zero budget, saying that there's nothing new, and accusing the government of merely renaming schemes introduced by the DMK. Earlier, TVK also launched a sharp attack on the DMK over corruption, claiming only a Vijay-led government can ensure clean governance and uphold social justice. The party also renewed its demand to scrap NEET, calling for MBBS admissions to be based on class 12th marks. And that is, of course, in the wake of the repeated paper leak controversies in India.

0: देख रहे हो पोस्टर्स लगे हुए, आई एम जेंजी आई रिस्पेक्ट दिस, आई एम जेंजी आई रिस्पेक्ट दैट. जब जेंजी सवाल पूछ रहा था तो जवाब देने के लिए आप कहाँ थे? आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में आओ बात करो.
1: आरएसएस का वैसा भी कुछ संबंध नहीं है, लेकिन अभी भाजपा नीचे गिर रहा है, डायरेक्ट राजा और वजीर को बुद्धिबल के पट के ऊपर डायरेक्ट राजा और वजीर को जब चेक होते हैं तो आउटसाइड बचाने के लिए आते हैं. हमने बुद्धिबल का पट देखा है ना, राजा को और वजीर को जब भी, तो कोई भी प्यादी भी बचा सकता है और होता भी है. बुद्धिबल में राजा का चेक दिया हुआ कैंसिल होता है, वजीर को चेकमेट कैंसिल होता है, बुद्धिबल के पट में होता है, तो इधर तो होगा ही.
2: मोहन भागवत जी शुरू से ही संघ में छोटे आयु के बच्चों से लेकर के युवाओं तक सबके बीच में विचार मंथन वे करते आए हैं. ये कोई नई पहल नहीं है. यदि आप संघ की शाखा में जाओ तो शिशु की भी शाखा होती है, युवाओं की भी शाखा होती है और बड़े बुजुर्गों की भी शाखा होती है. इसलिए सब तबके के साथ आदरणीय सत्संग चालक जी संवाद करते रहते हैं और उसी संवाद की एक पहल है. ये कोई नई पहल नहीं है.
3: हर जो है लीडर का काम है या कोई ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है जैन जी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, संवाद रखें, कोई गलत बात तो नहीं है उसमें.
4: The Rashtriya Swayamsevak Sangh has been reaching out to the Gen Z and the Gen Alpha for the past 2-3 years. There are core issues of nation first, culture, discipline, making your contribution to civic duty as a ongoing process. Adarniya Mohanji Bhagwat, who is our Sarasangh Chalak, is coming to Mumbai and will be addressing the issues of the youth, answering their questions and directly engage with them. So for all those who are trying to correlate this to NEET, I would only want to say, why not move with the times? Why not engage? Why not answer questions? And why not be accountable both ways?
5: ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है. अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेंजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है.
6: The students of the country have reacted against this government. The students, the youth, they have stood like a rock against the injustice they had to meet from this government. And this government was forced to take a decision on Dharmendra Pradhan. This government attacked the students. This government fired pellets on them. This government also used AK-47. So now the RSS chief meeting the Gen Z to understand, the RSS should understand the people's mindset of the country. The RSS should also understand that people are frustrated with this government.
7: And well, the Tamil Nadu budget has triggered a fresh political face-off inside the assembly. Leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the budget as a zero budget, saying that there's nothing new and accusing the government of merely renaming schemes introduced by the DMK. Earlier, TVK also launched a sharp attack on the DMK over corruption, claiming only a Vijay-led government can ensure clean governance and uphold social justice. The party also renewed its demand to scrap NEET, calling for MBBS admissions to be based on class 12th marks, and that is of course in the wake of the repeated paper leak controversies in India. Meanwhile, the government doubled down on its youth and education push, unveiling big ticket allocations for bicycles, school modernizations, campus cleanliness, laptops and AI training for 5 lakh students by 2031. Take a listen to what Udayanidhi Stalin said.
8: What would you say about this budget in one
9: zero,
8: word?
9: Zero budget.
8: Okay. So any other things, poll promises were also not part of
9: nothing, the nothing was announced. They've just changed the name of the schemes that was in